0: प्रेम लाली जी इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर। बुधवार 1 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। समय हुआ है समाचार का।
1: सुबह का पहला फ्लैश न्यूज सुनते हैं आप सभी दिमाग। नमस्कार।
2: नमस्कार नीतू शाह, सभी सुनने वालों को नमस्कार। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनुसार डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 घरेलू हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके तहत देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकेगी। समन 7 दिनों में जारी होगा और सुरक्षा आदेशों की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। पीड़िता को घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आरोपी को हटाया जा सकता है या वैकल्पिक आवास का खर्च उठाना होगा। साथ ही मनोवैज्ञानिक परामर्श होगा, जिसका पालन न करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऊर्जा मंत्री पत्रकार सेवादन के अनुसार CWA पर राज्य का लगभग 3.47 बिलियन रुपए बकाया है, जिसमें 2.92 बिलियन रुपए पुराने बकाया शामिल है। 30 जून 2025 को समाप्त वर्ष में CWA ने 755 मिलियन रुपए का घाटा दर्ज किया। मंत्री ने बताया कि पानी की उत्पादन लागत 24 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है।

0: है, जबकि औसतन बिक्री 14 रुपए में होती है, जिससे 10 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर का नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यावसायिक उपयोग के लिए पानी की दरों में संशोधन होगा, लेकिन घरेलू उपभोक्ता इससे प्रभावित नहीं होंगी। समाज सुरक्षा मंत्रालय में वर्तमान में 332 डॉक्टर एक वर्ष के रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत हैं, जिनके अनुबंध पिछले महीने ही रिन्यू किए गए। मंत्री अशोक सुभों के अनुसार सभी डॉक्टर विधिवत पंजीकृत हैं और उनका मुख्य कार्य बुजुर्गों के घरों पर जाकर जांच करना तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए मेडिकल बोर्ड में बैठना है। इनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सक भी शामिल हैं, जो मेडिकल ट्रिब्यूनल में अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र के अनुसार मामलों का आकलन करते हैं। मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के G2G समझौते पर बातचीत जारी है। STC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच 5 वर्ष रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो रही है, जिसमें मूल्य निर्धारण, मुद्रा और गुणवत्ता शर्तें शामिल हैं। मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियों और फ्रेट लागत बढ़ने से देरी हुई है, लेकिन समझौता जुलाई के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। फुटबॉल की दुनिया में किलियान एम्बापे ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला पैराग्वे से होगा। और लाहौर के पास एक निजी ट्यूशन सेंटर की इमारत की छत गिरने से 14 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद राहत कार्य जारी है और अधिकारियों ने जाँच शुरू करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह देश के दक्षिणी ढलानों और ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर रह रहकर हल्की बरसात होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17, तटवर्ती इलाकों पर 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:46 पर और आज शाम 5:41 पर सूरज ढल जाएगा।
1: RM3 Radio.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ RM3 ہے پر ویزا کا ساتھ ہے اردو تشریحات بنام سبا الخیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप तमाम सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। रोशनियों, रहमतों और बरकतों से सजी इससे खूबसूरत नशरियात में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मज़ी सामीन, ये वो लम्हात है जब दिल ज़िक्र इलाही से मुनव्वर होते हैं, रूह को सुकून मिलता है और ईमान को ताजगी नसीब होती है। तो आइए मज़े सामीन इससे रूह परवर महफिल का आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बाबरकत कलाम से, जो सरापा हिदायत और सरापा नूर है। बग़ौर व बाअदब समात फरमाइए तिलावत कुरान पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

तो वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सवाले ने कहा कि ऐ कौम, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन है। सवाले ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जिनकी आजमाइश की जाती है।

और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। कहने लगे कि अल्लाह की कसम खाओ कि हम रात को इस पर और इसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर इसके वारिसों से कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के मौके हलाकत पर थे ही नहीं और हम सच कहती हैं। और वो एक चाल चले और हमने भी एक तदबीर की और उनको कुछ खबर न हुई।

तो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब उनके ये घर उनके जुल्म के सबब तलपट पड़े हैं। जो लोग इल्म रखते हैं उनके लिए इसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी,

और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ मायल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो।

तो उनकी कौम के लोग बोले तो ये बोले, और इसके सिवा उनका कुछ जवाब न था कि लूत के घर वालों को अपने शहर से निकाल दो, ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को नजात दी, मगर उनकी बीवी कि उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी, और हमने उन पर मेह बरसाया, सो जो मेह उन लोगों पर बरसा जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था।

0: कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके उन बंदों पर सलाम है जिसको उसने मुंतखब फरमाया, भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं।
1: अम्मन खलक

भला किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया? फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं।

भला किसने जमीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते।

भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको जमीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो।

भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है।

भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है, तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो।

कह दो कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते और न ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे।

ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है, कहां का उठना और कैसी कयामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ है, और उनके हाल पर गम न करना और न उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा। कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो।

और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सब को जानता है। और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर ये कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है।

0: बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है।
1: इन रब्बक यक़्ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम।
0: तुम्हारा परवरदिगार कयामत के रोज उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है।

तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और न बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज सुना सकते हो, और न अंधों को गुमराही से निकालकर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाती हैं।

और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था, भला तुम क्या करते रहते थे। और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें, बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं।

जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं आमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो।

कह दो मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मोहतरम बनाया है और हर चीज उसी की है।

0: और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदार रहूं और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं। अब जो शख्स राह रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूं, और कहो कि अल्लाह का शुक्र है, वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। वजी सामीन, अभी आपने कुरान मजीद की दिलनशी और रूपरवर तिलावत समान फरमाई। यकीनन अल्लाह ताला का ये मुबारक कलाम दिलों को सुकून, रूह को ताजगी और ज़िंदगी को सही सिमत अता करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से वाबस्ता रहने और उसके अहकामात पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामीन, हर आगाज़ उसी ज़ात बारी ताला के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में ज़मीन व आसमान का निज़ाम है, जिसकी रहमत हर शय पर साया फिगन है और जिसकी अता के बग़ैर कोई सांस भी मुमकिन नहीं।

0: वही है खालिक कौन मका, वही है राजदा, उसी के नाम से रोशन है ये सारा जहां। दर हकीकत अल्लाह ताला की हम्द सना ही हर खैर और हर नेकी का सरचश्मा है। ये RM3 है, परवीज़ा का साथ है दिन के 7 बजे तक उर्दू नशरियात मसल खैर में। सामईन, तारीख़ इस्लाम ऐसे बेशुमार रोशन और ताबंदा अबवाब से मुजयन है जिनसे हर दौर के इंसान ने रहनुमाई हासिल की है, मगर जब भी हक, वफा, ईसार और अजमते का जिक्र आता है तो सरजमीन करबला का नाम सबसे पहले जहन में उभरता है। करबला हमें ये पैगाम देती है कि बातिल ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हक की शमा कभी बुझ नहीं सकती। तो आइए मज़ीद सामीन इसी पैगाम हुर्रियत और दर से वफा को मज़ीद समझने के लिए आज का ये बयान सुनते हैं, समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिगफार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के प्रोग्राम में हम मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अलमनाक शहादत का जिक्र सुनेंगे। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला 2 मुहर्रम शरीफ 61 हिजरी जुमेरात के दिन मैदान करबला पहुंचा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आशूरे की रात अपने साथियों को जमा किया, अल्लाह करीम की हम्द व सना बयान की, फिर अपने साथियों को मुखातब करते हुए फरमाया, मैं गुमान करता हूँ कि कल हमारा दुश्मनों से मुकाबले का दिन होगा, लिहाजा मैं आप सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि रात की इस तारीकी में आप सब चले जाएं और आप में से जो ताकत रखता हो वो अपने साथ मेरे अहले बेत में से एक एक आदमी को भी अपने साथ सवार कर ले और रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाओ, बेशक ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जब मुझे सामने पा लेंगे तो इन्हें तुम्हारी तलब नहीं होगी। आपके अहले बैत ने अर्ज की, ए हुसैन, हम आपके बाद न जिंदा रहना चाहते हैं और ना ही आपको यहां छोड़ सकते हैं। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूसरे असहाब ने भी, दूसरे साथियों ने भी यही जज्बात का इजहार

किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खेमे के सामने तलवार का सहारा लिए सर झुकाए तशरीफ फरमा थे कि इसी दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गुनूदगी तारी हुई। इधर यजीदी फौज का शोर व गुल सुनकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास आई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ख्वाब में खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, तुम हमारे पास आ जाओगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हजरत सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारो के तार रोने लगी। हजरत अल्लामा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद जज़री रहमतुल्लाहि ताला ने नकल फरमाते हैं, जब मैदान करबला में दुश्मनों ने जंग की तैयारी कर ली तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हजरत सैयदना अब्बास बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और अर्ज की कि भाई, दुश्मन जंग की तैयारी करके आपके तरफ आ रहे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और इनकी तरफ जाने का इरादा किया तो हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको रोका और अर्ज की, भाईजान आप ना जाएं, मैं जाता हूं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जाओ इनसे पूछो कि आप लोग क्या इरादा रखते हैं। चुनाचे हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 20 सवारों समेत उनके पास गए और फरमाया, तुम किस इरादे से आए हो? तो उन्होंने कहा, अमीर का हुक्म है कि बैत कर लो वरना हम तुमसे जंग करेंगे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ठहरो, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तुम्हारे इरादे के बारे में बता कर आता हूँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के पास आए और यजीदियों के इरादे से आपको आगाह किया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इनसे कहो आज वापस पलट जाएं और हमें कल तक की मोहलत दें। आज रात हम अपने रब के हुजूर नमाज अदा करेंगे, उसकी बारगाह में दुआओ इस्तिगफार करेंगे, क्योंकि मेरा रब अज़्ज़ा वजल जानता है कि मुझे नमाज पढ़ना, दुआओ इस्तिगफार करना और तिलावत कुरान करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महबूब हैं, और ये कि मैं अपने अहले बैत को कुछ चीज़ों की वसीयत करूँगा। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पैगाम लेकर यजीदी लश्कर के पास पहुँचे। इन्हें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैगाम दिया और कहा कि आज रात के हमें मोहलत दें, हम इंशाअल्लाहुल करीम सुबह तुम्हें अपने फैसले से आगाह कर देंगे। चुनाचे वो लोग वापस लौट गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्र बिन साद के दस्ते के वापस जाने के बाद अपने साथियों को जमा फरमाया और नहायत ही फसीह व बलीग अंदाज में अल्लाह करीम की हम्द व सना बयान की। फिर अपने साथियों को मुखातब करते हुए फरमाया, मैं किसी के असहाब को अपने असहाब से ज़्यादा वफादार और बेहतर नहीं समझता और ना ही किसी के अहले बैत को अपने अहले बैत से ज़्यादा निकोकार और सिला रहमी करने वाला देखता हूँ। अल्लाह करीम आप सबको मेरी तरफ से जजाए खैर अता फरमाए। मैं गुमान करता हूँ कि हमारा कल का दिन दुश्मनों से मुकाबले का दिन होगा, लिहाजा मैं आप सबको बखुशी इजाज़त देता हूँ कि रात की इस तारीकी में आप सब चले जाएं और मेरी तरफ से कोई मलामत भी नहीं होगी। अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और तुम में से हर एक अपने साथ मेरे अहले बैत में से एक एक आदमी को अपने साथ बिठा ले। अल्लाह करीम आप सबको जजाए खैर अता फरमाए। फिर तुम अपने अपने शहरों, इलाकों और देहातों में मुंतशिर हो जाना, हत्ता के अल्लाह करीम ये मुसीबत टाल दे। बेशक ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, जब ये मुझे शहीद कर देंगे तो इनको किसी और की तलब नहीं होगी। आपकी तकरीर दिल पजीर सुनकर आपके भाइयों, बेटों, भतीजों और भांजों ने अर्ज की कि ए नवासे रसूल,

सब कुछ हम इसलिए करें कि आपके बाद हम जिंदा रहें। अल्लाह हमें ऐसा बुरा दिन ना दिखाए कि आप मौजूद ना हो और हम जिंदा हों। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनी अकील को मुखातब करते हुए फरमाया, ए बनी अकील, तुम्हारे लिए भाई मुस्लिम का खून ही काफी है, तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बाखुशी इजाजत देता हूँ। उन्होंने अर्ज की, हम लोगों से ये कहेंगे कि हमने सिर्फ दुनिया की खातिर अपने सरदार को छोड़ दिया, ना हमने कोई तीर फेंका, ना नेजा मारा और ना तलवार चलाई, बखुदा हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपनी जानों मालों और अपने अहलो याल को आप पर कुर्बान कर देंगे और आखिर दम तक आपके साथ जंग करेंगे कि आपके बाद हमारे जिंदा रहने का कोई जवाज नहीं बनता। इसी तरह आपके दूसरे साथियों ने भी अपने जज्बात का इस तरह का इजहार किया और कहा कि खुदा की कसम, हम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को छोड़कर नहीं जाएंगे। हजरत सय्यदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़ब्त व सब्र ना हो सका, बेताब होकर यूं निदा करने लगी, ए काश इस दिन से पहले मुझे मौत आ गई होती, मेरी वालिदा सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल फरमा चुकी, मेरे वालिद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे भाई हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी साथ छोड़ गए, एक गुजरे हुओं की निशानी और पसमानदों की जाए पना हुसैन प्यारे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया, प्यारी बहन, शैतान तुम्हारे हिल्म और बर्दाश्त को खत्म ना कर दे, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा, मेरी जान तुम पर कुर्बान। फिर फरमाया, प्यारी बहन, अल्लाह से डरो और सब्र का दामन थाम कर रखो, जान लो कि सब जमीन वालों को मरना और सब आसमान वालों को गुजरना है, अल्लाह के सिवा सबको फना है, मेरे माँ बाप, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे भाई मुझसे बेहतर थे, हर मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। मेरी बहन, मैं तुम्हें कसम देता हूँ और वसीयत करता हूँ कि मेरी इस कसम को पूरा करना, मेरी शहादत पर मुंह पर तमाचे ना मारना और ना आहोजारी और बैन करना। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बहन को वसीयत करने के बाद अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाए और अपने साथियों से फरमाया, आज रात खेमे करीब करीब कर लो ताकि अगर दुश्मन को आना हो तो उसे एक ही रास्ता मिले। चुनाचे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुक्म पर अमल करते हुए आपके रफ़क़ा ने ऐसा ही किया और फिर सारी रात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ इबादत और रियाजत और तौबा व इस्तिगफार करते रहे। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब शर पसंदों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर धावा बोला और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को यकीन हो गया कि अब ये लोग मुझे शहीद कर देंगे, तो अब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने असहाब से मुखातब होकर अल्लाह करीम की हमदो सना बयान की और फरमाया कि तुम देख रहे हो कि फितने हमारे सरों पर मंडला रहे हैं और दुनिया तब्दील और अजनबी हो चुकी है, इसकी अच्छाइयां मुंह मोड़ चुकी हैं, अब इतनी ही बाकी है जितना के बर्तन का बचा हुआ पानी, दुनिया में जिंदगी गुजारना ऐसा है जैसे चौपाए को मुजेरे सहज चरागाह में छोड़ देना, क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं किया जा रहा और बातिल से रुका नहीं जा रहा, लिहाजा मोमिन को चाहिए कि अल्लाह से मुलाकात में रगबत रखे और बेशक मैं मौजूदा हालात में मौत को बाइस सहादत और जालिमों के साथ जिंदगी गुजारने को बाइस जुर्म समझता हूं। जंग के दौरान जब जोहर की नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुरूहुम फलयकुफू अनिल क़िताल हत्ता नुसल्ली, यानी दुश्मनों से कहो जंग रोक दें ताकि हम

नमाज अदा कर सकें। यजीदी फौज ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मानने से इनकार कर दिया और हर्जा सराई करते हुए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कई असहाब

आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के शहजादे को लाया गया जिनका नाम अब्दुल्ला था, जिन्हें अली असगर भी कहा जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे गोद में बिठा लिया और इसे बोसे देने और अलविदा कहने लगे। नीज अपने अहले बैत को वसीयत फरमाने लगे कि अचानक बनी असद के एक बदबख्त ने, एक जालिम शख्स ने जिसका नाम इब्ने मुकिदुन नार था, एक तीर मारा जिससे ये नन्हे शहजादे ने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने ज़ियाद ने अम्र बिन साद को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इनके असहाब पर पानी बंद कर दो, जिस तरह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर पानी बंद कर दिया गया था। चुनाते जालिम अम्र बिन साद ने अब इन पर पानी बंद कर दिया। जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की प्यास शिद्दत इख्तियार कर गई, ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फुरात पहुंचकर पानी पीना चाहा। दुश्मनों ने रोकने की कोशिश की, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बमुश्किल फुरात के किनारे पहुंचे। जो ही पानी पीने लगे तो हसीन बिन तमीम ने एक तीर मारा जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तालु में पेवस्त हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तीर खींचकर निकाला तो इस कदर खून बहने लगा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दोनों हाथ खून से भर गए, जिसे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आसमान की जानिब उछाल दिया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुमा के दिन शहादत पाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की उम्र शरीफ 56 साल 5 माह 5 दिन थी। करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 72 साथी शहीद हुए, जबकि बदबख्त यजीदी फौज के 88 अफराद कत्ल हुए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिस्मे अनवर पर नेजों के 33 घाव और तलवार के 34 जख्म थे। हजरत अय्यूब बिन हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब शहीद किया गया तो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ऊनी रेशम से बुना हुआ स्याही माइल या मटियाले रंग का जुब्बा जेबे तन कर रखा था और उसी रंग का इमामा शरीफ भी सजा रखा था। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के दिन तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त ऐसी सुर्खी देखी गई जो इससे पहले ना देखी गई थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदातुना उम्मे सलामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक के बाद से सिवाय आज कभी जिन्नों को रोते ना सुना था, मगर आज सुना तो मैंने जाना कि मेरा फर्जंद हुसैन शहीद हो गया। चुनाचे बाद में मुझे इत्तला मिली कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद कर दिए गए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के असहाब की तजहीज़ व तकफीन शहादत के एक दिन बाद करीबी बस्ती गाजरिया में मुकीम कबीला बनू असद के लोगों ने की। अल बिदाया व निहाया में है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ अहले बैत के 23 अफराद ने जामे शहादत नोश फरमाया, जिनमें मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की औलाद में से हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दीगर अल्लाती यानी बाप शरीक भाई भी थे, जिनके नाम हजरत सैयदना जाफर, हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्बास, हजरत सैयदना मोहम्मद, हजरत सैयदना उस्मान, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शामिल थे। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हजरत सैयदना अली अकबर और हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। अमीर मोमिनीन हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से 3 अफराद
हजरत सैयदना अब्दुल्ला, हजरत सैयदना कासिम और हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला।

0: अनहुम अजमाइन शहीद हुए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हजरत सैयदना औन और हजरत सैयदना मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को शहीद किया गया। हजरत सैयदना अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद के चार अफराद हजरत सैयदना जाफर, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हुम मर्तबाए शहादत से सरफराज हुए, जबकि हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु वाकिया करबला से पहले ही शहीद कर दिए गए थे। ये चार हजरत सैयदना अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु के हकीकी फर्जंद थे। हजरत सैयदना अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से दो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील और हजरत सैयदना मोहम्मद बिन अबू सईद बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने भी जामे शहादत नोश किया। शहदाए करबला में हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिजाई भाई हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन बक्तर रहमतुल्लाहि ताला ले भी थे। जालिम अमर बिन साद के हुक्म पर 10 घोड़सवारों ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्मे मुबारक को अपने घोड़ों के सिमों से रौंदा। अल्लाह करीम की इन हजरात पर रहमत हो और इन हजरात के सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो। आमीन बिजाही खातम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: अल्लाह करे कि ये बयान हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ दीन इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इस्लाह के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश फरमाएँ। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला और शहदाए करबला की सीरत तैयबा से सबक हासिल करने, हक और सदाकत पर साबित कदम रहने और दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला माह मुहर्रमुल हराम की बरकतों से हम सबको मुस्तफीद फरमाए, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद की नेमत से सरफराज फरमाए। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है। मशकूर व ममनून है हम। परवीज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

स्वर्ग नु सपनू छोड़ी दो, नर्क नु डर छोड़ी दो, कोने खबर शू पाप अने शू पुण्य। बस एटलू ध्यान राखवो कि पोतानो स्वार्थ खातर कोई नु दिल न दुभाय, बाकी बधु कुदरत पर छोड़ी दो। साधना सरगम ना मधुर स्वर में मुकायेलू आपड़ा प्रोग्राम नु आगलू खूब सरस गीत।

मुंबई या गुजराती अगर मुंबई या गुजराती अला मुंबई या गुजराती राम राम करवानू हरी नाम जपवानू रेवानू मौजमा ने खावानू जोशमा।

એમ ભલે કરી દઈએ, અમને જે શીખવાડે એને શીખવાડી દઈએ બોસ.

सवार ना सूरज ने खेची ने लावे ने चांद ने आखे आखी रात जगावे दुनिया ना बदे ठेकाने ठेकाने मौजे मौज।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: शक्ति।
1: भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मनोरंजन RM3 प्रसारण है। मैं हूँ रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जुलाई की पहली तारीख, बुधवार का दिन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:46 हो चुके हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक इस भक्ति में यात्रा में आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आइए भजनों के साथ जुड़ते हैं, मन को तृप्त करते हैं, तनाव से मुक्त करते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। आज के इस कार्यक्रम का शुभारम्भ हम करने जा रहे हैं भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए।

श्रोताओं, हर युग में ईश्वर ने अवतार धारण किया मनुष्यों को सही मार्ग दिखाने के लिए, ज्ञान से उनका परिचय करवाने के लिए। गौतम बुद्ध ने भी मनुष्यों को सही राह दिखाई। आइए गौतम बुद्ध की इस शिक्षा के बारे में आपको बताते हैं। बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था पूर्ण। बहुत दिनों तक उनके पास रहा, शिक्षा ग्रहण की। जब शिक्षा पूरी हो गई तो बुद्ध ने कहा कि अब मेरे प्रेम और अहिंसा के संदेश को तुम लोगों के बीच तक ले जाओ। पूर्ण सुखा नामक क्षेत्र में जाने का तत्पर हुआ तो बुद्ध ने कहा कि वहाँ के लोग बहुत ही उग्र हैं। वे हो सकता है तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा परिहास करेंगे। तो पूर्ण बोला, कोई बात नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे लोगों को दयालु ही मानता हूँ। वे गाली देंगे, उपहास देंगे, अपमान करेंगे, पत्थर तो नहीं मारेंगे ना। तो बुद्ध बोले, पूर्ण वे पत्थर भी मार सकते हैं। तो पूर्ण का उत्तर था कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं तो ऐसे लोगों को तभी दयालु ही मानूंगा, वे पत्थर ही तो मारेंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। बुद्ध बोले, पूर्ण पर वे तो जान से भी तुम्हें मार सकते हैं। तो पूर्ण ने उत्तर दिया, तब तो वे सचमुच में दयालु

हैं प्रभु कि मुझे इस जीवन से सदा के लिए मुक्त कर देंगे जिसमें मैं भटक ही रहा हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि अब तुम पूरी तरह से मेरी शिक्षा से पूर्ण हो चुके हो।

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, हमारे जीवन में हमारे पास सबसे बड़ा धन क्या हो सकता है? हमारे द्वारा कमाया हुआ पैसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह पैसा हमारे प्राणों की रक्षा तो कभी भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा धन है हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा मन। शरीर बाहर और भीतर दोनों ही ओर से बहुत ही बलशाली होना चाहिए और दिमाग पूरी तरह से शांत। बलिष्ठ शरीर और शांत मन, शांत दिमाग को ही हम आदि योगी शिव की पहचान मानते हैं। और ऐसा शरीर और दिमाग पा लेने से या पा लेने पर पैसा और नाम कमाने जैसी चीज़ों की किसी भी ओर से हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर शरीर स्वस्थ है, मन शांत है, तब जाकर वो धन भी उपयोगी सा लगता है। पर कई बार

धन आ जाने से। मन अगर विचलित रहे, शरीर अगर अस्वस्थ रहे, तो उस धन का भी कोई लाभ नहीं हो सकता।

तो श्रोताओं, आज के इस भक्ति में यात्रा का समापन करने का समय हो चला है। ईश्वर सभी का कल्याण करे और हर पल हर क्षण बस ईश्वर को मन में याद रखते हुए हम जीवन के कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और जीवन में कभी भी ऐसा कोई समय आए जहां पर हमें कुछ ना सूझ रहा हो, तो केवल अपने दृष्टि को बंद कर, अपने आँखों को बंद कर, नेत्रों को बंद कर केवल ईश्वर का ध्यान करें और बस अपने मन में उस आत्मविश्वास को जागृत करें, आपको अवश्य ही मार्ग नजर आएगा। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को इस अंतिम भजन के साथ समाप्त करेंगे। आप सभी ने प्रेम और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया, ईश्वर सभी का कल्याण करें। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

听众朋友，今天的星月之旅就到这里跟大家说再见了，下次节目我们再会。

0: हुई हैं। इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त सूचनाओं और निजी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज के व्यवस्थित विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगा लिया है जिसका इस्तेमाल चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया था। पुलिस ने वारदात से पहले, वारदात के दौरान और उसके बाद अपनाए गए पूरे रूट का सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण कर लिया है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राज्यसभा में बहस किया गया। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। घरेलू हिंसा के मामलों में अब पीड़िता को अपने घर और बच्चों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि ये जिम्मेदारी आरोपी की होगी। अदालत आरोपी को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकती है या उस पर पीड़िता के लिए वैकल्पिक आवास का खर्च उठाने की बाध्यता लगा सकती है। राज्यसभा में ही कल मॉरिशस और भारत के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को लेकर हो रही G2G समझौते पर भी चर्चा हुई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन साल की शुरुआत से ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्री माइकल सिक्वेन ने कल सांसद बाबूलाल के एक प्रश्न के उत्तर में पुष्टि की कि जुलाई के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। और विदेश में ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर कलीबाफ का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तेहरान का शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अंतिम समझौते पर बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू नहीं कर दिया जाता। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने अमरीकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेयर कुशनर के साथ मुलाकात की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। हसन हाफा स्ट्रीट फिनिक्स में 89 साल के 89 years old के जनाब मूसा सहुतुरा जो मूसा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके घर हसन हाफा स्ट्रीट फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए मस्जिद बैतुल हक फिनिक्स ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। D12 NHT सिविल नोमीबर्ग में 88 साल की 88 years old की श्रीमती पुष्पा नारायणन पैदाइशी नाम राम सामी और जो देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी बेटी रजनी नारायणन के घर D12 NHT सिविल नोमीबर्ग से उठाकर तोंबो मेंबर्ग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30। क्लोजर रोड फिनिक्स में 71 साल के 71 years old के श्री विनय मित्रे चुरामन जो विनय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:15 बजे उनके घर क्लोजर रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेरिनो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:15। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: ninety-four, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio.

चलिए श्रोताओ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मनोरंजन है, आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है इस चैनल पे। 12:05 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, लगभग 2 घंटे के सफ़र में हम आपके सजाएंगे चंद प्यारे प्यारे गीत, चंद नए, चंद पुराने, चंद गज़ल, हर तरह के गाने इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको कहेंगे हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। तो चलिए सुहाना सफ़र कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के लिए। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 4028070, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5250620025050600। तो चलिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क में रह सकते हैं, अगर आपकी और चंद प्यारे प्यारे गीत है तो हम ज़रूर शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा नज़राना, बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है आप सुन सकेंगे, और ये प्यारा सा गीत जो है आप आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुन पाएंगे।

वैसे श्रोताओं, पुराने गीत सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते, ये हमारे जिंदगी की उन यादों का हिस्सा होते हैं जो कभी पुराने नहीं पड़ती। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

वैसे श्रोताओं, पुराने गानों की जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये वक्त के साथ और भी अनमोल होती जाती है। तो चलिए अगले गाने की ओर। वैसे आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग जो है हमें फ़ोन कर रहे हैं 4028070 पे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में दिलचस्पी दिखाने के लिए।

वैसे श्रोताओं, पुराने गीतों की मिठास आज भी वैसी ही है और बहुत ही प्यार के साथ इन गीतों को हम गुनगुनाते हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही गीत आपके नाम हम कर रहे हैं।

जिंदगी की तरह संगीत भी हर रंग समेटे हुए है, कभी सुकून तो कभी जोश तो कभी प्यार तो कभी यादें। बस दिल से सुनिए, हर गीत अपना लगेगा। 12:26 हो चुके हैं, स्टूडियो की घड़ी में आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र। सुहाना सफ़र, हर तरह के गाने, हर तरह के पुराने गाने आपके नाम हम कर रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर। बहुत ही प्यारा सा गीत, आज भी लोग इस गीत को बहुत ही प्यार से गुनगुनाते हैं।

श्रोताओं, पुराने गीत किताब के उन सुनहरे पन्नों जैसे हैं जिन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है ना। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मनोरंजन है, आपका भरपूर मनोरंजन हम कर रहे हैं इस समय। तो चलिए, साथ निभाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गीतों का एक खूबसूरत कारवा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत फिल्म काश्त से लिया गया, मोहम्मद अजीज और आशा भोंसले की मीठी आवाज़ों में ये गीत आप सुन सकेंगी।

चलिए श्रोताओं, जीवन के हर मोड़ पे, हर कदम पे हम हमेशा आपके साथ हैं। तो चलिए, गीतों को आप बेहद ही पसंद कर रहे हैं हम जानते हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा प्लेलिस्ट आपके नाम हम कर रहे हैं इस समय रेडियो मनोरंजन पे।

खाना सफर, खाना सफर। तो चलिए श्रोताओ, एक रंगीन सफर आपके नाम हम सजा रहे हैं रंगारंग गीतों के साथ। तो चलिए पुराने गीतों का एक खूबसूरत कारवाही से हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में एक बजने वाली है और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार पुराने गीतों का एक खूबसूरत कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार नील मणि सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार देश के उत्तर में 5 मिलियन रुपए की चोरी के मामले में 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस

0: के एक अभियान के तहत कल येमेन से चुराई गई तिजोरियों में से चार को बरामद कर लिया गया। साथ ही चोरी की गई कुछ नकद भी बरामद हुई है। इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त सूचनाओं और निजी सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज के विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगाया जिसका इस्तेमाल चोरी को अंजाम देने के लिए किया गया था। सर्दियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है और बीमारियां भी। ठंड हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और वातावरण हमारी आंखों की नमी को सोख लेते हैं, जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इस बीच देश में कंजंक्टिवाइटिस के मामले भी काफ़ी बढ़ गए हैं। सभी से सावधानी बरतने की मांग की जा रही है। घरेलू हिंसा के बदले स्वरूपों को देखते हुए राष्ट्रसभा में बहस किया गया। डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पीड़ितों की सुरक्षा को काफी मजबूत करने का प्रावधान करता है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतरीन ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। प्रमुख कदमों में से यह है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है, जो पहले नहीं किया जा सकता था। पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वे शिकायत दर्ज करें और घटना कहीं पर भी हुई हो बिना किसी देरी के जाँच शुरू करें। विदेश की खबरों में वेनेजुएला में आए दो जबरदस्त भूकंपों के बाद मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या इस बीच 1,700 पार कर गई है, 1,943 की तक पहुंच गई है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मलबे तले लोगों को ढूंढ निकालने की कार्रवाई जारी रखी जा रही है, लेकिन दिन ब दिन और समय के साथ ही उन्हें जीवित निकालने की संभावना कम होती नजर आ रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Ninety-four, 95.6, 98.2 megahertz. You're listening RM3 Radio.

चलिए श्रोताओ, 1:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। समय से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में पुराने गीत, चन्ने गीत, हर तरह के गाने जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक प्यारी सी गज़ल के साथ। ये प्यारी सी गज़ल जो है आप जगजीत सिंह की ज़ुबानी आप सुन पाएंगी।

तो चलिए श्रोता, बहुत ही प्यारी सी गज़ल आपके लिए रेडियो मनोरंजन पे। अगर इस समय आप भोजन कर रहे हैं, हम आपको कहेंगे शुभ आहार। तो चलिए श्रोताओ, रेडियो मनोरंजन पर एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए, कुछ हमारी ओर से, कुछ आपकी ओर से भी। गीतों का ये खूबसूरत सफ़र, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अगली भेंट में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है बेफिक्र।

प्यार से प्यारा कुछ भी नहीं, प्यार है तो सब कुछ है। बेहतरीन गीत आपके लिए रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए श्रोताओ, 4020780 पर हम आपसे बातें कर रहे हैं। बहुत ही खुशी हो रही है, आप इस प्रोग्राम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो चलिए गाने को आप ज़रूर एंजॉय कीजिए।

प्रिय श्रोताओं, काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस समय है सीता जी जो कि पॉइंट दिरास्को की रहने वाली है और आज जो है दाविश का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त लक्ष्मण परिवार की तरफ से, अंबुजन परिवार की तरफ से, सुहाती परिवार है तो चलिए हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं दाविश के नाम जो कि पुत्र दो के रहने वाले हैं। तो हमारे तरफ से जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बहुत ही लोकप्रिय गीत है, फिल्म सुजाता से लिया गया, सुनील निगम और कविता पोटवाल की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से।

तो अगला गीत श्रोताओ जाएगा कथोबोन के रहने वाले आप है बाबू अनात्वा जो हमेशा प्रोग्राम में भाग लेते रहते हैं उनका ये कहना है तो चलिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे तो उनकी पसंद पे ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत पुराना गीत तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म से लिया गया तो चलिए उनके नाम हम कर रहे हैं

चलिए श्रोताओ, चंद रोमांटिक गीत आपके नाम हम करेंगे इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। स्टूडियो की घर में 1:32 हो चुके हैं, तो चलिए साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेखा जी डिपने की रहने वाली हैं, साथ में है गीता जी पोफिया की रहने वाली हैं, उनके पति रोहित जी, आदित्य अरब, जानवी तनिश उनकी बहन है, मीरा नुगोव की रहने वाली, माना सुमारू जी हैं कथोबोन की ओर, और उनके पति है सूर्यदेव जी। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत, साथ में केश जी है कथोबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियों हैं नेहा नितिशा और उनके दामाद है अरविंद, साथ में है उनके पति हैं आनंद जी। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए हमारे साथ जीवंती जी है, बेलवेडिया की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। ये अगला गीत उनकी बेटी है माधवी का जन्मदिन है, तो उनके नाम जो है ये अगला गीत। उनके पति है कैलाश, साथ में है प्रकाश, समस्त लक्ष्मण परिवार है, गोविंद परिवार है, साथ में है उनकी बहू। तो चलिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है माधवी जी के नाम। फिर हमारे साथ जो है इस समय कांगोप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी रहती है, तो उनके नाम भी ये अगला गीत। माँ गायत्री जी है न्यूवेल फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय, उनके सभी परिवारों के लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं। बहुत ही पॉपुलर गीत है, फिल्म का नाम है साउथर्न।

तो चलिए श्रोताओं, कुछ खराबियाँ चली आई थी इस कार्यक्रम में, तो इसके लिए हमें वाकई खेद है। तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत सफर से हम जारी रख रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, जिंदगी के बारे में सब कुछ का, सब लोगों के लिए का एक अपना अपना एक राय होता है। किसी के लिए ज़िंदगी एक लतीफ़ा है, किसी के लिए ज़िंदगी एक पहेली है, किसी के लिए ज़िंदगी गम का दरिया है और किसी के लिए ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार है। तो चलिए, हर आदमी के लिए ज़िंदगी का अपना एक राय होता है, तो इसी राय को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी चलने का नाम है हर किसी को।

करके आगे बढ़ना ही होता है। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके नाम हम करने वाले हैं। खबोन की प्रेमिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो ये गीत जाएगा संजय के लिए, उनके तीन भाइयों के लिए, एक बहन है, और ख़ासकर ये गीत उनकी माता जी के लिए।

चलिए श्रोताओं, सुहाना सफ़र कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके फ़ोन कॉल्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे और समाचारों के उस पर आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे। तो चलिए श्रोताओं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गाना जो आप सुनना पसंद करेंगे किशोर कुमार की आवाज़ में। तो चलिए, साथ निभाने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के उत्तर में 5 मिलियन रुपए की चोरी के मामले में 9 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के एक अभियान के तहत कल यमन के चुराई गई तिजोरियों में से 4 को बरामद कर लिया गया। साथ ही चोरी की कई कुछ नकद भी बरामद हुई हैं। इस मामले में अब तक 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त सूचना और निजी सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ सेफ सिटी फुटेज

0: के व्यवस्थित विश्लेषण के बाद उत्तर की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने साउथ डिवीजन की यूनिट और अन्य कई विभागों के सहयोग से उस वैन की गतिविधियों का पता लगाया जिसका इस्तेमाल चोरी को अंतिम अंजाम देने के लिए किया गया था। सर्दी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां, कई बीमारियां लेकर आता है। ठंड हवाएं, घर के अंदर चलने वाले हीटर और वातावरण हमारी आंखों की नमी को सोख लेते हैं, जिससे आंखों में जलन, लालिमा और सूखापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अपनी आंखों की सुरक्षा करनी इस समय ज़रूरी होती है। इस बीच देश के अस्पतालों में कंजंक्टिवाइटिस के भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। सभी से विशेष सावधानी बरतने की मांग की गई है। घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को देखते हुए राष्ट्रसभा में बहस किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल 2026 पर पीड़ितों की सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक आज की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिए घरेलू हिंसा के दायरे का विस्तार करता है। प्रमुख कदमों से एक है कि अब कोई भी पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकता है। पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि वो शिकायत दर्ज करे और घटना कहीं पर भी हुई हो बिना किसी देरी जांच शुरू कर दे। विदेश की खबरों में वेनेजुएला की ये खबर, पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर आपात स्थिति की घोषणा की गई है। वहाँ लगातार आए दो ज़बरदस्त भूकंपों के बाद मारे गए इस लोगों की संख्या 1,900 पार कर गई है, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और हज़ारों लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच वहाँ पर बचाव कार्रवाई तेज़ कर दी गई है और मलबे तले बचे लोगों की को भी ढूंढ निकाला जा रहा है। समय के साथ साथ वहाँ पर जीवित बचने वालों की संख्या को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio. Radio.
3: RM3 Radio. Radio. Radio.
4: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
5: नमस्ते, आप सबको के स्वागत करत ही जा हमनी के कार्यक्रम में धरोहर के सरोवर कार्यक्रम जो हर सप्ताह हमने लेके आए ले जा। ये कार्यक्रम मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत करल जात बा। हमारे अरविंद साथ में हमने के तकनीकी सहयोगी संजुक्त तो को भवन, थोड़ा घड़ी बाद हमने के सहयोगी जय गणेश दाऊ सिंह जी भी अयन। एक दुगो बात करे, एक दुगो चीज ऐसा जो हमने भोजपुरी के बारे में तो लोग के बताते आ रहे जा। कार्यक्रम में आज कविता रही, भोजपुरी सीखब जा, गीत सुनब जा, साथ साथ में लैका लोग के भी तनिकुन किस्सा कहानी रहेला। तो आप पसंद करेला इस सरोवर में जोन बहेला, जोन धरोहर बहेला है, जैसे निकल के तोहर लगे आवेला और ई सब जोन हम लगे आलबा ऐसने नहीं आलबा। एकरा एगो पूंजी जोन है, एकरा बचा के रख ले रहा जा हमने के पुरखन लोग, लोग के याद करी ले जाओ, लोग के हमेशा याद करब जा कि ई धरोहर के बचा के रख लो जा और उस सरोवर संगे हम लगे आल हो जा। ई शत शत नमन हमने के उस सब पुरखन लोग के। तो आज कार्यक्रम के आगे बढ़ाव जा, एगो गीत सुने ले जा, फिर आगे बढ़ाव जा।
3: RM3 Radio.

ये गीत सुन के सब कोई भावुक हो जला। हमने की टेक्निकी सहयोगी संजू भाई बोल रहा है ये गीत आज पहला सुनयन, चला सुने नहीं जा, अब तन कुन आगे बढ़ जा, कहे कि आजकल अभी गल सप्ताह सब कोई बोला था जा पानी नहीं बा, पानी नहीं बा, अकाल पर रहल हमने के जो जलाशय लोग बा पानी कमती हो ले जात बा, तो एक बाद हई सप्ताह देखा कितना बहुत पानी पानी बरस गया, अब एक में से कितना पानी जमा कर ले जाए दूसर बार बा का ही बात है। भोजपुरी संस्कृति में हमी के जो धरोहर है ओकर में जब ढेर पानी आवेला तो ओकर एगो रीति रिवाज है संजू, जब शादी कर पानी आ रहल तनिकुन धला तू कढ़ाई में नहीं खेल हुआ, बोले जा जे लोग देखची कढ़ाई में खाला ओकर जब शादी होला तो वो ढेर बारिश होला, ई एगो मान्यता है। अब जब शादी के समय जब अनुमान लगावल जाला कि ढेर पानी बरसी तो कुछ करे लंजा पानी बांधे लंसा हम जाने जा हम दादी जुन रहलन, हम दादी हम के लेके जाए खेत में कारो कान में जिसे बोले जा तो जा परी छुरी ऐसे छुरी के लेके माटी में से खोसी और दुगो जिसे गांछी या फिर लापाई हुए लेके इसे बांधे हुए मतलब पानी बांधे की, तो जब शादी ब्याह हो जाए तब जाके खुले लग सा, तो अभी तक उन्हें चाह करे कि हमें अभी के पानी के जरूरत बा, अब पानी के जरूरत है तब कुछ चाह करे के भोजपुरी में एक बार में कुछ बोले बंजा कुछ करे लंजा पूजा करे लंजा और गीत गावे लंजा कौन गीत हर परौड़ी देख ला जाने ला हर परौड़ी, तो हर परौड़ी पर हमके सहयोगी जय गणेश दाओ सिंह देखते एगो पुस्तक हमके जो हजा प्रकाशित कल ही जा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एकर में एगो कविता बा हर परौड़ी, ये कविता सुनाई ला जा। पनिया बिना परल बा अकाल, पनिया बिना परल बा अकाल, जनावर चिड़ै सब कोई बा बेहाल, जनावर चिड़ै सब कोई बा बेहाल, बोवल धनुआ सुखागल, बोवल धनुआ सुखागल, मटिया सगरो सुखागल, ढेर करली सा पन्या के जियान, कबो नहीं सोचनी एकर मान, जियान जाने को जोड़ा।

0: पानी के जियान करेगी। हाँ धला पानी इसने गस पिए जिस हुए पानी के जियान करेगी, पानी के जियान नहीं चाह करेगी, पानी बहुत मूल्यवान है। आगे बोला थुवन, चले पूजे ईश्वर देव की, इनकर मनाइला सब मिलके, झाल ढोलक बजे लगल, सुबिरन होवे लगल, गूंजे लगल हर परौरी के गीत, गूंजे लगल हर परौरी के गीत, गावे लगल आगे के रीत, पनिया बरसा हो नारायण, पनिया बिना परल बा अकाल, बरसे लगल मुसर के धार, गावे लगल चिरई हजार, बोवल धनवा हरियाल, झूमे लगल जेवा हमार, आवे लगल पनिया, बहे लगल नदिया। तो यह हर प्रौड़ी के गीत, हर प्रौड़ी जो हमनी धला भगवान के बनाया ले जाकी वो पानी बरसाई। जीवोदन जी की गावले को गीत बा इसने पनिया बरसेला, पानी बरसेला, बहुत ही सुंदर गीत रहलू। तब हर प्रौड़ी भोजपुरी के वो धरोहर है, ये धरोहर जो अभी ले काम आवेला, खासतौर पर जब पानी नहीं बरसेला, एगो समय रहल अभी 4-5 बरिस होला जब काफी अकाल पर रहल, तो ढेर कोई गरलन जा गंगा तालाब, ढेर कोई गरलन जा मऊ बाकुआ ओजा पर जाके हर परौड़ी गई लेलन जा, पूजा पाठ कर लेलन जा। तो ई धला भोजपुरी संस्कृति के एगो एगो अभिन्न अंग है। नहीं चलो आगे बढ़ी जाओ, गीत सुनी जा, फिर कार्यक्रम के आगे बढ़ा।
1: RM3 Radio.

आप लोग के याद हो हमने भोजपुरी सिखाए बजी तो लोग के नानार्थक शब्द के बारे में बताओ जा होमोनिम्स माने भोजपुरी के एगो ऐसा शब्द जेकर एगो से जस्ती ओकर मतलब है ओकर मीनिंग है जिसे बोला जा। अब जैसे एगो शब्द लेवब जा घोंट घोंट घोंट माने जैसे अभी हम लगे चाबा तो एक घोंट चा पियब एक घोंट पानी फिर बोला जा घोंटे के कुछ है संजू घोटे के इमली घोटाई सुन ले इमली घोटाई तो इधर घोटे के से उकरा घुमाए के एक तरह से नहीं यही शब्द से इमली घोटाई बनल बा इमली घोटाई कब होला शादी के दिन गलवा कब हो इमली घोटाई में हर हर सामदी के जाल अच्छा अच्छा ये अपन कैमरा लेके जा ना हर शाम दिखे थे सब इमली घोटा ये सब देख लन साथ में एक दूसर शब्द बा चूस चूस चूस माने चूसना गन्ना चूसता और एक जना के चूस बोला जा जे कंजूस है चूस मखी चूस ने सुना वो बन जाए मक्खी चूस है चूस मक्खी मक्खी चूस माने बड़का पैंग धला ओकर ओकर ओकर जेब में कुछ बा एगो कहावत है ओकर जेब में कुछ बा सौंप बा ओकर जेब में सौंप बा ओकर जेब में कंटा बा कोई बोला ओकर जेब में आंगी बा ते धला धला ओकर ओकर हथवा नहीं जला ओकर जेबवा में और एगो शब्द है चोखा हो गल चोखा चोखा हो गल माने हाँ फीती चोखा जैसे निमन से काटे या फिर जब बोले से चोखा हो गल धला वो अच्छा हो गल स्वस्थ हो गल एगो और शब्द ले रजा घटकल या फिर छटकल छटकल छटकल कुछ है छटकल कूदे की कूदना छटकल अब कोई छटकल चलाता भला एकदम फिट बा अच्छा स्वास्थ्य बाकर आरोग्य शब्द लीला से झोल दिलक झोल दिलक कुछ है झोल दिलक आग डाल दिलक जला दिलक हाँ झोल दिलक पर औरू भी ऐसे झोल दिलक महंगा झोल दिलक थला एगो काम झोल दिलक थला बोलन जा हाँ भिल था भाई कबो मासो लोग आल काम करे तक कमवा के थला हालिया ली मार के एक दो काम छोड़ छार के हो बोलन जा कमवा झोल दिलक जरेला जरेला जरेला कुछ बात जरेला जरत लोग जरत हो जरेला जरत लोग जरेलन जा कोई के सफलता के देख के जरेलन जा और एक अर्थ बा जरे की मान ला आग लगल बाकर में मुर्दा जरेला लकड़ी जरेला ठीक ई सब जो शब्द हमने जो भोजपुरी पाठ्य पुस्तक माला हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश दिमराला मोहित जी के लिखा ली सब देखा वो लिख के चल गल लोन पर कितना काम आवता ए एगो और ले ला जा तुवता

0: टुवता, टुवता माने छुई के, छूना, या फिर टुवता ये भी बंजर गत्ते गत्ते चले के धीरे धीरे करना, धीरे धीरे काम करे के टुवता। ठन ठन ठन ठन थला सूखा पानी नहीं हुई, पानी ना होना, सूखल लकड़ी ठन ठन। डूब गए, डूब गए, डूब गए मतलब मिट गए, या फिर सूरज डूब गए, खेत पानी में डूब गए, ठीक। अब ये भी बोलन जा कि ओकर पैसा डूब गए, ओकर पैसा डूब गए, कहीं कहूं पर पैसा दलक, पैसा डूब गए, है एकर प्रयोग होला। ढकेल ढकेल ढकेल ढकेल ना माने धक्का देके ना, ढकेल, या फिर अभी संजू बोललक ढकेले के माने हाँ भाई कर खाओ, क्योंकि क्योंकि गुस्सा में बोलबा खाए की तरह बोलबा खो, निमन से बोलबा तो बोलबा खा ल, अब क्योंकि गुस्सा में बोलबा तो कुछ बोलबा ले ढकेल, ले ढकेल। हाँ सतुवन चला यही बात से को गीत सुने ला जाए।
1: RM3 Radio.

0: ते गीत कोयल बिन बगिया न सोभे राजा सुरभि कश्यप के गावल गीत है। देखा निमन संगीत, निमन बोली, निमन गीत बन जाला। अभी संजू से बात करते नहीं, आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी भोजपुरी गीत बन जात बा। अभी हमने कोशिश करब जखनो दिन हमने के धरोहर के सरोवर के लेके वो गीत तैयार करे के कौन चीज हुआ था आजकल AI से भोजपुरी सीखे खोज बता AI संगे सब सीख ले। एगो उदाहरण दो था, मान ला हम अभी हमार मोबाइल में AI से एगो प्रश्न पूछा भोजपुरी में, कहां बा एक आवाज जा गैनी भोजपुरी में लिखा था, भोजपुरी में भोजपुरी MBC में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में इन भोजपुरी में हमके जानकारी चला मिले के देखेंगे का दे। अभी पकड़ता बोला सर्चिंग पकड़ता तो हमके दिले बा मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन MBC में भोजपुरी चैनल एगो मुख्य TV चैनल बा जेकर शुरुआत जनवरी 2013 के भइल रहे। देखला ई भोजपुरी चैनल पर जानकारी देगा, ई चैनल मॉरिशस के भोजपुरी भाषी जनता खातिर विशेष रूप से प्रोग्राम प्रसारित करेला। अभी कर में दिल दिलवा भोजपुरी समाचार MBC पर रोज भोजपुरी में ताजा समाचार प्रसारित कर जाला। एकर ऑनलाइन रिप्ले भी MBC भोजपुरी समाचार पेज पर उपलब्ध होला। भोजपुरी फुलझड़ी गीत अन्य कार्यक्रम रेडियो सेवा दिखाई जा पर TV के साथ साथ MBC के रेडियो में भी भोजपुरी के सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाना प्रसारित कर जाला। तो बहुत कुछ मिल जाला सब भोजपुरी के जो बोलबाला हो गल बा AI में जब चल गल बा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा हो गल बा। तो लड़का लोग AI के माध्यम से सब बजा भोजपुरी सीखे सुने। अब देखा भोजपुरी लोक कथा बा, भोजपुरी लोक कथा, वो भोजपुरी लोक कथा अभी को सुनाओ जा। वो भोजपुरी कथा के लेके ओकरा कॉपी पेस्ट करके AI में डाल दे बा, बोल बा भोजपुरी फोक टेल्स कन्वर्ट इन ग्राफिक्स इन डिजिटल फॉर्म, तो वो तोरा वो कार्टून बना के दे दे ओकर हिसाब से। देखब कितना आगे पहुंच गए बा। चला एगो भोजपुरी लोक कथा सुनी जा।
1: ए रवि बेटा ई का करला हियाव। रवि बेटा अपन घर अंगना आसपास चाहे सफा रखे के आव, तोहरा ई पर एगो किस्सा सुना।
2: किस्सा सुनब किस्सा सुनब, दादी से हम किस्सा सुनब किस्सा सुनब।
1: एगो तालाब रहे, तालाब के पानी हरदम सफा रहे। तालाब के मछली आपस में मिलके रहे, हुआ जनावर चीरा।

0: जल जंतु आपस में मिलकर रहलन सा। उ तालाब के पानी सब कोई पिए, हुआ सब कोई हंसी खुशी से जिए। एगो बगुला कबो कबो उ तालाब में पानी पिए आवे। एक दिन बगुला पानी पिए आल, बाकिर तालाब के पानी मैला रहल। उ पानी नहीं पिलक, छोटा छोटा मच्छी मरल रहल, मक्खी भिनभिनात रहल, कचरा उपलाल रहल, कमल के फूल भी मुरझाल रहल। ई सब देख के बगुला उदास भई। तब एगो बड़ा मच्छी ओकर से विनती करला।
1: ए मिंतर, हमनी दुखी है जा।
2: ई का होल, तालाब कैसे मैला भई?
1: का बोलब, कुछ दिन से एक जना ई तालाब में कचरा फेंकत बा।
2: ई बहुत दुख के बात बा, हमनी सब के जान खतरा में बा।
1: ए मिंतर, तू ही हमनी के जान सकबा बचाए।
2: हम कैसे सकब जान बचाए?
1: तू जा, इस संदेश राजा तक पहुंचा दे।
0: ई खबर राजा तक पहुंचाए।

0: तालाब के चाहो बगर लक्सा लगवा देला। वो आदमी जैसे कचरा फेंक के बैठल और जे सट गए और लगल जोर जोर से चिल्लाए,
1: ई का होल हम कैसे सट गईली, कैसे निकलब अब कैसे निकलब।
0: उ तो हौजे सटल रह गए। राजा ई खबर सुन के तुरंते आवेला।

0: कलप किरुविला
1: राजा राजा अपना माफ कर दे राजा अपना माफ कर दे अपना इलासा से निकाल दे अपना इलासा से निकाल दे निकाल दे
2: दुष्ट तोरा जरूर सजा मिली। तू तालाब के जल्दी सफा कर। जब तक तू इ गांव में जीवा इ तालाब के हमेशा सफा रखिया। कान खोल के सुन ल, इ तालाब हमेशा चाहिए सफा रखे के। महिला रही तो तोरा कड़ा से कड़ा सजा मिली।
1: हाँ राजा ई तालाब के सफा रखब जब महिला नहीं फेंकब नहीं फेंकब। हाँ राजा हम अपन कान पकड़ है हम हरदम ई तालाब के सफा रखब सफा रखब।
3: रवि बेटा इही खातिर बोलल जाला हमेशा चाहे अच्छा काम करे के काहे के जैसन करनी।

0: बहुत सुंदर बा, एके हमेशा सफा रखिया।
1: RM3 Radio.
2: लोक कथा ये भोजपुरी में अनगिनत लोक कथा है। हमने कोशिश कर लिया कि हर सप्ताह एक गो दू गो लोक कथा तो लोग के सुनाई के ये सब लोक कथा के सुरक्षित रख ले ही जा। पर ये लोक कथा जो है एकर का बोल बा भरमार बा मॉरिशस में, भारत में भी, और वो भारत के लोक कथा मॉरिशस के लोक कथा में काफी समानता बा। एकर पर बहुत लंबा शोध कार्य भी होल बा जो भारतीय लोक कथा बा और मॉरिशस के लोक कथा। पर मॉरिशस के लोक कथा में एगो खासियत है, एगो खासियत ई है कि एकर में मॉरिशस के ढेर जगह ढेर घटना पर आधारित लोक कथा बनावल गल बा। जन्म करेला परितालाब पर कहानी बा लोक कथा बा, हमनी के मुड़िया पहाड़ पर लोक कथा बा, सिद्ध कास्काद पर लोक कथा बा, जे आप उत्तरी क्षेत्र देने रहेला हो जागो पोंसाकोंसू, संजू गलो आप पोंसाकोंसू थला देपिने छोरबा जातो वा कोई राची देने तो हो जागो पूल बा ओकरा पोंसाकोंसू बोलें जा, ओकर पर भी आधारित कहानी बा। अब इधर आइबा कहाँ बोलें जा मुड़िया पहाड़, हाँ उतम समारेल पर कहानी बा, तो लोक कथा सगरो बा जहां देख बा। अब एक दुगो जैसे हम के सिंह पर्वत मोतालियो ओकरो पर भी लोक कथा बा, हमें के मृकुंद मृकुंद माने थोसे है ओकरो पर भी लोक कथा बा, हमें के दो पर तो अनगिनत लोक कथा बा। तो ये लोक कथा के दिखले बा, कोई लिखले बा या फिर कोई अपन अपन दिमाग में सोच के अपन लैका लोग खातिर लोग के सुनाए खातिर इसने बनैले बनैले बनैले एगो लोक कथा बन गल। प्रहलाद रामचरण जी के नाम सुन लो, बहुत महान लेखक कथाकार इतिहासकार प्रहलाद रामचरण जी बोले रहलन कि ढेर कोई बोले बात वैसे कि ये सब लोक कथा वो लोग अपन दादी दादा से सुन के ओकर हिंदी में अनुवाद करके काफी लोक कथा संग्रह मॉरिशस में बा। तो आजकल ये सब लोक कथा के ओकर ओकर असली भाषा जो है भोजपुरी में भी आनल जात बा भी सुन ला एगो, तो हमने कोशिश करब जा कि तो लोग के रोज एगो ऐसन कथा सुनाब जा और वो आगे बढ़ब जा। अब चला हमने के सहयोगी जय गणेश दाव सिंह जी के सुने, अभी शादी ब्याह के समय आवत बा तो शादी गीत पर तनिक हमी के बतैयन।
1: RM3 Radio.
3: मॉरिशस के विवाह गीत पर बात करब। मॉरिशस के विवाह गीत हियाओं के विवाह संबंधी विधिवन पर आधारित बातें। विवाह के गीत वर रक्षा से लेकर के चौठारी तक के विधि व्यवहार से संबंधित बातें। अलग अलग कर्मों में अलग अलग शैली के गीत प्रचलित बातें। इस प्रकार मॉरिशस में तिलक चढ़ाने के दिन से लेकर के मारो मंडप के गीत हरीश हरदी माटी को राय उपटन सोहाग कन्यादान भंवर घुमाय लावा मुराय सिंदूर बहुराय कोहबर विदाई आदि विविध गीत प्रचलित बातें। विवाह संस्कार की ऋतु आने पर विवाह के कई दिन पूर्व ही मातृशक्ति विवाह के गीत गाने आरंभ शुरू कर देवेलन। गांव में ये प्रथा बाटे के जिनकर घर में विवाह बाटे ओ घर की तथा ओ गांव की नारी शक्ति एक जगह एकत्री होकर के विवाह गीत गायन जा। वर के यहाँ वर पक्ष के गीत गावल जाए। ये प्रकार तिलक बेटा ब्याह परछावन द्वार पूजा आदि वर पक्ष वालों के यहाँ गाने जाने जितने भी गीत बाटे सोहाग कन्यादान बेटी ब्याह

विदाई आदि कन्या पक्ष के गीत के यहाँ गावल जाए। विवाह के गीतवन में हिंदू समाज के सजीव चित्रण मिलेला। ग्रामीण लोगन के जीवन, उनकर आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मिलने जुलने, उठने बैठने, सेवा सत्कार आदि बटवन के वर्णन होवेला। विवाह गीत वर्णनात्मक होवेला तथा इनकर में विवाह संबंधी सभी विधिवन के वर्णन होवेला। लौकिक विधिवन में जैसे एगो चित्र खींचल गेल बा, उदाहरण

0: RM3 Radio. Radio.
1: तेरे से सुना जाएगा निजदाव सिंह से विवाह गीत यानी एगो तिलक गीत पर चर्चा कर लन। अभी सप्ताहांत काफी शादी बा, तिलक रही, परछावन रही, हरदी रही, तो ओहि खातिर ई सप्ताह में सोचनी जा कि ई दुगो गीत तो लोग के सुनाब जा। तो एक संगे हमनी के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम है जहाँ पर पूरा होत बा। और संजू बोलत बा के कि वो भी शनिवार रविवार के शादी में जाए, खाली कछु पूरी खाए नहीं बल्कि तनकुन कमो करे। हम बोला जाना कि ये भी सब जाने लन हरे वो रीति रिवाज कैसे होला, कहे कि जाके जब देखे लन रिकॉर्ड करे लन तो सब हम क्या के बोले लन अरविंद ऐसे होला ऐसे होला ऐसे होला, तो हम ये सीखी ला जा और दो तो लोग के रेडियो में बताए ला जा कैसे का होला। तो आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद हम के कार्यक्रम सुन ला, और कोनो सुझाव रही तो हमनी के जरूर बोलिया जा। बहुत धन्यवाद जय गणेश दाव सिंह के, हमनी के सहयोगी संजू के भी। फिर मिलब जाए को नवा कार्यक्रम संगीत, तबले दुल्हा के स्वागत करे खातिर एगो परछावन गीत सुनी ले जा। नमस्ते।

तीन बजे के समाचारों में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार। बात करते हैं हम स्थानीय स्तर के बारे में। पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ समिति की अंतरिम रिपोर्ट की हम बात करें, जिसे कल प्रधानमंत्री ने संसद में पेश किया। ये रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इसका उद्देश्य व्यापक परामर्श के आधार पर मौजूदा पेंशन प्रणाली में ऐसा सुधार करना है जो पर्याप्त, टिकाऊ और न्यायसंगत हो। 271 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में मींस टेस्ट का प्रस्ताव भी शामिल था। इसके तहत 60 वर्ष की आयु से आय के आधार पर चरणबद्ध पेंशन देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि बजट भाषण में इस प्रस्ताव को शामिल किए जाने के बाद इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आज के हमारे सायंकालीन संस्करण में हम रिपोर्ट के पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें मॉरिशस की जनसंख्या की बदलती संरचना और बढ़ती आयु वाली आबादी से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। मृत्यु के बाद व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर शीला ओमुगम ने शोध किया है। उन्होंने हाल ही में डिजिटल आफ्टर लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस

0: शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक में लेखिका ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल खातों और व्यक्तिगत डेटा के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल चार्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अफ्रीका अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ मंगलवार को मॉरिशस में अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए सरकारी नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना ₹10,000 से बढ़कर ₹20,000 किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेक फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल है, लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेक्सिको शहर में फीफा विश्व कप के जश्न के दौरान दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 19 वर्ष एक युवती, 48 वर्ष एक महिला और 44 वर्ष एक पुरुष शामिल हैं। ये घटना मंगलवार को कल उस समय हुई जब विश्व कप में इक्वाडोर पर मेक्सिको की 2-0 की जीत के बाद बड़ी संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़े। शहर प्रशासन के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग मुख्य रूप से शहर के मध्य स्थित एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक के आसपास एकत्र हुए। ये 1986 के बाद विश्व कप के नॉकआउट चरण में मेक्सिको की ये पहली जीत थी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। साथ रहे सुन पाएंगे शुभ समाचार। Choc samachar sunye. Quand Charles chemin grenier mais quand Charles chemin grenier mais une assis sale qui 79 years old qui Sri Rajana Naraya श्री राजाना नारायण, जिन्हें धर्मनंद के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती ममिता नारायण के घर कौशौलु शमैग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाले शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रुद बॉशेरी मुकामे 69 साल के 69 years old के श्री सूरजलाल सोनिया जिन्हें विजय के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अमरावादी सोनिया के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्तों की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुमरो अत्यान एम Le numéro 9, Morcellement Mount, Pamplemousses, mais Morcellement Mount, Pamplemousses, mais à 6 ans, qui est 80 years old, qui est Shri Bremananda Mangapati, Tidhananda, qui n'a pas été blogzada, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que रविवार को सुबह 10 बजे उनके घर पॉम्पलेमूसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ऑन संडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आज 1 जुलाई बुधवार का दिन है और बिल्कुल हम आ पहुंचे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम हमारे सेहत पर ज़रूरतमंद जानकारियां जो बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं। और बिल्कुल इस सप्ताह मनाया जा रहा है जुवेनाइल आर्थराइटिस वीक, यानी इस पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट सीकेयर यूनिट से आए हुए डॉक्टर करुणागरन, जो हमारे इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान होंगे। वैसे आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं, MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं और साथ ही साथ रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे 2:00 से 4:00 के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर जी का। डॉक्टर करुणागरन, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग

0: टू ऑल द लिसनर्स एंड द व्यूअर्स।
1: हां जी, और आज के इस कार्यक्रम में जुवेनाइल आर्थराइटिस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जी, जुवेनाइल आर्थराइटिस क्या है?
0: जुवेनाइल आर्थराइटिस इज अ सॉरी जो ग्रुप ऑफ डिजीज होते हैं जो बच्चों में होता है 16 साल के पहले वाला उम्र में 16 ईयर्स के नीचे ये हो जाता है और इसका डायग्नोसिस के लिए कम से कम 6 हफ्ते के लिए ये डिजीज होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, मोस्टली ये इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है।
1: और डॉक्टर जी, ये बड़े वालों का जो आर्थराइटिस है उससे कैसे अलग रहता है ये?
0: मेनली जो एज ग्रुप से डिफरेंस हो जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर्स बड़े वाले जैसे मिल जाता है। पहले इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता था।
1: अच्छा।
0: अभी इसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस बोलते हैं।
1: तो जैसे आप बता रहे हैं ये 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, रीजन क्या है इस के होने का?
0: जो जैसे नाम में ही है इडियोपैथिक, इडियोपैथिक मतलब कारण हमें पता नहीं है।
1: अच्छा।
0: और इसका जेनेटिक फैक्टर्स होता है, तो जैसे HLA-B27 जैसे एक जीन एक्सप्रेशन से हो जाता है, और बहुत लोगों को ये ऑटो इम्यून डिसीज मतलब अपने इम्यूनिटी अपने टिश्यूज घुटनों को टिश्यूज को फॉरेन समझ के इसको अटैक करे जाता है, तो ऑटो इम्यून डिसीज।
1: तो इसका लक्षण क्या होता है डॉक्टर जी?
0: तो सिम्टम्स
1: तो
0: जैसे ये बच्चों में ये बहुत कॉमनली लिम्पिंग, जैसे लंगड़ापन चल के आते हैं बच्चे, तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, तो जॉइंट स्टिफ हो जाता है, दर्द होता है, सूजन हो जाता है, तो ये अर्ली स्टेजेस में। कुछ लोग को रैशेस हो जाता है और बुखार भी हो जाता है, और कुछ लोगों को आंख में लाल हो जाता है, यूवीआईटिस बोले जाता है। तो लेट केसेस में जो डिफॉर्मिटीज से आ जाता है बच्चे।
1: अच्छा। तो यानी जुवेनाइल आर्थराइटिस आंखों को भी असर करता है जैसे आप बता रहे हैं।
0: हाँ, इसमें बहुत वैरायटीज है।
1: अच्छा।
0: तो एक तो बोलते हैं हम ओलिगो आर्थराइटिस। अच्छा। ये बहुत कॉमन टाइप हो जाता है, तो इसमें चार घुटनों से कम डैमेज हो जाता है। सेकेंड टाइप पॉलीआर्थराइटिस, मतलब 5 or more joints। तो तीसरा सिस्टमिक, ये सिस्टमिक आर्थराइटिस में जॉइंट्स के अलावा इम्यून सिस्टम को, लिम्फ नोड, लिवर, स्प्लीन, जो सिस्टमिक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। देन इसमें यूवीआईटिस, इसका टाइप में यूवीआईटिस आंख को भी अफेक्ट करता है। तो कुछ बच्चों को ये अनडायग्नोस हो जाता है, ये ग्लोकोमा बन जाता है, कैटरैक्ट बन जाता है
1: छोटी उम्र में ही।
0: हाँ हाँ। और विजन लॉस भी हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। एक और टाइप है उसमें एंथीसाइटिस बोलते हैं, जैसे टेंडन को कैल्सिफिकेशन करता है।
1: ओके।
0: तो और लास्ट टाइप बहुत कम टाइप है, वो सोरियासिस टाइप बोलता है।
1: ओके।
0: और कुछ और वैरायटीज है जिसमें हम
1: अभी रिसर्च हो रहे हैं। तो डॉक्टर जी, जो कॉमनली पाए जाने वाले जुवेनाइल आर्थराइटिस है वो कौन से टाइप्स हैं?
0: जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है।
1: अच्छा।
0: पहले इसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता था। Okay. अभी जुवेनाइल इडियोपैथिक
1: आर्थराइटिस। और जैसे आपने बताया ये जेनेटिक भी हो सकता है।
0: हाँ, जेनेटिक फैक्टर्स से हो जाता है।
1: Okay, यानी माता पिता को अगर है या ऐसे कुछ है या फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो ये होने के चांसेस ज्यादा है।
0: जैसे ये जेनेटिक, ये जैसे बताया HLA-B27 जी, और उसके बाद ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होता है, जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर, जो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है उसमें से ये ट्रिगर हो जाता है,
1: इनहेरिट होता है उसमें से,
0: इन्फेक्शन से ऑटोइम्यून शुरू हो जाता है।
1: ओके। और जैसे जो दूसरे कॉजेज हैं जॉइंट पेन्स के, क्या वो रिलेट कर सकते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस के साथ?
0: बच्चों में बहुत कॉमन कॉज ऑफ जॉइंट पेन है ना, जो रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं, तो कुछ इन्फेक्शन हो गया तो जॉइंट में उसका रिएक्शन जॉइंट में होता है, पानी हो जाता है, बच्चों टेम्पररीली लिम्प कर जाता है, जॉइंट सूजन हो जाता है, दर्द होता है। अगर ये

0: अब ये तो कम टाइम रहता है, अगर ये 6 हफ्ते से ज्यादा होता है तो हम
1: चांसेस बढ़ जाते हैं,
0: जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का चांस बढ़ता है। कुछ और बच्चों में ग्रोथ पेन हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो जैसे बोन ग्रोथ हो जाता है ना समटाइम, उसी के वजह से दर्द होता है। कुछ बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी में
1: उसके कारण भी होता है। ओके।
0: और कुछ और कारण भी, हिप पेन जैसे पर्टिस डिसीज, ऐसे कुछ भी होता है, लेकिन कॉमनली ये ट्रांजिएंट आर्थराइटिस बोलते हैं।
1: यानी कई कई बार ऐसा भी हो सकता है कि या चोट, बहुत गहरी चोट लग जाने की वजह से या घाव लग जाने की वजह से हड्डियों में जब कहीं सूजन आ जाती है तो ये आगे चलकर कहीं आर्थराइटिस जैसा कुछ पेन क्रिएट कर सकता है, चांसेस है?
0: हाँ हाँ, ये अगर आपका बच्चों में बहुत ज्यादा इंजरी हो जाता है, उसमें अगर बच्चों का वो ग्रोथ सेंटर होता है, जॉइंट्स में ग्रोथ सेंटर होता है, एंड्स ऑफ द बोन, हड्डी के ऊपर और नीचे हड्डी ग्रोथ करने के लिए सेंटर्स होता है, अगर उसको अफेक्ट कर जाता है या कार्टिलेज को अफेक्ट कर जाता है, आर्थराइटिस बन जाता है, वो सेकेंडरी आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, लेकिन ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस नहीं बनता है।
1: बिल्कुल, ये जैसे आप बता रहे हो वो जेनेटिकली, वो अंदर से ही हो रहा है।
0: वो इंजरी से आर्थराइटिस वो अलग है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस ये ट्रीटमेंट अलग है।
1: तो बिल्कुल आज हम ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे, पर डॉक्टर जी हम जरूर जानना चाहेंगे कि एक माता पिता को किन लक्षणों से पता चलेगा कि ये नॉर्मल पेन नहीं है, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो कि वो पेन एक्सीड होगा और मे बी मोर देन 6 वीक्स से ये अगर ज़्यादा जाता है, तो कैसे हम इसको डिटेक्ट कर पाए कि ये एक नॉर्मल पेन नहीं है?
0: जो माता पिता तो 6 हफ्ते वेट करना नहीं है, जो अगर फीवर से, फीवर के साथ जॉइंट पेन हो जाता है या रैश के साथ, रैश मतलब लाल हो जाता है छंडी में, रैश के साथ फीवर और जॉइंट पेन होता है, या आंख लाल हो जाता है यूवेआइटिस के साथ होता है, या सिंपली बच्चे अगर बिना चोट बच्चा, आपका बच्चा दर्द बोलता है, सूजन हो जाता है, लंगड़ापन करता है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना, आपका स्पेशलिस्ट से, पीडियाट्रिशियन या ऑर्थोपेडिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट,
1: बिल्कुल,
0: तो उनके,
1: जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो आंख लाल हो जाता है, मान लीजिए अब आंख लाल हो गया तो डॉक्टर, ये तो स्वाभाविक बात है कि एक पेरेंट उनको आंख के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तो क्या आंख के डॉक्टर को ये पता चल सकता है कि बच्चे को जुवेनाइल आर्थराइटिस जैसी कोई समस्या है?
0: हाँ, ये सब केसेस में यूवेआइटिस आंख लाल नहीं होता है, कुछ कुछ ओनली कम पेशेंट में होता है, लेकिन ये ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को भी ये अवेयरनेस है, तो यूवेआइटिस जॉइंट के पेन के साथ जो उसका पार्ट आंख वाला वो देखेगा, फिर वो रेफरेंस करेगा आपको,
1: यानी मतलब तो, उसका जो नॉर्मल आई पेन होता है या जो रेडिशनेस होता है आंख में, उसका और जुवेनाइल आर्थराइटिस का जो आंख का समस्या है, क्या ये सेम सिमिलर होते हैं, क्या ये
0: सिम्टम्स तो सिमिलर है, यूवेआइटिस इसमें भी हो जाता है उसमें भी हो जाता है, लेकिन जब आप ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को पता है, वो सिम्टम पूछेगा ना, तो बच्चों का अगर जॉइंट पेन के भी, जॉइंट पेन भी है तो वो रेफर जरूर करेगा।
1: बिल्कुल, जैसे वो जैसे जैसे वो इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, तो आप उसके हिसाब से पता चलेगा। तो डॉक्टर जी जैसे हम कहते हैं कि हड्डी में सूजन आ जाती है, तो सूजन का मेन कारण क्या हो सकता है, और क्या ये हमारे बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, क्या ये उसको कमज़ोर कर सकता है?
0: ये तो जैसे पहले बताइए, ये ऑटो इम्यून डिसीज है, ये तो अपने ही इम्यूनिटी अपने टिश्यू को
1: कमजोर
0: फॉरेन समझ के अटैक कर जाता है।
1: अच्छा,
0: ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून के वजह से ये आर्थराइटिस ये हो जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे मतलब एक तरह से हमारा ही इम्यून सिस्टम वो हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, तो एक तरह से वो हमारा दुश्मन ही बन गया है, तो हमारी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वो खराब होती जा रही है। और जैसे आपने बताया कि ये जेनेटिक तरीके से भी हो सकता है, तो क्या अगर माता पिता में भी नहीं है, मान लीजिए माता पिता में नहीं है, फिर भी ये बीमारी बच्चों में आ सकती है 16 साल की उम्र के नीचे वालों के बच्चों?
0: हाँ जी, जरूर।
1: ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस पर, और हड्डी में सूजन होना या किस प्रकार से जुवेनाइल आर्थराइटिस ये डेवलप हो

होता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है, और अगर किसी बच्चे को हो जाता है और अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इस पर आज की चर्चा का ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम में अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं 402-8085 पर। चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

0: आज की चर्चा का कार्यक्रम और बेशक जुविनाइल आर्थराइटिस यानी बच्चों में पाए जाने वाले गठिया रोग आर्थराइटिस की समस्याएं जो मॉरिशस में भी उपलब्ध है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे डॉक्टर जी हमें अभी बता रहे थे। डॉक्टर करुणाकरन आज हमारे मंच पर आए हैं और वे एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सीनियर कंसल्टेंट है सीके यूनिट में। सो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम ज़रूर जानेंगे कि आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस हमारे हड्डियों को किस प्रकार से नुकसान पहुँचा सकता है, किस प्रकार से ये समस्या और बढ़ती जाती है और बिल्कुल किस तरह से ये डायग्नोस होता है, इस पर थोड़ी ही देर में हम चर्चा करेंगे। ये पूछते हैं डॉक्टर जी से कि डॉक्टर जी आर्थराइटिस जो है बच्चों में जब होता है तो वो हमारे हड्डियों को किस प्रकार से अफेक्ट कर सकता है?
1: शुरू में ये जॉइंट पेन और जॉइंट स्वेलिंग मतलब सिनोवियल जॉइंट पानी भर जाता है तो उसके बाद ये कार्टिलेज को खाता है,
0: खत्म करता है,
1: खत्म करता है। तो ये उसके वजह से पेशेंट को स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्चर मतलब डिफॉर्मिटीज हो जाता है। तो उसके बाद ये जॉइंट में ग्रोथ सेंटर होता है, ग्रोथ सेंटर को अफेक्ट कर जाता है तो जो हड्डी ग्रोथ ख़त्म हो जाता है, सो डिफॉर्मिटी हो जाता है, ग्रोथ स्टंटिंग हो जाता है, एक पैर लंबा एक पैर छोटा हो जाता है।
0: अच्छा, ऐसा भी रहता है?
1: ऐसा भी होता जाता है। और जॉइंट डिफॉर्मिटीज, तो बिल्कुल मूवमेंट खत्म होकर डिफॉर्मिटी हो जाता है,
0: यानी इमोबाइल जैसे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है और बच्चा बिल्कुल जैसे चलना फिरना बंद कर सकता है।
1: कुछ बच्चे व्हीलचेयर बाउंड हो जाता है।
0: तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाता है। और ये मतलब मान लीजिए अगर एक बच्चे को ये बीमारी होना शुरू हो चुका है तो कितने अंतराल में, द ड्यूरेशन, जैसे टाइम ड्यूरेशन में कितने समय में ये उसकी सीवियरिटी बढ़ सकती है?
1: शुरू में तो वीक्स और महीने में तो ये इतना डैमेज नहीं करता है। तो जब अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है ये सब डिफॉर्मिटी, कॉन्ट्रैक्चर्स, ग्रोथ डिस्टर्बेंस सब हम प्रिवेंट कर सकता है। तो जब ज़्यादा आर्थराइटिस, डिफॉर्मिटीज हो जाता है तो बच्चे व्हीलचेयर में बन जाता है, हो जाता है, तो इनका ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो अगर ये बच्चों को यूवीआईटिस जैसे आंख में भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उस बच्चों को जैसे या कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसे प्रेशर बढ़ जाता है आइस में, और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है।
0: तो डॉक्टर जी ये जो आर्थराइटिस है, जुवेनाइल आर्थराइटिस, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है?
1: जब पेशेंट ओपीडी में आ जाता है तो पहला हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये अगर ये ट्रांशियंट जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेटरी या जुवेनाइल आर्थराइटिस, उसका डिस्टिंक्शन करना चाहिए। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेस, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई स्कैन्स और ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में तो ब्लड काउंट्स हो जाता है, ईएसआर बोलता है, और एएनए एंड जो जेनेटिक टेस्ट है वो भी करते हैं, और एंटी सीसीपी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का उस टेस्ट भी करते हैं। तो उसके बाद जैसे पेशेंट का डैमेज सीवियरिटी के ऊपर फर्दर स्कैन्स भी करते
0: हैं। तो जैसे नॉर्मल सूजन या कुछ है तो एक पेरेंट को तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है, या एक प्रोलॉन्ग सूजन के बाद मे बी लाइक मान लीजिए एक हफ्ते दो हफ्ते से ज्यादा सूजन रहती है हड्डी में या रेडनेस है या कोई भी ऐसी समस्या है तो तुरंत मतलब डॉक्टर के को दिखाना?
1: तुरंत आना चाहिए, एक दो हफ्ते वेट नहीं करना।
0: और मान लीजिए अगर डॉक्टर कोई लेट डायग्नोस होता है, लाइक बहुत लेट डायग्नोस किया गया है ये, तो क्या ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है?
1: अगर लेट डायग्नोस तब तक कुछ डिफॉर्मिटीज हो जाता है तो अगर रिवर्सिबल डिफॉर्मिटी, इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटी, अगर कार्टिलेज को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ ये टेंडन और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर है, तो हम कुछ फिजियोथेरेपी सर्जरी से पूरा

0: वापस आ सकता है,
1: यानी वो रिवर्स हो सकता है।
0: लेकिन जब ये कार्टिलेज को अफेक्ट करता है या ग्रोथ डिस्टर्बेंस करता है तो फिर देन इरिवर्सिबल,
1: क्योंकि अगर मान लीजिए हड्डियों में ये बहुत डेप्थ तक चला गया है और बहुत ज्यादा और डिफॉर्मिटीज होना शुरू हो चुका है तो उसे रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: हम उसे उस कंडीशन से बेहतर कर सकते हैं लेकिन वापस नॉर्मल करना मुश्किल हो जाता है। तो अर्ली विजिट टू द हॉस्पिटल, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत बहुत बहुत जरूरत।
1: और डॉक्टर मान लीजिए अगर जुवेनाइल आर्थराइटिस में हम क्या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं?
0: पूरी तरह ठीक मतलब सिस्टम से उसका हटाना वो कभी हो नहीं सकता है, लेकिन हम ये डिफॉर्मिटी और ये लेट सेक्युले से प्रिवेंट कर सकता है।
1: अच्छा।
0: अगर बच्चा जल्दी आ गया तो डायग्नोस कर दिया तो दवाई दे सकते हैं, तो इस दवाई में तो पहले तो दर्द का एंटी इन्फ्लेमेटरी से शुरू होता है, फिर डीएमआरडीज बोलता है तो डिसीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, वो कॉर्टिजोन होता है और मेथोट्रेक्सेट, क्लोरोक्विन, ऑल दोस दवाई से। तो आजकल वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स होता है तो बायोलॉजिक एजेंट बोलता है, ये सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है। तो अगर जल्दी में ये शुरू कर देता है पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, अगर ये अर्ली स्टेज में शुरू करता है, हम जब आप बच्चों को देखें यू कांट टेल इसको ये प्रॉब्लम है।
1: तो डॉक्टर जी मान लीजिए अगर एक अर्ली स्टेज में ये डिटेक्ट हो जाता है तो क्या ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहती है?
0: हमेशा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये वेरिएबल हो जाता है, जैसे डायबिटीज है ठीक है, कुछ लोग डाइट से भी कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग को दवाई की जरूरत पड़ता है, कुछ लोग को इंसुलिन का जरूरत पड़ता है, तो वैसे ये भी है। कुछ लोग को वो जीन एक्सप्रेशन कितना होता है, कुछ लोगों को मान लीजिए ओनली 5-10% ऑफ सीवियरिटी है, उसको तो दवाई से कंट्रोल हो सकता है, ऑन एंड ऑफ बिना दवाई भी रह सकता है, कुछ लोग को ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो
1: उसका जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा
0: रहना पड़ता है। तो डिफरेंट ग्रुप, तो जब आप रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो आपका डॉक्टर ये दवाई के साथ कुछ समटाइम ये बायोलॉजिक एजेंट देगा, समटाइम आपको मेथोट्रेक्सेट देगा, समटाइम सिर्फ स्टीरॉयड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकता है।
1: और जैसे मान लीजिए अगर किसी की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है और क्या लाइफ लॉन्ग ये रह सकता है डिफॉर्मिटी, या फिर वो उसमें भी थोड़ा सुधार लाया जा सकता है?
0: जरूर अगर डिफॉर्मिटी है तो हम शुरू में डिफॉर्मिटी फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मतलब बेंट है तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसमें जॉइंट एस्पिरेशन दवाई और फिजियोथेरेपी और स्प्लिंटिंग के वजह से हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नॉन फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी है तो उसको ऑपरेशन करके हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, जैसे टेंडन लेंथनिंग, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज या साइनोवेक्टमी, उसके ऑपरेशन करके हम डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। लेट केसेस में जैसे जॉइंट में डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, देयर इज देन सम केसेस में

0: डिफॉर्मिटी करेक्ट कर सकते हैं। लेट केसेस में जैसे जॉइंट में डैमेज हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो गया, देयर इज देन सम केसेस में अगर उतना डिफॉर्मिटी हो जाता है, जॉइंट खत्म हो जाता है बिल्कुल विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक कर नहीं सकते, तब रिप्लेसमेंट करेगा तो ये बच्चा
1: बिल्कुल। और जैसे जो यंग एज में होते हैं उनमें करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ग्रोइंग पीरियड है और उसमें जैसे जैसे आप बता रहे हैं कि रिप्लेस करना थोड़ा दिक्कत थोड़ा कठिन हो जाता है।
0: हाँ, ग्रोइंग पीरियड में नहीं करता है तो ग्रोथ खत्म हो जाता है 13-15 साल में खत्म हो जाता है, उसके बाद कर सकता है। सीवियरिटी के ऊपर उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है लेकिन कर सकता है और उसका उसका लाइफ वापस हम दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर 15-20 साल के बाद अगर वो लूज हो जाता है दोबारा चेंज कर सकता है।
1: तो डॉक्टर जी क्या ये पूछना ठीक होगा कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में क्या ये जिंदगी को भी खतरा पहुंचा सकता है, मतलब कोई अपनी जान गंवा सकता है?
0: नो, अगर आज के ज़माने में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में इसका लाइफ का डायरेक्ट थ्रेट नहीं है।
1: ओके, मतलब अगर आप डायग्नोस हो जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो ये उतना मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
0: ये लाइफ डिसेबलिंग कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में सिस्टमिक लाइक सीवियर सिस्टमिक और आप डॉक्टर के पास ही नहीं गया, लीवर एंड स्प्लीन सब अफेक्ट हो गया, आप हॉस्पिटल ही लेके नहीं गया
1: तो कॉम्प्लिकेशंस
0: फिर हो सकता है, लेकिन मैं अभी तक ऐसे कुछ नहीं
1: कोई केसेस नहीं हुए। बिल्कुल, तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस जो बच्चों में पाया जाता है और जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं 16 साल की उम्र से कम बच्चों में ये अधिकतर पाया जाता है और मॉरिशस में भी ये समस्याएं बिल्कुल पाई जाती हैं। और बिल्कुल जुवेनाइल आर्थराइटिस का ये सप्ताह अवेयरनेस का वीक है, इसी पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिल रहा है, टेक्निक पर हमारा साथ दे रही है अपर्णा, दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर निजाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं MBC के तीसरे चैनल पर, रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं और रेडियो मॉरिशस पर आप इसे लाइव सुन पा रहे हैं। हमारा साथ देते रहिए, अभी थोड़ी ही देर में हम बढ़ेंगे आगे ट्रीटमेंट कैसे की जाती है जुवेनाइल आर्थराइटिस पर।

0: की चर्चा का कार्यक्रम जारी रखते हैं और आज हमारा टॉपिक है जुवेनाइल आर्थराइटिस, यानी बच्चों में होने वाले गठिया के रोग, आर्थराइटिस की समस्या और बिल्कुल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, अर्ली डायग्नोस हो जाना और फिर उसको अर्ली जल्दी से जल्दी उसको ट्रीट करना, ये बहुत ही आवश्यक है और क्या सर्जरीज तक की नौबत आ सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर करुणागरन से जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं आज। डॉक्टर जी, अर्ली ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसकी शुरुआत कैसे की जाती है?
1: जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो फर्स्ट थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा और आइस पैक्स और हम एनएसएआइड्स यू नो एंटी इन्फ्लेमेटरी से शुरू करते हैं, देन अगर जरूरत पड़े तो दवाई को इंक्रीज कर जाते हैं, जैसे डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स और बायोलॉजिक एजेंट्स, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। और डोज और ग्रुप ऑफ ड्रग्स वेरी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, कितना ये डैमेज हुआ उसके ऊपर ये दवाई हम मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। और इंटरवेंशन, जैसे अगर घुटने में पानी भर गया तो एस्पिरेशन नीडल डाल के हम पानी निकाल के बैंडेज कर सकते हैं या कुछ ब्रेस लगा सकते हैं टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी। और अगर डिफॉर्मिटी हो जाता है फिर टेंडन लेंथनिंग और कॉन्ट्रैक्चर रिलीज भी कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा देगा तो कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। तो हम जॉइंट मूवमेंट को मेंटेन करना है, तो रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज और नॉन इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जो जब ये जॉइंट का डैमेज होता है मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है, मसल अट्रोफी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, उसको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ये मूवमेंट से हो जाता है, मसल स्ट्रेंथनिंग से हो जाता है। कुछ लोग को स्प्लिंट देना पड़ेगा, ब्रेस देना पड़ेगा, वॉकिंग एड देना पड़ेगा।
0: और ये जो फिजियोथेरेपी है ये मतलब ये कंटिन्यूस उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना लंबा होता है और

0: कितने अंतराल में, हाउ लॉन्ग, जैसे उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने दिनों तक चलता है?
1: अगेन वो सीवियरिटी के ऊपर हो जाता है.
0: Okay.
1: तो बहुत कम डिफॉर्मिटी है या डिफॉर्मिटी ही नहीं है तो सिर्फ ये पेशेंट को सिखाना पड़ेगा कैसे चलना है, कैसे एक्सरसाइज करना है. कुछ लोगों को रोज फिजियोथेरेपी
0: डिफॉर्मिटी
1: खत्म होने तक तो करना पड़ता है. वो सीवियरिटी के ऊपर
0: डिपेंड करता.
1: ये मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है. तो जैसे मेन रोल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, अगर पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो रूमेटोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन, ये सब जॉइंट और ऑर्थोपेडिशियन, सब टीम वर्क
0: होता है उसमें. और डॉक्टर जी, सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है?
1: सर्जरी की आवश्यकता जब डिफॉर्मिटी सेट हो जाता है. जैसे कॉन्ट्रैक्चर है तो बच्चे फुल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, या इक्विनस डिफॉर्मिटी एंकल में हो जाता है, नी में फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, हिप में कॉन्ट्रैक्चर्स, या हाथ में भी. इट्स नॉट जस्ट पैर में, सिर्फ पैर में नहीं है,
0: पूरे शरीर में, हाथ में, कंधों में,
1: एल्बो, रिस्ट, सब में हो जाता है. तो उसका प्रिवेंट करना, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो सर्जरी का.
0: तो क्या डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में मल्टीपल सर्जरीज भी करना पड़े?
1: जरूरत पड़ सकता है. जैसे अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था तो 5 साल में ही उसका शुरू हो गया था. और जब हमारे पास आया वो पेशेंट 13 ईयर्स उम्र था और 5 साल से ही वो व्हीलचेयर में था. तो उनका बहुत हिप जॉइंट, बहुत नी जॉइंट, बहुत एंकल, सब इन्वॉल्व था. तो अभी उसको हम पहले डिफॉर्मिटी करेक्शन, कॉन्ट्रैक्चर रिलीज, जैसे इक्विनस रिलीज का सर्जरी किया. उसके बाद उसका ग्रोथ कंप्लीट हो गया था 13-14 में, तो उसका नी रिप्लेसमेंट किया, फिर हिप रिप्लेसमेंट किया, देन उसको मोबिलिटी, जैसे नॉर्मल मोबिलिटी तो नहीं हुआ, कम से कम तो ये व्हील चेयर से वॉकर पकड़ के या क्रच पकड़ के चल रहा था. अभी 2 साल के पहले वो दोनों शोल्डर के साथ, अभी उसका उम्र हो गया था 24, तो हम दो शोल्डर को भी रिप्लेस किया. तो 100% मोबिलिटी नहीं है, 100% मूवमेंट नहीं है,
0: लाइक व्हील चेयर से खड़ा हुआ.
1: तो ही इज नॉट बेड रिडन, ही इज नॉट होम बाउंड, ही इज आउट,
0: एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट, बिल्कुल जैसे इंडिपेंडेंटली वो अपना मूवमेंट कर सकता है. और बिल्कुल ये जो बिल्कुल एक तरह से देखा जाएगी कि जुवेनाइल आर्थराइटिस में, जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि 5 साल की उम्र से उस व्यक्ति को, उस बच्चे को ये समस्या थी, और 13 वर्ष तक, यानी लगभग कह सकते हैं कि नियरली 10 साल तक वो व्हील चेयर पर था, और फिर धीरे धीरे करके जैसे ही उनका कैसे ग्रोथ रुका, उसके बाद ही ये मूवमेंट, ये जो रिप्लेसमेंट का जो कार्य है, जो ट्रीटमेंट है, वो आगे बढ़ाया जा सकता है. और बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए, पूरा 100% नहीं, पर फिर भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसे इंडिपेंडेंट बनाना ये बहुत ही ज़रूरी था. तो यहाँ पर जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ती जाती है, डॉक्टर जी क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब ये जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हो, आगे चलकर उसे कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कोई आगे जाके समस्या नहीं होती ये रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद?
1: नहीं, रिप्लेसमेंट ऑपरेशन ग्रोथ खत्म होने के बाद ही करते हैं.
0: अच्छा.
1: लेकिन जैसे जब ये कम उम्र में रिप्लेसमेंट करता है
0: जी,
1: तो उसके बाद ये लूसनिंग चांसेस भी है. रिप्लेसमेंट 10 साल 15 साल के बाद लूज हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम नया रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. इसमें प्रॉब्लम है कि कॉन्ट्रैक्चर्स साथ, डिफॉर्मिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्चर भी हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, मतलब हड्डी बहुत बटर जैसे होता है.
0: तो
1: इसमें हाँ, इसमें रिप्लेसमेंट करना बहुत चैलेंजेस है. तो हम किसी भी कारण से ये उस स्टेज जाने से प्रिवेंट करना चाहिए, अगर हो गया तो
0: बहुत अच्छा है. जैसे इसीलिए अर्ली डिटेक्ट करना, अर्ली उसको ट्रीटमेंट पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर जी, यहाँ पर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का क्या रोल होता है, और जो स्पेशलिस्ट है उनकी क्या भूमिका होती है यहाँ पर?
1: तो ऑर्थोपेडिक रोल, हमारा रोल अर्ली डायग्नोसिस से हो जाता है. तो बहुत सारे बच्चे

0: हमारे पास पहले आता है, तो हम उसको सस्पिशन, क्लिनिकल सस्पिशन से ये टेस्ट करके, ये डायग्नोस करने के बाद हम उसको प्रॉपर रेफरेंस करना चाहिए। अगर पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट है तो पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट, तो अगर ज़रूरत पड़े ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सो इसको प्रॉपर रेफरेंस करके इसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। तो अगर हमको ये अवेयरनेस नहीं है तो वी कैन मिस द डायग्नोसिस। तो सही टाइम पे डायग्नोस करना एक है। तो फिर अर्ली एस्पिरेशन, स्प्लिंटिंग जैसे डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करना। तो तीसरा, अगर ये डिफॉर्मिटी आ गई हो तो उसको करेक्ट करके वापस बच्चे को जितना नॉर्मल कर सकते हैं उतना करना, ये सब ऑर्थोपेडिक्स।
1: और डॉक्टर जी, इसमें लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं?
0: लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस जैसे डिफॉर्मिटी हो जाता है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हो जाता है, अगर जॉइंट में अफेक्ट होता है जैसे मैंने बताया ग्रोथ सेंटर में सप्रेशन हो जाता है, तो वो पैर वो लिम शॉर्ट हो जाता है। तो इसको भी हम जब बच्चे ग्रोथ खत्म हो जाता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कर सकता है।
1: ओके, तो डॉक्टर जी ये जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है,

0: इसको हम किसी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या कोई ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, या फिर जो माँ है वो प्रेगनेंसी के टाइम कोई ऐसा प्रिकॉशन ले, या फिर बच्चे हो जाने के बाद क्या बच्चों के लिए हमें कोई ऐसा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है ताकि वो बच्चे को कोई जुवेनाइल आर्थराइटिस जैसी समस्या ना हो?
1: नहीं, इसको तो हम ये प्रीनेटल चेकअप से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, उस टाइम तो ये आपको
0: पता नहीं चलेगा,
1: पता नहीं चलता है, और ये प्रिवेंट कर नहीं सकते क्योंकि जैसे ये इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक मतलब आई डोंट नो, वी डोंट नो, ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून से हो जाता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन से हो जाता है, और ये एनवायरमेंटल ट्रिगरिंग है जैसे इन्फेक्शन, इसे हम जो हमारे हाथ में है, अगर बच्चों को कुछ ये जॉइंट पेन, स्वेलिंग या लंगड़ापन हो जाता है, जल्दी स्पेशलिस्ट के पास ले जाके अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट और कमिटमेंट फॉर रेगुलर फॉलोअप है। जैसे ऐसे नहीं है कि बहुत लोग आते हैं, एक बार डायग्नोस करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये स्टीरॉयड ले लो या ये दवाई ले लो, तो कुछ पेरेंट्स अपने आप ये ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते कर देते हैं और कुछ और ट्रीटमेंट के पास चला जाता है, तो
0: यानी वो कंटिन्यूटी होना, फॉलो
1: रेगुलर फॉलोअप बहुत बहुत जरूरी है इसमें, पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजी से या पेडियाट्रिशियन से या रूमेटोलॉजी से रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी।
0: और अपने आप दवाई नहीं रोकनी है जब तक डॉक्टर आपको बताए, क्योंकि ये एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए और दवाइयों की जो डोजेज है वो प्रॉपर मात्रा में सही समय पर बच्चे को मिलते रहनी चाहिए, तब जाकर इसका ट्रीटमेंट फॉलो किया जा सकता है। और डॉक्टर जी, यहाँ पर क्या हम डाइट के द्वारा भी कोई ऐसी प्रिवेंशन, यानी डाइट को हम अपने जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं जो जुवेनाइल आर्थराइटिस के लिए बेहतर हो सकता है?
1: नहीं, वैसे डाइट से ये प्रिवेंट नहीं कर सकते, या जनरली जो कुछ डाइट्स जैसे यूरिक एसिड हाई कंटेंट डाइट्स है, ये वैसे यूरिक एसिड जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ये यूरिक एसिड हो जाता है वो भी जॉइंट को अफेक्ट करता है।
0: बिल्कुल,
1: तो डायरेक्टली डाइट से आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये यूरिक एसिड डाइट थोड़ा फॉलो करेंगे तो जॉइंट डैमेज थोड़ा कम हो सकता है।
0: और जो मान लीजिए जो जिनको आर्थराइटिस रह चुका है, जुवेनाइल आर्थराइटिस, और अब वो नॉर्मल हो रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उनके हेल्थ को या उनके बोन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो?
1: नहीं, वैसे तो रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: नॉर्मल रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तो मसल जॉइंट का एट्रोफी से प्रिवेंट करना, मसल को कॉन्ट्रैक्चर से प्रिवेंट करना और जॉइंट मूवमेंट को रखना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, एक दो बार आप या जितने भी आप फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास गए, ये जो उसके पेशेंट के ऊपर या फैमिली के ऊपर है, ये एक्सरसाइज रोज करना है।
0: अच्छा।
1: तो दैट प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: ओके।
1: और हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड डाइट, प्रिवेंट ओबेसिटी, ओबेसिटी हो जाता है वो भी जॉइंट को अफेक्ट करता है, तो प्रिवेंट ओबेसिटी, कीप एक्टिव।
0: क्या सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी अफेक्ट कर सकता है लॉन्ग रन में जिनको जुवेनाइल आर्थराइटिस रह चुका है बचपन में?
1: वो तो बैड कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आपको आर्थराइटिस आ जाता है, जॉइंट डैमेज होता है, आपको पहले ही जुवेनाइल आर्थराइटिस है, जॉइंट डैमेज हो जाता है, तो आप प्रिवेंट करना,
0: मूवमेंट होना, व्यायाम करना, एक्सरसाइजिंग करना, फिजियोथेरेपी करना। और जिनको मतलब मान लीजिए अब ट्रीटमेंट हो चुकी है, सारा कुछ है, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो क्या उनको ऐसा हो सकता है कि फिर से उनको आर्थराइटिस जैसी समस्या फ्यूचर में होने की संभावना हो सकती है, या बड़ी उम्र में जाकर उनको फिर से ये, मतलब ये कभी भी उनको ट्रिगर कर सकता है, कभी भी ये बढ़ सकता है दोबारा से?
1: हाँ जरूर, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल पर्सन को भी 40 उम्र के ज़्यादा आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे वेयर एंड टियर हो जाता है। तो ये पेशेंट विथ जुवेनाइल आर्थराइटिस, उसको पहले से ही थोड़ा आर्थराइटिस है, तो ट्रीटमेंट से, रेगुलर लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल से उसका ये सिवियरिटी कम कर सकता है। लेकिन अगर उनका ये उम्र बढ़ता है, उनको भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस के ऊपर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, तो उसको भी
0: डबल हो सकता है और डबल पेन के वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डॉक्टर जी अभी जैसे

0: विंटर सीजन आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और खासकर हम जब ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं, यहाँ पर आए दिन आपने देखा होगा कैसे टेम्परेचर में ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आते हैं. तो क्या इसको लेकर भी हमारे हेल्थ को कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
1: जो विंटर में तो सब ये आर्थराइटिस, जॉइंट एंड मसल पेन, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हो जाता है. जो पेशेंट को थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा और स्टिफनेस हो जाता है. तो जैसे एवरी विंटर प्रिकॉशंस, जैसे अपने आप को गर्म रखना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए.
0: तो डॉक्टर जी, क्या मसाज हेल्पफुल रहता है ऐसे मामले में?
1: जरूर मसाज आपको हेल्प करता है, लेकिन फोर्सफुल मसाज नहीं करना चाहिए. कुछ लोग क्रैक करते हैं, कुछ लोग तो वो
0: बहुत जैसे जो टफ मसाज होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए.
1: वो आप कॉन्ट्रैक्चर है, उसमें आप बहुत जोर लगा के करेंगे तो हड्डी को
0: खराब कर देगा,
1: हड्डी को आप ब्रेक कर सकते हैं. ये पेशेंट को के ऊपर पहले से ऑस्टियोपोरोसिस है, आप इसको ज्यादा फोर्स लगा के मैनिपुलेट किया, आप हड्डी को ब्रेक कर सकते हैं.
0: ओके,
1: तो नॉन फोर्सफुल मसाज ठीक है, अच्छा है.
0: और इसमें फैमिली का क्या रोल होता है डॉक्टर जी?
1: फैमिली का रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे बच्चों तो खुद हॉस्पिटल नहीं ले आ सकते ना, तो अर्ली ट्रीटमेंट, बच्चों तो दवाई तो नहीं लेते हैं, बच्चों को टाइमली दवाई देना पड़ेगा, एक्सरसाइज सब में ये
0: एक तरह से
1: ये बच्चों को हो जाता है, पेरेंट्स और फैमिली को फुल कमिटमेंट इसमें होना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हेल्थ को लेकर कोई इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए.
1: अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो इसका आउटकम अच्छा नहीं होता,
0: डिफिकल्ट हो जाता है. तो डॉक्टर जी, ऑलमोस्ट हम आज के इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, हमारे ऑडियंसिस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: तो मैसेज तो, अगर आपका बच्चों दर्द बोलता है, लंगड़ापन बोलता है, तो बच्चों नॉर्मली खेलना पसंद करते हैं, बच्चों कंप्लेन नहीं करते हैं. अगर बच्चों कंप्लेन करता है तो इट्स बेटर यू ब्रिंग टू द स्पेशलिस्ट, वो चेक करके अगर
0: कुछ भी
1: कोई
0: नहीं है
1: तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन डोंट नेग्लेक्ट.
0: हाँ जी, कई बार हम बच्चों को ये कहकर टाल देते हैं कि बच्चा है, हो सकता है झूठ बोल रहा है, या ध्यान नहीं देते, पर अगर वो कंटिन्यूसली आपको ये शिकायत कर रहा है तो इसे आप निग्लेक्ट ना करें. जैसे डॉक्टर करुणागरन ने बताया, वे एक ऑर्थोपेडिक और स्पाइन के सीनियर कंसल्टेंट है और सी केयर हॉस्पिटल में वे अपना सेवा देते हैं. और यहाँ पर बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें सहयोग मिला अपर्णा हमारे टेक्निक पर, साथ ही साथ चार बजे की फ्लैश न्यूज में हम सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सभी को नमस्ते और प्रणाम. सबसे आगे स्थानीय खबरें. राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना 10,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए किए जाएंगे. आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेक फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं. लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है. मृत्यु के बाद व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का क्या होता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर डॉक्टर शिबा ओमुगम ने शोध किया है. उन्होंने हाल ही में डिजिटल आफ्टर लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की है. इस पुस्तक में लेखिका ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके डिजिटल खातों और व्यक्तिगत डेटा के बेहतर प्रबंधन तथा सुरक्षा के लिए एक डिजिटल चार्टर लागू करने का प्रस्ताव रखा है. अफ्रीका अब अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भरता कम करते हुए निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है. इसी उद्देश्य के साथ मंगलवार को मॉरिशस में अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ. इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए सरकारी नीति निर्माताओं, उद्यमियों और निवेशकों ने भाग लिया. इसका मुख्य उद्देश्य मॉरिशस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना तथा व्यापार और निवेश के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है. यूरोप पिछले कई सप्ताह से भीषण गर्मी की चपेट में है. गर्मियों की शुरुआत में आई इस लंबी और तीव्र लू ने पूरे महाद्वीप में लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है. लगातार ऊंचे तापमान के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है. सप्ताहांत के दौरान

0: इसमें गरज चमक के साथ हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि इस भीषण गर्मी से हुई जनहानि का वास्तविक आंकड़ा अब सामने आने लगा है। फ्रांस की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 24 जून से अब तक अनुमानित संख्या की तुलना में लगभग 1000 अधिक मौतें दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। मृतकों में लगभग 85% लोग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे। विशेषज्ञों के अनुसार बुजुर्ग अत्यधिक गर्मी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों में शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: शाम के 4:03 हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जो हर बुधवार के दिन हम चलाते हैं, वो है दिल से मिले दिल।
3: से मिले दिल,
2: दिल से मिले दिल, जहां सुर और संगीत दिलों को जोड़ते हैं। मैं हूं अनुराधा। अगले 55 मिनट तक हम सुनेंगे आपके कुछ पसंदीदा गाने, तो बने रहिए हमारे साथ अभी से लेकर शाम 5 बजे तक। आप सभी को शुभ यात्रा हम कहेंगे। और जहां से भी हमें सुन रहे, बस वहां का मौसम बहुत ही अच्छा हो, आप उसका पूरा पूरा मजा ले लीजिएगा। और बेशक हमारे साथ देने के लिए आप 402-8070 पर फोन कर सकते हैं, या फिर कोई मैसेज भेजना है तो 5250600 यानी कि 5 2506200 पर।

जी हाँ दोस्तों, ये था एक खूबसूरत गीत महालक्ष्मी आयर की आवाज में। किसे ये गाना पसंद नहीं, तो उम्मीद है आपने इसका पूरा पूरा आनंद ले लिया होगा। तो अब चलिए सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाला नगमा, सिर्फ दिल से मिले दिल पर। और आप सुनेंगे लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज में फिल्म प्यासा सावन का ये सदाबहार नगमा।

बढ़ते हैं अगले सुरेली गीत की तरफ। वैसे अभी 94.6 98.2 मेगा हर्ट्ज़ पर आपके लिए कुछ सदाबहार गाने और कुछ नए गाने लेकर आए हैं इसका सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए। तो आप इस समय चाय की चुस्की लीजिए, मुस्कुराइए और संगीत के रंग में रंग जाइए।

जहाँ दोस्तों संगीत का ये सिलसिला जारी है और पेश है एक और प्यारा सा गीत जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। धुन तो आपने जरूर पहचानी होगी,

प्रोग्राम प्यासा सावन में कुछ क्षण पहले आपने लता जी को सुना, किशोर कुमार साहब को आपने सुना फिल्म प्यार का मौसम में, और अभी अभी मोहम्मद रफी फिल्म कन्यादान में। तो अब चलिए मुकेश का गाया हुआ एक प्यारा सा नगमा उन सभी मुकेश जी के फैंस के नाम करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिल्म का नाम है फरेब।

0: और आपको जाने की जरूरत नहीं, बस रेडियो मनोरंजन के साथ रहिएगा।
1: 94, 95.6, 98.2 megahertz, you're listening RM3 Radio।

0: से मिले दिल।
1: और हाँ दोस्तों, दिल से मिले दिल में आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं 94.6 98.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन पुराने गीतों को सुनने के बाद अब कुछ नए गीतों की ओर बढ़ते हैं। और अब प्यारी सी लेहक के लिए, जो इस समय सफ़र कर रही है अपनी मामा के साथ, अपने मोटर में के जो पीछे सीट पर बैठी हुई है, वो इन गीतों का आनंद ले रही हैं। और ख़ास करके वो मज़ा ले रही है अपने उस गाने की जो उसने मांगा है फिल्म डंकी से। और अरिजीत की आवाज़ उनको बहुत ही प्यारी लगती है। साथ में लेहक जी, ये आपकी पसंदीदा मनपसंद गीतों में से एक है। आप समस्त परिवार वालों की ओर से ये गीत लेहक के नाम करते हैं। तो फिर एंजॉय करो आपका मनपसंद गाना लेहक।

जी हाँ, आपके प्यार और हौसला के लिए दिल से शुक्रिया। फिरदौस, निदला, फिजा, फिनिक्स से ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो मनोरंजन पर साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गूंजेंगे दिल को छू जाने वाली रोमांटिक गाने, जब प्यार में पूरा विश्वास रखते हैं और जहाँ हर एहसास होगा खास, हर धड़कन कहेगी एक कहानी और हर लम्हा बनेगा यादगार। इस शेर के लिए धर्म जी जो सोल्फेगिनो वाक वाकी हैं, आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं।

राजन रघुनाथ रघुपत जी जो लंदन में हैं एंजॉयिंग कर रहे हैं कि हमारी ये सिलेक्शंस आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगी।

थैंक यू रेखा जी, आप बॉन बॉन ड्यू के रहने वाली हैं। ये अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं आपके बेटे अंश के लिए और आपके लिए, और आपने मेरे लिए भी ये गाना सुनवाना चाहा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन।

शाम के 4:55 हुए हैं और ठीक 5 बजे आप का साथ देंगे श्री विश्वानंद जी। तो साधना जो हृदया दिखल रहती है उसके लिए ये अंतिम गीत हम चलाने जा रहे हैं और ये उसने कहा है कि वो नेविता जो छोड़ कर चली दुनिया से चलेंगी लेकिन बहुत याद आती है भैया राज दीपक बहन पद्मिनी और साधना सभी जीवन और बदारू परिवार जो रियादित कर रहते हैं। तो हमारे पास अब ये जो चुना हुआ गाना नहीं है साधना फिर कभी चलाऊंगी लेकिन फिलहाल जगजीत सिंह का गाया हुआ ये अंतिम भेंट आपके नाम करते हैं। तो इसी के साथ दिल से मिले दिल प्रोग्राम यहाँ समाप्त होता है। बस ख्याल रखिएगा अपना और मुस्कुराते रहिएगा। फिर मुलाकात होगी। अनुराधा की ओर से नमस्कार और श्र

0: continuous music. RM3.
1: अनकही एक कहानी।

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब मनुष्य विषयों सांसारिक आकर्षणों का बार बार चिंतन करता है तब उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं, क्रोधात उद्भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि

0: ही के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। सामान्य व्यक्ति संसार के माया जाल में फंसकर अपना अमूल्य समय क्षणिक सुख या भोग विलास की चीजों में गंवा देता है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अनकही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अपनी स्वरचित कहानी लेकर प्रोफेसर राजशेखर भी हमसे जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से अभिवादन करते हैं। तो विलंब न करते हुए चलिए सुनते हैं एक अनकही कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हृदय से आभार गुरु बिस्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की संत परंपरा केवल आध्यात्मिक साधना की परंपरा नहीं है, बल्कि वह समाज को सत्य, भक्ति, करुणा और मानवता का मार्ग दिखाने वाली अमूल्य धरोहर भी है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को साधना में बदलकर युगों तक मानव समाज का मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे गोस्वामी तुलसीदास। कहा जाता है कि युवावस्था में वे अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, किंतु पत्नी के एक वाक्य ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी क्षण उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर भगवान श्री राम की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यही साधना आगे चलकर रामचरितमानस जैसी अमर कृति के रूप में प्रकट हुई, जिसने भारतीय संस्कृति, भाषा और समाज को नई दिशा दी। हाँ श्रोतागण, केवल भारतीय संस्कृति को ही नहीं बल्कि मॉरिशस की भी संस्कृति को। आज की हमारी अनकही कहानी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की है, एक ऐसी प्रेरक कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन का एक जागरण क्षण मनुष्य को साधारण से असाधारण बना सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज अनकही एक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे आत्म परिवर्तन, भक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को अमर बना देते हैं। तो कहानी तुलसीदास के जीवन की इस प्रकार शुरू होती है। समय लगभग वही है, संबत 1589 के आसपास। राजापुर गांव की एक कुटिया में प्रतिष्ठित ब्राह्मण आत्माराम दुबे और माता हुलसी के घर एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म लेते ही 5 वर्ष के बालक के समान था। मुख में 32 दांत थे और रोने के स्थान पर मुख से निकला राम। किंतु ज्योतिषियों ने इसे अभुक्त मूल नक्षत्र का भारी अनिष्ट माना। माता हुलसी ने अपने इस अनोखे लाल को संकट से बचाने के लिए दासी मुनिया को सौंप दिया और स्वयं इस संसार से विदा हो गई। मुनिया बालक को गोद में लिए हुए खड़ी है, तभी आत्माराम दुबे भारी मन से आते हैं और चिंतित स्वर में आत्माराम दुबे कहते हैं,
0: मुनिया, इस बालक का जन्म नक्षत्र पूरे कुल के लिए विनाशकारी है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लोक कल्याण और कुल की रक्षा के लिए इसे यहां से दूर ले जाओ,
2: रोते हुए मुनिया कहती है। स्वामी, यह बालक तो साक्षात देवीय चमत्कार है। इसके मुख की कांति तो देखिए, भले ही संसार इसे त्यागे पर मैं इस राम बोला को अपनी संतान की तरह पालूंगी। और धीरे धीरे समय बदलता जाता है, दुर्भाग्यवश मुनिया की भी मृत्यु हो जाती है और अब राम बोला 7 वर्ष का हो चुका है। उसके फटे हुए कपड़े हैं और हाथ में भिक्षा पात्र लिए वह घर घर सरक सरक भटक रहा है। और गांव वालों को देखिए, इस बालक को देखने के साथ ही दुत्कारते हैं। गांव का एक व्यक्ति तो क्रोध में आकर यह भी कह पड़ता है,
3: हे लड़के, दूर हट यहां से,

0: तू वही मनहूस बालक है ना जो अपनी मां को खा गया। तेरे कारण गांव पर कोई विपत्ति आ जाएगी। भाग यहां से, चल भाग।
1: इस तरह का दुत्कार सुनकर भूख से व्याकुल कांपती आवाज में राम बोला, केवल इतना कह पाता है, भैया मैं केवल एक निवाला मांग रहा हूं। मां मुनिया भी चली गई, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कोई मुझे अभागा कहता है तो कोई भूत कहता है। क्या इस राम बोला के लिए किसी के दिल में दया नहीं है? और यह कहकर वह राम बोला रोने लगता है। तभी परम प्रतापी बाबा नरहरिदास का आगमन होता है और उनकी नजर उस बालक पर पड़ती है। राम बोला को देखते ही करुणा भरे स्वर में बाबा नरहरिदास कहते हैं,
0: ठहर जाओ बालक, तुम अनाथ नहीं हो। जिसके मुख से साक्षात प्रभु राम का नाम निकला हो वह अभागा कैसे हो सकता है?
1: राम बोला बाबा के चरणों में गिर पड़ता है और भाव विभोर होकर कहता है, बाबा सब मुझसे डरते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा रक्षक कौन है? बाबा बताइए मेरा रक्षक कौन है? यह सुनकर राम बोला को बाबा नरहरिदास अपने गले से लगाते हुए कहते हैं,
0: उठो राम बोला, अब से तुम्हारे कष्टों का अंत हुआ। जगदम्बा पार्वती ने साक्षात मुनिया के रूप में और स्वयं श्री राम ने तुम्हें तुम्हारा पालन किया है। तुम तो जगत का कल्याण करने आए हो, चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारा नाम तुलसी राम है। मैं तुम्हें वेदों और राम कथा के रस से सरोबार करूंगा।
1: और इस प्रकार संघर्षों की भट्टी में तप कर राम बोला बाबा नरहरिदास की छत्र छाया में तुलसीदास बनने की महान यात्रा पर निकल पड़े। संबत 1600 के बाद बाबा नरहरिदास की प्रेरणा से तुलसी राम काशी पहुंचे। वहां परम विद्वान गुरु शेष सनातन जी के सानिध्य में उन्होंने 15 वर्षों तक वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण कर वे राजापुर लौटे, जहां उनका विवाह अत्यंत रूपवती और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। किंतु तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इस कदर डूब गए कि उन्हें संसार की सुध ना रही। और एक रात बिजली करक रही थी, तुलसीदास भीगे कपड़ों में हांफते हुए रत्नावली के कक्ष में खिड़की के रास्ते प्रवेश करते हैं। रत्नावली उन्हें देखकर चौंक पड़ती है और आश्चर्य तथा भय से कहती है, स्वामी आप इस भयानक आंधी तूफान में उफनती यमुना नदी को पार कर आप यहां इस समय कैसे आए? किसी ने आपको देखा तो नहीं? प्रेम में व्याकुल होकर तुलसीदास कहते हैं,
0: रत्ना तुम्हारे बिना मेरा एक पल भी मन नहीं लग रहा था। नदी की लहरें और यह तूफान मेरे प्रेम को रोक नहीं पाए। देखो तुम्हारी खिड़की पर लटकी इस मजबूत रस्सी के सहारे मैं ऊपर चढ़ाया।
1: खिड़की के बाहर देखकर रत्नावली सिहर उठती है, हे नाथ यह कोई रस्सी नहीं, साक्षात जहरीला सर्प है। और जिस नाव से आप नदी पार करने की बात कर रहे हैं वह कोई नाव नहीं, एक बहता हुआ शव था। स्वामी कैसा अंधा मोह है यह, और ये कैसा प्रेम है? तुलसीदास रत्नावली का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए समझाते हुए कहते हैं,
0: यह मोह नहीं, तुम्हारे प्रति मेरा अगाध प्रेम है रत्ना।
1: रत्नावली पीछे हटते हुए ऊंचे और गंभीर स्वर में धिक्कारती है और बोल पड़ती है, धिक्कार है स्वामी, धिक्कार है आपको इस हार मांस के नश्वर शरीर से इतना लगाव। सुनिए, अस्थि चरममय देह यह

0: सा तासों जैसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीति। यदि इतना अनुराग आप भगवान श्री राम से करते तो इस संसार के सारे भयों और जन्म मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाते स्वामी, मुक्त हो जाते। तुलसीदास रत्नावली के दुत्कार को सुनकर अस्तब्ध रह जाते हैं, मानो किसी ने सोए हुए शेर को जगा दिया हो, और वे कह पड़ते हैं,
1: अस्थि चरम मय देह यह। रत्ना, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी, तुमने मुझे वासना के कीचड़ से निकालकर प्रभु भक्ति का मार्ग दिखा दिया। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु हो रत्ना, मेरी गुरु हो।
0: तुलसीदास के यह कहते ही रत्नावली रोने लगती है। स्वामी, मेरा उद्देश्य आपको आहत करना नहीं था। लेकिन तुलसीदास दृढ़ता के साथ अपने मन में कुछ ठान लेते हैं और कहते हैं,
1: नहीं रत्ना, अब यह तुलसीदास रुकने वाला नहीं। यह देह अब केवल रघुनाथ की होगी, राम, मेरे राम।
0: तुलसीदास पीछे मुड़कर तेज कदमों से तूफान के बीच अंधेरे में चले जाते हैं। रत्नावली रोते हुए हाथ जोड़कर बैठ जाती है।

एक उलाहने ने गृहस्थ तुलसीराम को महावैरागी बना दिया। वे सदा के लिए घर छोड़कर भगवान राम की खोज में निकल पड़े। पहले काशी के जंगल में भटके, बाद में चित्रकूट के मंदाकिनी घाट पर पहुंच गए। संबत 1620 के बाद एक घने वृक्ष के नीचे, जहां दूसरी ओर नदी का सुंदर घाट स्थित था, रत्नावली के वचनों की अग्नि में तपकर तुलसीदास अब पूर्णतः विरक्त हो चुके थे। वे प्रभु श्री राम के दर्शन की व्याकुलता में दर दर भटकने लगे। साधना के इसी कठिन मार्ग पर चलते हुए उनके जीवन में कई ऐसी अलौकिक और दिव्य घटनाएं घटी, जिन्होंने किंवदंतियों का रूप ले लिया। तुलसीदास जी हाथ में कमंडल लिए एक पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर रहे थे। अचानक नेपथ्य से एक डरावनी और अजीब आकृति प्रकट होती है और वह अट्टहास करते हुए कहता है, ओ राम भक्त, ठहर जा। तेरे इस पवित्र जल से सदियों बाद मेरी प्यास बुझी है। मैं एक प्रेत हूं, मांग, क्या वरदान मांगता है?

0: मैं तेरी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकता हूं। प्रीत की इस तरह की आवाज सुनकर तुलसीदास शांत हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही निर्भय स्वर में कहते हैं,
1: हे आत्मा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे इस संसार का कोई वैभव नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन का मार्ग बता दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो?
0: राम दर्शन? वह सामर्थ्य मुझ में नहीं है तुलसीदास, परंतु हाँ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं जो तुम्हें प्रभु से मिला दें। तुम हर दिन जहां राम कथा सुनने जाते हो, वहां सबसे अंत में एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी व्यक्ति आता है, और जो सबसे पहले जाता है वे कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान हैं। उनके चरण पकड़ लो। चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास भाव विभोर होकर चंदन घिस रहे हैं। तभी दो सुंदर बालक धनुष बांध लिए वहां आते हैं। हनुमान जी नेपथ्य से तोते के रूप में दोहा गाते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। और मुस्कुराते हुए एक बालक जो कि राम है कहते हैं, हे महात्मा, हमें बहुत देर हो रही है, क्या आप हमारे माथे पर चंदन का तिलक लगाएंगे? उन बालकों के अलौकिक तेज को देखकर तुलसीदास स्तब्ध हैं और उनके हाथ कांपने लगते हैं। आवाज में भी थरथराहट है। वे कहते हैं,
1: प्रभु, ये छवि, ये सम्मोहन, ओ मेरे राघव, मेरे स्वामी, आप आ गए। अपने इस तुच्छ चेले को अपने दर्शन आपने दे ही दिए।
0: श्री राम मुस्कुराकर तुलसीदास के माथे पर चंदन लगाते हैं और दोनों भाई अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तुलसीदास जी प्रेम विह्वल होकर जमीन पर लौटने लगते हैं। इस दिव्य दर्शन ने तुलसीदास को भक्ति के उस शिखर पर पहुंचा दिया। चित्रकूट में प्रभु के दर्शन पाकर तुलसीदास जी अयोध्या पहुंचे। वहां संबत 1631 के रामनवमी के दिन उन्होंने कलयुग के तारनहार ग्रंथ रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। पर जब इसे लेकर काशी आए तो वहां की रूढ़िवादी पंडित भड़क उठे। देव भाषा संस्कृत को छोड़कर लोक भाषा अवधि में भगवान की कथा लिखना उन्हें धर्म का अपमान लगा। काशी के दो पंडित, पंडित शिवचरण और पंडित देवदत्त, तुलसीदास की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। क्रोध में हाथ में शास्त्र लिए हुए पंडित शिवचरण कहते हैं, सुनो तुलसीदास, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? हमारे पवित्र वेदों और उपनिषदों की भाषा संस्कृत है, तुमने राम कथा को इस गवारू अवधि भाषा में लिखकर शास्त्रों की मर्यादा भंग की है। पंडित शिवचरण के द्वारा लगाए गए इस आरोप से तुलसीदास स्तब्ध हो जाते हैं, लेकिन विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं,
1: महाराज, यदि मेरी टूटी फूटी भाषा में कोई भूखा इंसान भी प्रभु राम के नाम का रस चख सके तो इसमें मर्यादा कैसे भंग हुई? प्रभु भाव के भूखे हैं, भाषा के नहीं। वर्षा का पानी चाहे सोने के घड़े में गिरे या मिट्टी के कुल्हर में, प्यास तो दोनों ही बुझाते हैं ना।
0: वहीं पर पंडित देवदत्त भी खड़े हैं। वे भी अहंकार से कहते हैं, हमें यह कुतर्क मत सिखाओ, यह ग्रंथ देववाणी का अपमान है। तुलसीदास, हम काशी के विद्वान इस प्राकृत ग्रंथ को कभी मान्यता नहीं देंगे, इसका हम बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार। और एक रात काशी विश्व

0: विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह, जहां सभी शास्त्रों के नीचे रामचितमानस को रक्त दिया गया है ताकि यह परीक्षा ली जा सके कि कौन सी रचना सर्वश्रेष्ठ है। जब दूसरे दिन सुबह का समय होता है, मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यह देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। आश्चर्य और हैरानी में थरथराते हुए स्वर में पंडित शिवचरण कहता है,
1: अनर्थ अनर्थ, यह कोई चमत्कार है। देवदत्त देखो, कल रात हमने तुलसी के इस अवधि ग्रंथ को सबसे नीचे दबाकर रखा था, पर आज यह सारे संस्कृत शास्त्रों के ऊपर विराजमान है।
0: पंडित देवदत्त भी कांपती आवाज में ग्रंथ के पन्नों को देखते हुए कह पड़ता है,
1: केवल ऊपर ही नहीं शिवचरण, देखो इस ग्रंथ के मुख पृष्ठ पर स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल से लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे साक्षात महादेव के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं।
0: तभी तुलसीदास जी का प्रवेश होता है। दोनों पंडित लज्जित होकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। पंडित शिवचरण पश्चाताप में रोते हुए कहता है,
1: हे राम भक्त शिरोमणि, हमें क्षमा करें, हम अपनी विद्या के अहंकार में अंधे हो गए थे। आपकी यह मानस सचमुच साक्षात ईश्वर की वाणी है।
0: पंडित शिवचरण को पश्चाताप करते हुए और रोते हुए देखकर तुलसीदास का भी हृदय पिघल जाता है और उन्हें गले लगाते हुए तुलसीदास कहते हैं,
2: हर हर महादेव, यह सब मेरी नहीं, मेरे राघव और बाबा विश्वनाथ की कृपा है।
0: और इस प्रकार काशी के कड़े विरोध को पार कर रामचितमानस जन जन के कंठ का हार बन गया।

0: जानते हैं श्रोतागण, संबत 1635 तक आते आते रामचरितमानस की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। तुलसीदास जी ने समाज में फैली जात पात की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया था। उनकी इसी बढ़ती ख्याति और चमत्कारों की चर्चा जब दिल्ली के सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने अहंकारवश तुलसीदास जी को अपने दरबार में हाजिर होने का शाही फरमान दे दिया। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पास उनके नवरत्न अब्दुल रहीम खान एक खाना खड़े थे। सैनिक तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं। गंभीर और रोबीली आवाज में अकबर कहता है, तो तुम ही हो अवध के प्रसिद्ध संत तुलसीदास। हमने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी पुरुष हो। हम भी तुम्हारी रूहानी ताकतों का दीदार करना चाहते हैं। हमें कोई ऐसा करिश्मा दिखाओ जिससे हमारी सल्तनत तुम्हारा लोहा माने। अकबर की बात सुनकर तुलसीदास घबराते नहीं हैं, बल्कि बहुत ही शांत और निडर स्वर में कहते हैं,
1: जहां पना क्षमा करें, मैं कोई जादूगर या बाजीगर नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं और केवल अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा जानता हूं। मेरे पास दिखाने के लिए कोई चमत्कार नहीं है।
0: गुस्ताखी, सहनशाह हिंदुस्तान के हुक्म की ना फरमानी। यदि तुमने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो तुम्हें गुमराह करके जुर्म में कैद कर लिया जाएगा। सैनिकों, इसे ले जाओ और सिकरी की सबसे अंधेरी लाल कोठरी में बंद कर दो। तुलसीदास जी एक कैदी के रूप में काल कोठरी में जमीन पर बैठे हुए हैं। वे आंखें बंद कर हनुमान जी की स्तुति का पाठ करने लगते हैं। अचानक नेपथ्य से बंदरों की चीखने और तबाही मचाने की भारी आवाजें आने लगती हैं। सैनिक और दरबारी डर कर भागते दिखाई देते हैं।

0: शाही कोतवाल हांफते और कांपते हुए अकबर के पास दौड़ कर आता है और कहता है, हुजूर हुजूर गजब हो गया। न जाने कहां से हजारों भयानक बंदरों के लश्कर ने पूरे महल और किले पर हमला कर दिया है। वे सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। सैनिकों के हथियार भी उनके आगे नाकाम हैं, हुजूर नाकाम हैं। रहीम भी हाथ जोड़कर जहां पनाह के पास खड़ा है और कहता है, जहां पनाह, यह कोई साधारण घटना नहीं है। आपने एक सच्चे राम भक्त को कैद किया है। यह उन्हीं के आराध्य हनुमान जी की सेना का कौतुक है। अपनी सलामती चाहते हैं तो तुरंत बाबा तुलसीदास की शरण में चलिए। अकबर घबराकर भागते हुए काल कोठरी में आते हैं और तुलसीदास जी के पैरों में गिर जाते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं, हे महान संत, मुझे क्षमा करें। मैं अपने राजसी अहंकार में अंधा हो गया था। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया अपने इन वानरों को रोकिए। मैं आपको ससम्मान आजाद करता हूं। तुलसीदास मुस्कुराते हैं और आंखें खोलते हुए कहते हैं,
1: उठिए सम्राट, जैसा कि मैंने कहा था, सब कुछ मेरे रघुनाथ और संकट मोचन हनुमान जी की इच्छा से ही होता है।
0: अकबर के आदेश पर बंधन खोल दिए जाते हैं। रहीम आगे बढ़कर तुलसीदास जी को गले लगाते हैं और मुस्कुराते हुए रहीम दोहा पढ़ने लगते हैं, धनी रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, धन्य हो मित्र, आपकी इस निश्चल भक्ति ने आज दिल्ली के तख्त को भी झुका दिया। इस घटना के बाद अकबर ने तुलसीदास के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया और समाज में उनके लोक कल्याणकारी कार्यों में कभी कोई बाधा नहीं आने दी। संबत 1650 के आसपास रामचितमानस की अपार ख्याति के बाद भी तुलसीदास शांत नहीं बैठे। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली जैसी महान कृतियों की रचना की। वे केवल एक कवि ही नहीं बल्कि जात पात के भेदभाव को मिटाने वाले समाज सुधारक भी थे। रहीम और नाभादास जी एक दिन तुलसीदास जी के पास आकर बैठे हैं। रहीम मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर बाबा तुलसीदास से कहते हैं, प्रणाम बाबा, आज आपकी विनय पत्रिका के कुछ पद सुने, हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। आपकी लेखनी समाज के पाखंड पर अचूक प्रहार करती है। तुलसीदास भी रहीम के प्रति अपना प्रेम और स्नेह दिखाते हुए कहते हैं,
1: आइए खान खाना, आइए नाभा जी, यह सब तो रघुनाथ की प्रेरणा है। समाज में फैले ऊंच नीच के अंधकार को मिटाने के लिए राम नाम का उजाला ही एकमात्र मार्ग है।
0: तुलसीदास की बातों में सहमति दिखाते हुए नाभादास भी सिर हिलाते हुए कहते हैं, सत्य कहा बाबा, आपने सत्य कहा। कुछ लोग समाज को जातियों में बांट रहे हैं, पर आपकी वाणी सबको एक कर रही है। किंतु कुछ रूढ़िवादी अब भी आपकी जाति को लेकर उंगली उठाते हैं। तुलसीदास फक्कर अंदाज में हंसने लगते हैं और कह पड़ते हैं,
1: नाभा जी, इस संसार का काम ही कहना है। मैं तो समाज के सामने बेबाक कहता हूं। धूत धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूतों कहो, जुलाहा कहो, कोऊ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी की जाति से क्या लेना देना। मैं तो सिर्फ अपने राम का हूँ, मांग कर खा लेता हूँ और मस्जिद या मंदिर जहाँ जगह मिले सो जाता हूँ।
0: वाह, तुलसीदास की इस पंक्ति और व्याख्या से रहीम भाव विभोर हो जाते हैं। कह पड़ते हैं, लाजवाब बाबा, लाजवाब, आपकी यही जो सहृदयता है आपको महापुरुष बनाती है। तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके चरणों की धूल लेने को आतुर रहते हैं।
1: मित्र रहीम, राजाओं का वैभव

0: तो चार दिन की चांदनी है, सच्चा राजा तो केवल एक ही है, मेरा राम। हम सब तो उस राजा के दरबार के मामूली सेवक हैं।
1: नाभादास भी कह उठते हैं, धन्य है बाबा, धन्य है आपकी यह समदृष्टि और आपकी अमर कीर्तियां जो युगों युगों तक समाज का मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। और इस प्रकार तुलसीदास ने अपनी समकालीन मित्रता और महान कृतियों के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोने का महान कार्य किया। काशी का 80 घाट, समय संबत 1680 की श्रावण कृष्ण तृतीया शुक्ल सप्तमी, मंच पर गंगा किनारे एक साधारण कुटिया जहां पर बाबा तुलसीदास विराजमान हैं। लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं और लेटे हुए हैं, उनके कुछ प्रिय शिष्य उनके पास बैठे हैं। समय का चक्र घूमता जाता है, घूमता जाता है। समाज को राम नाम के आलोक से आलोकित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वृद्धावस्था और कलयुग के प्रकोप ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। उनके हाथों में असहनीय पीड़ा थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। अब वे काशी के 80 घाट पर अपने महाप्रयाण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वृद्ध तुलसीदास जी कष्ट में हैं, पर उनके मुख पर एक अलौकिक शांति है। शिष्य माधव और गोपाल उनके पैर दबा रहे हैं। बाबा की स्थिति देखकर आंखों में आंसू लिए शिष्य माधव कहते हैं, बाबा आपका यह कष्ट हमसे देखा नहीं जाता। बाबा इस बाहु पीड़ा ने आपको बहुत शिथिल कर दिया है, बाबा बहुत शिथिल कर दिया है। क्या हम किसी वैद्य को बुला लाएं? कमजोर किंतु शांत आवाज में तुलसीदास कहते हैं,
0: नहीं माधव, अब इस नश्वर देह को किसी वैद्य की आवश्यकता नहीं है। इस मिट्टी के घड़े को अब फूटकर गंगा की माटी में ही मिल जाना है। राम नाम की जो औषधि मैंने जीवन भर बांटी, वही अब मेरे इस अंतिम सफर का संबल है।
1: शिष्य गोपाल भी जो है बाबा तुलसीदास की स्थिति को देखकर रोने लगते हैं। बाबा यदि आप भी चले जाएंगे तो इस घोर कलयुग में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे बाबा, अनाथ हो जाएंगे। तुलसीदास गोपाल का हाथ थामते हुए कहते हैं,
0: पगले अनाथ कैसे, जिसके सिर पर रघुनाथ का हाथ हो वह कभी अनाथ नहीं होता। मैंने जो मानस तुम्हें सौंपी है उसमें स्वयं श्री राम और माता जानकी वास करते हैं। जब भी जीवन के पथ पर डगमगाओगे, मानस के पन्नों में अपने राम को ढूंढ लेना, बस आपसी प्रेम बनाए रखना और धर्म के मार्ग पर चलते रहना, चलते रहना।
1: और धीरे धीरे पूरे वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंजने लगता है। तुलसीदास जी की आंखें चमक उठती हैं, मानो वे सामने किसी को देख रहे हों। वे हाथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और भाव विभोर होकर कह पड़ते हैं,
0: देखो माधव, देखो गोपाल, वो आ गए, धनुष बाण हाथ में लिए, मस्तक पर मुकुट सजाए, मेरे राघव स्वयं मुझे लेने आ गए हैं। लक्ष्मण जी भी साथ है और संकट मोचन हनुमान जी भी साथ में है।
1: संबत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, तुलसी तजियो शरीर। तुलसीदास जी की आंखें बंद हो जाती हैं, उनका सिर एक ओर लुढ़क जाता है। शिष्य राम राम कहते हुए रोने लगते हैं। और इस प्रकार हिंदी साहित्य का वह सूर्य जिसने जन जन के हृदय में राम को प्रतिष्ठित किया, सदा के लिए प्रभु के चरणों में विलीन हो

पिया। वे चले गए पर अपनी अमर वाणी के रूप में वे आज भी हमारे बीच अमर हैं, उपस्थित हैं।

0: तो प्रिय श्रोतागण, कहानी का केंद्रीय संदेश है कि जीवन में परिवर्तन का द्वार सदैव खुला रहता है। मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यदि उसके भीतर आत्मबोध जाग जाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। तुलसीदास ने अपने मोह को भक्ति में, अपनी पीड़ा को साधना में और अपनी प्रतिभा को लोक मंगल में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मनुष्य को ईश्वर से ही नहीं बल्कि समाज और मानवता से भी जोड़ दे। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की आलोचना और कठिनाइयाँ भी नई दिशा दे सकती हैं। आत्मचिंतन मनुष्य के व्यक्तित्व को महान बनाता है। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, सेवा और मर्यादा का मार्ग है। साहित्य समाज को जोड़ने और संस्कारों को जीवित रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। तुलसीदास का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की चेतना को जागृत कर ले तो वह स्वयं भी बदल सकता है और समाज को भी बदलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है, और साथ ही साथ समाज के सामने राम के जैसा आदर्श भी प्रस्तुत कर देता है जिसको सभी लोग उस रूप को, उस आदर्श को स्वीकारते हैं और उसका पालन करते हैं, उसके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो हमारे साथ गुरु बिस्वा भी बैठे हैं और मॉरिशस में तो राम बहुत बड़े नाम हैं। तो गुरु बिस्वा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में राम जैसा कोई आदर्श पुरुष है जिससे आप सदा प्रेरित होते रहे और आपने जो है उनके कथन का पालन किया?
1: जी, एकदम मेरे गुरु हुए, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उनसे सीखी वह है अनुशासन
0: जी,
1: मतलब डिसिप्लिन। और उसके अलावा मैंने कई श्लोक भी उनसे सीखे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यह श्लोक जब उन्होंने इसका पाठ किया, जब इसका अर्थ मुझे समझाया तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव मुझ पर पड़ा। इसका अर्थ यह है कि मात्र इच्छा से हम अपने कर्मों की सिद्धि नहीं करते, मतलब उद्यम से ही कर्मों की सिद्धि होती है, केवल मनोरथों से नहीं। और दूसरी लाइन में यह बात बताई गई है कि सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण या कोई जानवर नहीं आता है। शेर जंगल का राजा है, उसको भी उठकर शिकार करना पड़ता है। तो वैसे ही मनुष्य चाहे साधारण हो, उसे भी कर्म करने चाहिए, उसे भी उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है वह मनुष्य।
0: जी, यानी तो कर्म बहुत जरूरी है,
1: कर्म प्रधान।
0: आराम हराम है,
1: हमें कर्म ही प्रधान है। अच्छे कर्म करो
0: जी
1: और सुख से जियो। तो ऐसे गुरु जब आपके सामने होते हैं उनसे बहुत सीख हमें प्राप्त होती
0: जी। और हमारी जो लड़ाई है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सभ्य बनाने की
1: जी
0: है। जब हम सभ्य बनने के लिए संघर्ष करते हैं तो हम अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम सभ्य बन सकते हैं और राम के आदर्शों को का अनुसरण कर सकते हैं।
1: और गुरु का अर्थ ही है भारी होना
0: जी।
1: किससे भारी होना? ज्ञान से भारी होना। और गुरु आदर्श होता है, उसी को बोलते हैं मॉडल। तो उसका अनुकरण करना हमें चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो पाते हैं।
0: हाँ, तो हाँ श्रोतागण, गुरु बिस्वा ने बहुत ही अच्छी बात कही और इसके साथ ही अब समय हो गया है पिछली बार जो लोकोक्तियाँ आपसे पूछी गई थी उसका अर्थ बताने का। लेकिन सबसे पहले इस बार की जो लोकोक्तियाँ हैं भोजपुरी में, उसे आप ध्यान से सुने। भोजपुरी में है तुलसी छू के कसम खाइल, फिर से सुनिए, तुलसी छू के कसम खाइल। और हिंदी में जो लोकोक्ति है, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो इसका अर्थ जो है आप आपस में विचार विमर्श कीजिएगा, आप मुझे इसका अर्थ मेल भी कर सकते हैं। और पिछली बार जो लोकोक्तियाँ पूछी गई थी उसका अर्थ गुरु बिस्वा बताएंगे। भोजपुरी में लोकोक्ति थी, खेत खाए गधा मारल जाए जुल्हा।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है गलती कोई और करे लेकिन सजा किसी और को भुगतनी पड़े।
0: और

0: हिंदी में दूर के ढोल सुहावने
1: बहुत प्रचलित लोकोक्ति है। इसका भावार्थ है दूर की चीजें या परिस्थितियां हमेशा अच्छी लगती हैं। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कथा है, कृपया इसका रसास्वादन कीजिए। रमेश एक छोटे से गांव में रहता था। उसे हमेशा लगता था कि शहर का जीवन बहुत सुखद और आसान होगा।

0: देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महंगा जीवन, जटिल कार्य, भीड़ और अकेलापन झेलना पड़ा। उसे गांव की शुद्ध हवा, अपनापन और शांत जीवन याद आने लगा। कुछ समय बाद वह अपने घर लौट आया, अपने गांव लौट आया और मन लगाकर खेती करने लगा। तब उसे समझ में आया कि वह स्थान जहां पर वह रहता है उसके लिए वही सबसे उत्तम स्थान है, क्योंकि कठिनाइयां तो चारों ओर होती हैं लेकिन उसे झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, दूर के ढोल सुहावने। हम दूसरों की परिस्थितियों को देखकर आकर्षित होने के बजाय अपनी परिस्थितियों का सही मूल्य हमें समझना चाहिए। इस कहानी की सीख यही है।
1: तो प्रिय श्रोतागण, आपको पता है कि गुरु बिस्वा हर बार लोकोक्तियों पर छोटी छोटी कहानियां लिखकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए हम उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद।
1: तो इस बार का जो आमंत्रण संदेश है वह भी कृपया आप सुने। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण अवश्य आता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव, कोई प्रेरक व्यक्ति या कोई घटना आई है जिसने आपके विचारों और जीवन की नई दिशा दी हो? क्या आपने कभी किसी कठिन परिस्थिति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदला है? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है। आप अपनी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हमें लिखकर भेजें जो आत्म परिवर्तन, भक्ति, सेवा, संस्कार, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी हों। आपकी चुनी हुई कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित की जाएंगी और आगे चलकर एक पुस्तक का हिस्सा भी बनेंगी। तो आइए, गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने भीतर ज्ञान, भक्ति और मानवता का दीप जलाएं। अपनी रचनाएं मुझे professorrajsekhar@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपनी सोच को स्वर दीजिए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी एक सच्ची कहानी किसी और के जीवन में आशा, भक्ति और परिवर्तन का नया प्रकाश जगा दे। धन्यवाद। नमस्कार।
0: प्रोफेसर राज जी, इन महत्वपूर्ण जानकारियों व सूचनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, कहा गया है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। अर्थात, इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। जो योग और साधना में सिद्ध होता है वह समय आने पर उस ज्ञान को स्वयं अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। श्रोताओं, एक ज्ञानवान व्यक्ति ही संसार में प्रगति पथ पर अग्रसित होता है। ज्ञान रूपी प्रकाश से ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। आप लोगों को ज्ञात होगा, महाविद्वान आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि उनका ज्ञान ही उनका असली बल है और अपने उसी ज्ञान और बुद्धि के बल पर उन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। प्रिय श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के विदा दीजिए। अगले सप्ताह पुनः एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप लोगों ने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुशः धन्यवाद और नमस्कार।

0: सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। पहली जुलाई बुधवार का दिन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्टलिस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार पर विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हों। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसतन तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय सभा में पेंशन सुधार को विशेषज्ञ आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पेश की। इस दस्तावेज में मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए 3 स्तंभ दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है परामर्शों के आधार पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये पर्याप्त, टिकाऊ और निष्पक्ष हो। 271 पृष्ठों की ये रिपोर्ट, जिसमें मींस टेस्ट का प्रस्ताव दिया गया था, उसे बजट भाषण में शामिल किए जाने के बाद फ्रीज कर दी गई। कुरानगुजी की रिपोर्ट पर यशराम मिश्रा का विवरण।
1: द फंडिंग डेफिसिट इन द पेंशन स्कीम्स ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडीज वाज एस्टिमेटेड एट 53 बिलियन रुपीस, व्हाइल दैट एट द एनपीएफ स्टूड एट 113 बिलियन रुपीस, रिप्रेजेंटिंग ए कंबाइंड डेफिसिट ऑफ 166 बिलियन रुपीस, दैट इज मोर देन 20% ऑफ द करंट GDP. As the actuarial valuation for the NPF dates back to 2020, it is very likely that the financial position of the pension fund has deteriorated further, owing, among others, to the increasing life expectancy among scheme members and pensioners and the contribution rates that have not kept pace with the scheme's long-term funding requirements. The previous government has done nothing

0: absolutely nothing to address the structural challenges facing the pension system in a comprehensive and timely manner. On the contrary, it has aggravated the situation with its irresponsible decisions and the introduction of the CSG, and these have compounded the deficits and the unsustainability of the pension system.
1: राष्ट्रसभा में कल दूसरी पढ़त पर डोमेस्टिक अब्यूज बिल प्रस्तुत किया गया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री ने कहा कि ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाएगा और इसमें आर्थिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। मंत्री आरियाना वोमारी ने बताया कि इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
2: डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल में प्रोटेक्शन ऑर्डर के उल्लंघनों के लिए सजा देने का प्रावधान है। हिंसा के शिकार लोगों का सहयोग भी इसमें शामिल है। इसी उपलक्ष्य में सोशल इंटीग्रेशन और समाज सुरक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय सॉलिडारिटी फंड के तहत हिंसा के शिकार लोगों के लिए एक एलोकेशन का प्रावधान किया गया है। शेल्टर में बिताए गए 2 महीनों की अवधि के लिए इससे ये लोग मूलभूत सामान खरीद पाएंगे। एक्सक्लूजन ऑर्डर भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
3: Lorsque la cohabitation continue, représente un risque.
2: जब साथ रहना खतरनाक हो तो हिंसा करने वाले को वहां से जाना पड़ेगा। हिंसा के शिकार व्यक्ति को अपने बच्चों या घर को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि खतरा उसने नहीं बल्कि उसके साथी ने पैदा किया है। यदि ये संभव न हो तो अदालत हिंसा करने वाले को अपने साथी के लिए आवास की व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। जिम्मेदारी उसकी है जिसने खतरा पैदा किया है और न कि जो दर्द सहता आया है।
3: De pourvoir à un logement alternatif pour la victime. La charge incombe à celui qui a créé le danger et non à celle qui en a souffert.
2: Domestic abuse bill के तहत जानकारी देने की प्रक्रिया को बेहतरीन किया जाएगा।
3: En outre, en cas de manquement à une ordonnance d'abus domestique signalée à un poste de police.
2: यदि घरेलू हिंसा को लेकर कोई ऑर्डर नहीं तो एक व्यक्ति देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है। जांच भी तुरंत शुरू की जानी चाहिए। अब से 14 के बदले ट्राइब्यूनल के पास 7 दिनों का समय होगा आरोपी को पेश कराने के लिए।
3: Par ailleurs, madame la présidente, le tribunal disposera dorénavant de 7 jours au lieu de 14 jours à compter de la date de la demande pour convoquer la personne mise en cause et statuée.
2: घरेलू हिंसा से संबंधित इस विधेयक में आदेशों और कानूनी नोटिसों का पालन न करने पर अधिक कड़े जुर्माने और सख्त कारावास की सजा का भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा के दोषियों के पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रावधान है। इसके लिए डोमेस्टिक अब्यूज कोऑर्डिनेटिंग पैनल का गठन किया जाएगा।
1: खबरों को आगे बढ़ाते हैं। सर शिव सागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्ट लुइस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये 4 परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है। ये फंडिंग उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन रामगुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई थी। बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम कम किए गए हैं। इस नियम के लागू होते ही व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अफसरों ने आज कुछ बड़ी दुकानों का दौरा किया। 2026-2027 का वित्तीय साल मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मॉरिशस एक्सप्रेस सिस्टम की कारगरता बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद ने कर्ज धीरे धीरे चुकाने, लागत पर नियंत्रण पाने, नेटवर्क को आधुनिक बनाने और तोड़फोड़ से निपटने के लिए नए कदमों पर आधारित योजना का ऐलान किया है। आज पोर्टलिस्ट में क्रॉस रेल इंटरनेशनल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने ये जानकारियां दी। इस रिपोर्ट में मेट्रो एक्सप्रेस के उन फायदों पर जोर दिया गया जो यात्रियों के ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के अनुसार ये नेटवर्क सालाना तौर पर 1.7 बिलियन रुपए का आर्थिक योगदान देता है। बजट 2026-2027 में फ्लैक के डॉक्टर ब्रूनो चोंग मेडिकल सेंटर में एक रेजिडेंशियल रिहैबिलिटेशन केंद्र यानी एक नशा मुक्त केंद्र की स्थापना करने की योजना शामिल है। मकसद है नशा करने वालों को बेहतर मदद उपलब्ध कराना। इस परियोजना से जुड़े अन्य साझेदारों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। हालांकि ज्यादा व्यापक सेवाओं वाले इस केंद्र के कार्यरत होने तक इस इलाके में नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज अभी एडिक्शन यूनिट में किया जा रहा है जो डॉक्टर ब्रूनो चोंग सेंटर का ही एक हिस्सा है। रिया रामोजन की रिपोर्ट पर एक बार फिर याचना मिश्रा का विवरण।
2: 43 साल का ये व्यक्ति अपॉइंटमेंट पर आया है। पिछले लगभग 7 सालों से वो नियमित रूप से मिथाडोन उपचार के लिए इस केंद्र में आ रहा है। ये इकाई पिछले 10 सालों से अधिक समय से चल रही है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 20 मरीज आते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी अन्य निःशुल्क और गोपनीय सेवाएं भी उपलब्ध है। हम व्यक्ति के साथ साथ परिवार से भी बात करते हैं ताकि व्यक्ति को इस समस्या से बाहर निकाला जा सके। इन सेवाओं के अलावा नशे के आदि लोगों के पुनर्वास में रिहैबिलिटेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर ब्रूनो चोंग सेंटर को एक आवासीय पुनर्वास केंद्र में बदला जा रहा है। पूर्वी इलाके में पहली ऐसी योजना। पूर्वी इलाके का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जहां रिहैबिलिटेशन केंद्र नहीं है ड्रग्स और एचआईवी के मरीजों के लिए। अब हम कह सकते हैं कि बेहतरीन उपचार दिया जा सकेगा। इस परियोजना के लिए कई संबंधित पक्षों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। NGOs का सहयोग जरूरी है जो अधिकारियों और ड्रग्स के आदियों के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों को मजबूत करने के अलावा बजट में प्रत्येक मंत्रालय को नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 मिलियन रुपए का प्रावधान भी किया गया है।
1: अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए स्टार्टअप्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मॉरिशस में नवाचार और कारोबारिता पर आधारित एक इकोसिस्टम धीरे धीरे आकार ले रहा है। बजट 2026-2027 में इस विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम निर्धारित किए गए हैं जिनमें एक स्टार्टअप एक्ट की स्थापना, EDB के अंतर्गत एक एक्सेलरेटर स्कीम, कोदो में भावी इकोनॉमिक जोन में एक हब तथा कामकाज शुरू करने के बाद 10 साल की अवधि के लिए टैक्स की छूट आदि कदम शामिल हैं। इन पहलों का मकसद ऐसा माहौल कायम करना है जो देश की आर्थिक वृद्धि का मुख्य चालक का बने। अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भरता से आगे बढ़कर निवेश, नवाचार और आर्थिक साझेदारी पर ध्यान देने का मकसद तय किया है। इसी सोच के साथ कल अफ्रीका बियॉन्ड एड सम्मेलन शुरू किया गया जिसमें विभिन्न देशों के नीति निर्माता, ठेकेदार और निवेशक शामिल हुए हैं। मकसद है मॉरिशस और अफ्रीकी महाद्वीप के बीच व्यापार मजबूत और कारोबार के मौके पैदा करना। इस पर आदरणीय वालिया की रिपोर्ट पर गीता स्नान का विवरण।
4: मदद से व्यापार की ओर, निर्भरता से संपत्ति सृजन की ओर, यही नई दिशा अफ्रीका बियॉन्ड एड शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने प्रस्तुत की है जिसका उद्घाटन इस बुधवार बालाक्लावा में हुआ। इस सम्मेलन में अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आयोजकों का मानना है कि तेजी से बदलते अफ्रीकी महाद्वीप में मॉरिशस की कंपनियों के लिए नए अवसर मौजूद हैं। वहीं मॉरिशस अफ्रीकी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचने के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय मंच प्रदान करता है। GCIL कंट्री डायरेक्टर मीनाक्षी ओबिलक कहती हैं,
5: यहाँ
4: उन्हें सीधा संपर्क मिलता है ताकि वे अपने

0: पैदावारों या सेवाओं का निर्यात कर सके, कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जैसे निवेश, सहयोग आदि।
1: Tout ça prend vie là pendant que je cause avec vous.
2: It is a strategic summit for us.
0: Global Center for Innovative Leaders के संस्थापक कहते हैं, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। अफ्रीका में आपके जैसे दूरदर्शी नेता हैं, साहसी SMEs और ठेकेदार हैं, जो एक ऐसा अफ्रीका स्थापित करना चाहते हैं जो निवेश, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बदौलत हो। अफ्रीकी महाद्वीप छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कई संभावनाएं प्रदान करता है। ये शिखर सम्मेलन विभिन्न देशों से आए निवेशकों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। कंसल्ट प्लस अफ्रीका के CEO डविना गोआडन कहती हैं,
3: Très belle opportunité de networking.
0: ये नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा असर है, ये देखने के लिए कि अफ्रीका के स्तर पर एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, कई तरह के निवेश पर चर्चा कर सकते हैं, साझेदारी और आदान प्रदान पर भी, हुनर, योग्यता और प्रशिक्षण के स्तर पर। मॉरिशस भी अपने अनेक लाभों का उपयोग कर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है। एक प्रतिष्ठित वित्तीय केंद्र होने के साथ साथ यहाँ का मजबूत कानूनी ढांचा और अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ हुए व्यापारिक समझौते इसे विशेष बनाते हैं। साथ ही डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुद्दो में विकसित किए जा रहे भविष्य के टेक्नोलॉजी हब के माध्यम से मॉरिशस अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। विदेश मंत्री धनंजय रामफल कहते हैं,
4: Maurice finit ici plusieurs bains de l'accord qui vont faire ressortir nos membres de la SADC, ce qu'on appelle le African Continental Free Trade Agreement.
0: Mauritius ne kai sandhiyon par hastakshar kiye hain. Inme SADC ke sadasya hain, African Continental Free Trade Agreement hain. Niveshak Mauritius ko ek manch ke roop mein istemal kar sakte hain, jisse ve in deshon tak pahunch pa sake aur Afrika mein nivesh kar sake. इस शिखर सम्मेलन के अंत में आयोजकों को उम्मीद है कि यहाँ हुई बातचीत लंबे समय की साझेदारियों और नए निवेशकों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। उनका लक्ष्य मॉरिशस और अफ्रीकी बाजार में प्रवेश के लिए एक प्रमुख और विश्वसनीय द्वार के रूप में और ज्यादा मजबूत करना है।
5: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पर्सनल डिजिटल डेटा का क्या होता है, डॉक्टर शिबा ओमुगम ने इस विषय पर एक अध्ययन चलाया। इस पर एक पुस्तक प्रकाशित की, शीर्षक है डिजिटल आफ्टर लाइफ, अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर लॉ, टेक्नोलॉजी एंड विक्टिम जस्टिस। राष्ट्रीय बजट में ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना दुगना करने का प्रावधान किया गया है, जिससे ऐसे अपराध पर जुर्माना ₹10,000 से बढ़कर ₹20,000 किया जाएगा। आम उल्लंघनों में गाड़ियों के एग्जॉस्ट पाइप से होने वाली तेज आवाज, ब्रेकिंग, फायरिंग और पड़ोसियों को परेशान करने वाली स्पीकरों की तेज ध्वनि शामिल हैं, लेकिन नियमों को सख्त करने से खासकर नौजवानों के पसंदीदा ट्रेंड कम होंगे या नहीं, ये विचार करने योग्य है। कल एंटी ड्रग एंड स्मगलिंग यूनिट प्रेस से उन्होंने मुलाकात की और इस साल 2026 के पहले 6 महीनों का ब्यौरा पेश किया गया, जहां कई जब्ती, ड्रग तस्करी और नए चालान और जनता के राय के बारे में भी खुलासा की गई। मंदिर और पूजा पद्धतियां केवल पत्थर की संरचनाएं या मात्र कर्मकांड नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात दैवीय ऊर्जा के केंद्र हैं। इन पवित्र स्थलों की दिव्यता को अक्षुण बनाए रखने और परमात्मा के साथ भक्त के गहरे जुड़ाव को अनुभव करने के लिए कई विशेष अनुष्ठानों का विधान है। महासंप्रोक्षणम और श्री विष्णु कल्याणम ऐसे ही दो अत्यंत प्रभावशाली और आध्यात्मिक आयोजन हैं, जहां महासंप्रोक्षणम श्री सत्यनारायण स्वामी आलयम के शुद्धिकरण और उसकी ऊर्जा को नवीनीकृत करने का उत्सव है। वहीं श्री विष्णु कल्याणम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दिव्य मिलन के माध्यम से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का संचार करता है।

0: कुछ देर पहले जैसे हम आपको बता रहे थे कि बजट 2026-2027 में घोषित सब्सिडी वाले उत्पादों की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बदौलत अब से 7 सामानों के दाम किए गए हैं।
1: दुकानों के शेल्फ पर अब नए दामों के लेबल उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन लेबलों पर दो अनिवार्य जानकारियां दी गई हैं। पहली MRP और दूसरी SP यानी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि।
2: Peut-être il y a certains produits qui ont baissé, mais pas tout. Un petit peu plus raisonnable pour ben du monde qui cherche, ou ben moyen, ça, qui, comment dire, je suis capable de battre. Mais il n'est pas qu'avant, c'est trop cher même.
3: À cette époque, on n'est pas capable. Déjà, baissé un point un petit peu.
4: Tu devrais plus baisser.
1: स्थल पर व्यापार मंत्रालय के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि नई व्यवस्थाओं को व्यापारी लागू कर रहे हैं या नहीं।
5: Nous touche 485 produits et des bons qui la population rappelle qu'en août le programme du Price Action Fund vient commencer avec 5 produits de base. À partir d'aujourd'hui, nous mettons encore 7 produits additionnels. Nous commençons par le macaroni, pour une baisse de 10 roupies. Le ban grain sec, une baisse de 10 roupies. Le ban thon en boîte, c'est une baisse de 20 roupies. Et nourriture pour bébé, c'est une baisse de 15 roupies. Pour les cornes mouton et cornes beef, une baisse de 20 roupies.
1: इस सुपरमार्केट में उपभोक्ताओं की राय मिलीजुली रही। कुछ लोगों ने कीमतों में आई कमी का स्वागत किया, जबकि अन्य का कहना है कि यदि जीवन यापन की बढ़ती लागत पर वास्तविक प्रभाव डालना है तो इस योजना का दायरा और अधिक उत्पादों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
6: Moi j'ai l'habitude de petit carnet. Alors tout le temps je fais provision et je regarde les prix. Mais là le monsieur vient de m'expliquer, il faut revoir parce que le MRP, on avait déjà entendu parler, le municipal avait parlé de ça. Mais là maintenant quand le public vient, il voit ça, c'est encore meilleur.
7: Nous faisons une vérification sur place pour assurer que tout le prix qui est préconisé d'après la loi doit être respecté par tous les commerçants. Donc nous dire que tout le produit qui est exposé pour vendre qui a sa subside là-dessus, donc le commerçant doit afficher le prix en son MRP.
1: अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित व्यापारिक व्यवहार दिखाई दे तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
7: Nous avons un public et nous faisons du travail et pour contacter nous c'est le hotline 185 ou car aussi contacter nous sur le WhatsApp 5942888 ou car venir par email le consumerpu@gov.org.
1: व्यापार मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि विशेष अनुमति के बिना कोई भी व्यापारी सब्सिडी वाले उत्पादों की खरीद पर सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता का लाभ सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से पहुंचे।
0: और जैसे सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि सचिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक नया कंट्रोल टावर, M4 मोटरवे की निर्माण परियोजना, रिंग रोड प्रोजेक्ट का दूसरा चरण और पोर्टलिस को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण, ये चार परियोजनाएं हैं जिनके लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को दी गई 20.5 बिलियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत फंड प्राप्त हुआ है, जो उस 31 बिलियन रुपए के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की यात्रा के दौरान बातचीत हुई। मिगान पनपनाई कैन की रिपोर्ट पर गीता सुरान का विवरण।
1: रविवार को सिशेल्स में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि भारत ने मॉरिशस को लगभग 20.5 बिलियन मॉरिशियन रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग मुख्य रूप से चार प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इनमें शशि सागर राम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, M4 हाईवे, रिंग रोड परियोजना का दूसरा चरण और बंदरगाह के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद शामिल हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,
8: Un bateau qui peut venir, alors il y a pour autant aussi qui nous le pot et là, l'infrastructure nécessaire pour qu'elle délivre. Après, c'est dans ce projet de Ring Road là, qui est un projet depuis assez longtemps, une cause ça, et là, il peut être matérialisé grâce à sa ligne de crédit. Et dans notre projet, sa Control Tower là aussi, et là, dans ce budget-là, nous finissons annoncer et nous finissons financement nécessaire pour qu'il nous capable financer ce projet-là.
1: ये लाइन ऑफ क्रेडिट कुल 31 बिलियन मॉरिशियन रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का हिस्सा है जिस पर सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। इस पैकेज में 10 बिलियन

0: मॉरिशन रुपए का अनुदान भी शामिल है। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव कहते हैं,
1: In terms of magnitude,
0: यदि इसके व्यापक स्तर की बात करें तो ये संभवतः दुनिया भर में लागू किए जाने वाले हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारी कार्यक्रमों में से एक होगा। अप्रैल महीने में हमने एक लेटर ऑफ एक्सचेंज पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें अनुदान प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा तय की गई थी। अब हमने इस लाइन ऑफ क्रेडिट की भी औपचारिक पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही फाइनेंसिंग समझौते और विशेष आर्थिक पैकेज SEP के अंतर्गत आने वाली सभी 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ढांचा पूरी तरह से अंतिम रूप ले चुका है। दोनों पक्षों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की रूपरेखा पहले ही तय की जा चुकी है। इस लाइन ऑफ क्रेडिट पर बहुत कम ब्याज दर लागू होगी। इससे इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकेगा। मंत्री रितेश रामफल कहते हैं,
2: ligne de crédit, ban loan qui au gain avec ban institution financière. Nous devons reconnaître d'ailleurs qu'Hélène fait aide Maurice à chaque fois qu'il y a dans le besoin.
0: श्री अनुराग वास्तव कहते हैं, ये मॉरिशस के प्रति हमारे समर्थन की एक ठोस और स्पष्ट प्रतिबद्धता है। हमें इस बात पर गर्व है कि हम मॉरिशस के सबसे बड़े विकास साझेदार हैं। विशेष आर्थिक पैकेज SEP के तहत शुरू की गई ये नई परियोजनाएं मॉरिशस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, देश में बेहतर संपर्क व्यवस्था करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मॉरिशस के लोगों के कल्याण एवं विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। भारत और मॉरिशस के बीच हुए समझौते के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर इस लाइन ऑफ क्रेडिट का एक हिस्सा भविष्य में अन्य विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है।
3: कोपरनिकस मैरीन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार दुनिया के महासागरों में अब तक का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया गया है, जिनका औसत तापमान 20.98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। एल नीनो और ग्लोबल वार्मिंग के मिले जुले असर से 2026 में नए रिकॉर्ड बन सकती हैं। बात करें फुटबॉल के बारे में, कोत द्वीवर यानी कि आइवरी कोस्ट का 2026 विश्व कप का सफर यही खत्म हो गया। एलिफेंट्स ने नॉर्वे के खिलाफ जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन राउंड ऑफ 32 में जिन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, मैच के आखिर में अर्लिंग हालैंड के निर्णायक गोल की बदौलत स्कैंडिनेवियन टीम राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला ब्राजील से होगा। अरविंद बिसेस का विवरण।
4: वर्ल्ड कप 2026 में आइवरी कोस्ट का सुहाना सफर पूरा हुआ। सुहाना सफर इसलिए क्योंकि पहली बार के लिए ये टीम यहां तक पहुंची। नॉर्वे के खिलाफ अफ्रीकी हाथ ही लोग डट कर सामना करते रहे, पर अर्लिंग हालैंड के होते काम मुश्किल था। मैच में पहला गोल फर्स्ट हाफ में बनता है, अंतोनियो न्यूसो का गोल 39वें मिनट पर। सेकेंड हाफ में आइवरी कोस्ट में जान आई और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाद जालो इक्वलाइज करता है 74वें मिनट पर।
5: Absolutely sensational goal.
4: यहां से दोनों टीम आक्रामक रुख अपना चुकी थी, पर जब अर्लिंग हालैंड जो यहां तक चुप था अपना छाप छोड़ता है इस गोल के साथ। इस गोल से नॉर्वे की टीम क्वालिफाई 2-1 के स्कोर पर।
5: He rolled it into an empty net.
4: बेस्ट ऑफ 16 राउंड में वीचेन दे फिनाल में नॉर्वे और ब्राजील के बीच धमासान टकराव होगा। आइवरी कोस्ट को अलविदा, पर नॉकआउट राउंड में पहली बार आए खूब संघर्ष करके जा रहे हैं।
3: 2026 वर्ल्ड कप का राउंड ऑफ 32 जारी है। आज रात 2 बड़े मुकाबले होने हैं। बेल्जियम का सामना सेनेगाल से होगा, जो एक जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है, और इसके बाद कोहोस अमरीका का मुकाबला बोस्निया अर्जेगोविना से होगा। ये दोनों ही महत्वपूर्ण मैच हैं, जिनमें राउंड ऑफ 16 में जगह बनाने के लिए 2 स्टॉप दाव पर है। इस पर ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसर दे रहे हैं।
4: बेल्जियम की टीम को जाबलो रूज नाम दिया गया है, मतलब लाल भूत। इनका सामना तेरेंगा लायंस से होगा। दोनों दबोचने के लिए तैयार हैं। बेल्जियम अपना आखिरी मैच जीत के ग्रुप टॉप कर गया था। धीरे धीरे

0: इस टीम ने रफ्तार पकड़ा और केविन डे ब्रुइन, लियांड्रो ट्रोसार, थिबो कुर्तुआ के अनुभव काम आएंगे इस मैच में। सामने है सेनेगल की टीम, 5-0 से इराक को पछाड़ कर क्वालिफाई हुए। साजो माने, इस्माइला सा, ये लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं। एडवो मेंडी खेलेगा या नहीं अभी तक पता नहीं। उधर सैन फ्रांसिस्को में मेजबान टीम यूएस से मैदान में उतरेगी। ये टीम कनाडा और मेक्सिको की तरह क्वालिफाई होना चाहेगी अपनी सरजमीन पर। यूएसए का सामना बोस्निया से होगा। यह टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंची 3-1 से कतर को हराकर। एडिन जेको की टीम यूएसए वर्सेस बोस्निया कल सुबह 4 बजे।
1: इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम संबंधी जानकारियों की ओर, याश्ना मिश्रा के साथ।
2: हमारे इलाके पर सामान्य हवाओं का असर है। इसके अलावा कल सुबह से दक्षिण से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को आसमान साफ रहेगा। कल सुबह पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 17, अधिकतम 20 से 23 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:46 पर, शाम को सूर्यास्त 5:41 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी आविका भी, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। एवेन्यू लोह के अबूबासमे, एवेन्यू लोह के अबूबासमे 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव बंधुआ जिन्हें राजीव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यूक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमोरो एट 9 AM। अविनिकोदिगा दस्तानी रोजिल में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री वकील जगोनित जिन्हें कुकू के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती स्वस्ति जगोनित के घर स्टाली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोव्यूक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9। जकारोंडा स्ट्रीट ग्रांड रिवियर नॉर्थ वेस्ट में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वीना राजश्री मुतुवीरेन जिन्हें पैदाश नाम भोला की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर ग्रांड रिवियर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैं पियर बॉम्बुक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। रू सैं मारी ले कोर्नू सैं क्वामे 87 साल की 87 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती गोपुल पैदाश नाम डॉवीज और जिन्हें सीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर सैं क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाली दीपत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। La Croisée Chebel, la petite rivière mais 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमला देवी बीपन जिन्हें कमला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:45 पर उनके बेटे आनंदत रामा के घर पुचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:45 AM। रुद्बाशेरी मुकामे 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरजलाल सोनिया जिन्हें विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी अमरावादी सोनिया के घर बॉशेरी मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 10 बजे सिया कॉन्स्टेंस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन

0: Mulu ateniem. Konsholu shumegrunyemi, konsholu shumegrunyemi, unasi salle. Ki 79 years old, ki Shri Rajana Nagaya. Shri Rajana Nagaya, jinhe Dharmanand ke naam se bhi log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi kal din ke 2 baje unki patni Shrimati Mamita Naraya ke ghar Shumegrunye se uthakar antim sanskar ke liye Rivya Digalik Shmshan Bhumi le jayegi. Commission tomorrow at 2 p.m. Number 9, Moselmo Mount, Pamplemousses. Number 9, Moselmo Mount, Pamplemousses. 80 saal ke, 80 years old ke, Shri Bremananda Mangapati, Shri Bremananda Mangapati, jinhen Nanda ke naam se log zyada jante the ki mrityu ho gayi hai. Unki arthi agle ravivar ko, subah 10 baje unke ghar Pamplemousses se uthakar antim sanskar ke liye Belmore, Goodlands ki Shmshan Bhumi le jayegi. Cremation on Sunday at 10 a.m. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to Radio Masti.
2: Continuous music. RM3.
3: नहीं सो.
4: आज है बुधवार पहली जुलाई 2026 यस जुलाई महीने का ये पहली जुलाई महीने की पहली रात्रि है ये सो हैव अ वंडरफुल इवनिंग बेशक हमारा साथ रहेगा अभी से लेकर रात की 11 बजे तक अभी से लेकर शाम के 7 बजे नई सोच प्रोग्राम भाव गीतों का प्रोग्राम 7 बजे दिलों की आवाज़ और रात के 9 बजे भोजपुरी दरकार और 11 बजे हमारा और आपका साथ पूरा हो जाएगा सो चलिए शुरू करते हैं इस भाव गीत इस नई सोच प्रोग्राम को एक भाव गीत के साथ कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका संसार में खुदा होता है और खुदा जब होता है तो फिर किस बात का डर है कि नहीं तो उस खुदा पर भरोसा कीजिए क्योंकि वही हमारे पालनहार है वही सब कुछ करने वाले है और खुदा पर जो भरोसा रखता है खुदा का बंदा वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहता है

घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो पर घर तो घर होता है। इंसान जब दिन भर काम करके थका मांदा घर लौटता है तो उसे आराम मिलता है, उसे सुकून मिलता है। सो हर किसी को अपना घर स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर लगता है।

0: ये बात का जो सत्य है कि आएगा जब ये बुलावा हरि का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा कोई बहाना नहीं बनेगा सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ेगा जब समय आता है ना जाने के लिए तो जाना पड़ता है क्योंकि इंसान जो है वो अमर नहीं है वो नश्वर है नश्वर का मतलब कि जिसका अंत होना है जो भी आता है दुनिया में एक न एक दिन उसका अंत हो ही जाता है और कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है बड़े बड़े ज्ञानियों ने हमें बताया है कि जहाँ तक हो सके मनुष्य होने के नाते हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ये मत सोचे बदले में हमें क्या मिलेगा पर जहाँ तक हो सके हम में दया सहानुभूति की भावना होनी चाहिए और जहाँ तक हो सके अगर आप देखते हैं कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं किसी की मदद कर सकते हैं पुण्य का काम कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा
1: करते चलो सबका
0: इसी भावगीत के साथ ही भावगीतों पर आधारित प्रोग्राम नई सोच यहीं पर समाप्त होता है अगला प्रोग्राम होगा नई सोच ठीक 7 बजे इसी चैनल पर स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड टू आरएम फ्री एमबीसी रेडियो मनोरंजन

94.5 से 90.2 MHz पर ये है आप ही लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल जी हां ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का ये म्यूजिकल इंटरटेनिंग चैनल है और बेशक इस समय रात के 7:02 हो रहे हैं और अभी से लेकर रात के 9 तक हम लाए हैं म्यूजिकल प्रोग्राम यो मस्त इवनिंग शो जी हां दिलों की आवाज फोन कर सकते हैं 4028070 पर और आज टिकटॉक पे जितना ठीक नहीं है आई एम रियली सॉरी सो वी कांट मीट ऑन टिकटॉक पर टिकटॉक पर मिलेंगे रात के 9 से 11 बजे दैट्स अ प्रॉमिस ऑन रेडियो मॉरिशस पेज ऑलराइट देयर सो अभी आप फोन कर सकते हैं 4028070 पर या फिर एसएमएस भेज सकते हैं 7500 पर ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी मोक्ष जी हाँ जान लेवा जी हाँ यह गाना हम चलाएंगे इंदिरा लोटन के नाम आप रहती है मीबर्ग फिर युधीश शिवधारी मोहताबा से है ईश्वर सुबन यह गीत आपके नाम आपकी पत्नी आपकी बेटी बहू बेटी दामाद और सब सुबन परिवार के नाम रंभा स्विट्जरलैंड से है उनके पति और उनकी तीन बेटियों के नाम और नोवेल फॉन्स है दादी प्रभावती लोल बहुत प्यार से हमें सुन रही है सो हो जाए गाना जान लेवा सो आज की रात सम फॉर्स टैपिंग म्यूजिक जी हाँ कुछ धमाकेदार म्यूजिक पर ढेरे गीत हम लाए तो हो जाए सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में फिर मोक्ष का गाना ये गाना चला रही है रेडियो मनोरंजन के सभी दोस्तों के नाम द गोल्डन वॉइसेस ऑफ कविता कृष्णमूर्ति एंड सुखविंदर सिंह जान लेवा

दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और एम्प्री रेडियो मनोरंजन पर जी हाँ और हमारा प्रसारण चाहे 94.96 98.2 MHz अगर आप ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो क्लिक करें www.mbcradio.tv फिर क्लिक करें लिसन और एम्प्री रेडियो मनोरंजन। चलते चलते हम बता दें आपको कि आजकल म्यूज़िक और वोकल म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंटल कोर्स महात्मा गांधी संस्थान आयोजन कर रहा है और ये कोर्स स्कूल के बाद दिए जाएंगे, स्कूल आवर्स के बाद फ्रांस बाइजराज होदे और प्लान और नोबेल फ्रांस एसएसएस में। सो जो लोग इच्छुक है म्यूज़िक सीखने के लिए, वोकल म्यूज़िक एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, आप MGI के ऑनलाइन वेबसाइट पर जा सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। And let me remind you, the closing date is 3rd July 2026. So, na umr ki seema hai, beshak ab chahe aapka umr chahe jaisa bhi kyun na ho, agar aap music mein dilchaspi rakhte hai, you like vocal music, instrumental music, aur aap course karna chahte hai MGI, it is offered by MGI. So, aap MGI ki website par jaye, online apply kare, aur aapko bata de ki yeh jo courses hai, dopahar baad mein honge, after 2:30 PM, 3:30 PM se lekar 5:30 PM तक ये कोर्स दिए जाएंगे फ्रांस बाइजराज होदे प्लान मायो में और नोबेल फ्रांस एसएसएस में। तो जब गीत संगीत की बात करें तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं नेक्स्ट गाना। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, कहता है मेरा दिल पिया, दिल क्या कहता है जी बहुत ही क्लासिकल म्यूजिक पर ढला है ये, कहता है मेरा ये दिल पिया तू जो नहीं मैं नहीं। और बेशक यह जो गीत हम चला रहे बहुत बहुत प्यार के साथ वीना कुपुसामी के नाम आप रहती है मेबग फिर, और यही गाना उनके पूरे परिवार के लिए। सुरमा दुखित जी वहीं से है, उनके पूरे परिवार के लिए विश्वानी बाबूलाल लागोजा से, उनके हबी और उनके बच्चों के नाम मिस्टर आदित्य चाटुआ जी बहुत प्यार से मैं सुन रहे हैं ये गीत उनकी पत्नी और उनके बच्चों के नाम और सब चाटुआ परिवार के लिए। चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यार सा गाना फ्रॉम द मूवी जीन्स। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस ऐश्वर्या राय पर। एंजॉय दिस गाना।

04 0207 0 पर फोन कर सकते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन की लाइन खुली हुई है और एक से एक अच्छे गाने हम लाएंगे फर्स्ट म्यूजिक जी हाँ टैपिंग पैपी हैप्पी सॉन्ग्स अगला गाना जरा जरा बहकता है ये दिल किसके नाम से बहकता है एक साथ सुनेंगे जी हाँ ये गीत आप सुनेंगे बॉम्बे जयश्री की आवाज़ में रहना है तेरे दिल में फिल्म से लिया गया गाना और ये गाना हम चलाएंगे स्वीट एंड लवली आयशा के नाम आयशा है गॉम्बे से हाय आयशा ये गाना आपके नाम और आपकी बेस्ट फ्रेंड सुमीला के नाम और ये गीत हम चलाएंगे प्रताप और हिरीश के नाम ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और बेशक एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं ये गाना हम चलाएंगे संगीता अमीरन की ओर से आप रेतिया लागोजा ये गीत उनकी मामा उनके भाई दान आजी बहन हेमा रिश्मा वंशिका रक्षिता और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम तो चलिए साथ सुनते हैं ये गाना

ये बॉम्बे जयश्री की आवाज थी, जरा जरा महकता है, बहुत ही प्यारा सा गाना, होप यू एंजॉय इट। और अब एक फोन कॉल हम लेंगे और देखते हैं कौन से हमारे श्रोता जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस यस, 4028070 फोन कीजिए, लाइन खुली हुई है। देखिए, जब गीत बजता है आप फोन करते हैं तो हम गीत काट कर आपका फोन कॉल नहीं ले सकते, जब गीत समाप्त होने को आता है तो आप लोग फोन काट देते हैं, तो कैसे बात करेंगे आप हमें बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप फोन करें जब गीत समाप्त होने वाला हो, तब आप फोन करें, तब हम आपका फोन ले सकते हैं। अब गीत बज रहा होता है, आप बीच में फोन करते हैं तो हम गीत काट करते फोन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से लोग इस गीत को पूरा सुनना चाहते हैं। सो वी कॉन्ट डू दैट, आई एम रियली सॉरी, पर आपको भी डिसिप्लिन का पालन करना है। हर काम में एक डिसिप्लिन होता है, एक प्रिंसिपल होता है, जैसे एक फ्रेंडशिप कहते होता है, तो हम भी उस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अभी म्यूजिक चल रहा है, अभी आप फोन कर सकते हैं 4028070 पर, हम आपके फोन कॉल लेंगे जरूर। अगला गाना, जिया जले नैनो तले रात भर जिया जले, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, जिया जले। और यह गीत हम चलाएंगे रीता

0: किल्सन की दोस्तों के नाम ब्रह्मा माया मिसेस द्वाकर मिसेस देविका के नाम। ओके तो चलिए अब हम फोन लेंगे क्योंकि अभी हेलो जी
1: नमस्ते भाई साहब।
0: नंदा जी आपने फोन क्यों काट दिया?
1: नहीं अभी कर दिया हमें
0: क्योंकि बीच गाने के बीच में तो हम फोन नहीं ले सकते, गाना समाप्त होगा तब ना लेंगे। हाँ ओके बोलिए नंदा जी अभी आप ऑन एयर है।
1: अच्छा
0: आप थोड़ा सा गा दीजिए। जिया जले जिया जले
1: नो
0: नैनो तले
1: एंसोंटे मुझे मोड़े भाई साहब सुना ऐसा दो हीरा पन्ना की।
0: हीरा पन्ना का कौन सा गाना? आपको ये पसंद है?
1: हाँ बहुत।
0: हीरा पन्ना आपने फिल्म देखी है?
1: हाँ
0: ओके और कैसी लगी ये फिल्म आपको?
1: बहुत बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छा
1: पुराना गीत बहुत अच्छा है भाई साहब।
0: पन्ना की तमन्ना है ना?
1: हाँ पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए राजस्थाना।
0: तो चलाएंगे जरूर। ओके ओके जी
1: आले बाय बाय
0: ओके बाय बाय। गीत चलाएंगे थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी जो गीत हमने कहा वो गीत आ गया जिया जले जिया फिल्म दिल से का गाना है। और गीत चलाने से पहले आपको बता दें कि जितने भी लोग फीफा वर्ल्ड कप 2026 फॉलो कर रहे हैं सो अभी दो मैच होने वाले हैं, एक है बेल्जियम और सेनेगल और दूसरा अमेरिका और बोस्निया हर्जेगोविना। जी हाँ ये दो मैच अभी चलेंगे और देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप फीफा 2026 में किस देश की जीत होगी, है कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट ऑल द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप फीफा 2026। आपको याद दिला दें कि दो मैच होने वाले हैं, एक बेल्जियम अगेंस्ट वर्सेस सेनेगल एंड दूसरा अमेरिका वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना। चलिए सुनते हैं ये गाना जिया जले नैनो तले रात भर जिया जले। ये गीत रेहाना जी के नाम हम चलाएंगे। आप फिनिक्स से है बैन साइदा जलीला और सब हासिन अली परिवार के नाम।

0: चाहे मेरी
1: पन्ना की तमन्ना है जी हाँ और इस समय रात के सारे साल बज रहे Now we are live on TikTok or in free radio Manoranjan. आप हमें देख पाएंगे अभी से रात के 9 बजे तक. So welcome. आप TikTok पेज पर भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं या फिर 4028070 पर भी.

आपकी 7:35 हो रही है और हमें जानकर खुशी रहें कि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए टिकटॉक पेज पर और रेडियो मनोरंजन और साथ में रेडियो पर भी हमें सुन रहे हैं। हमें सुनने और देखने के लिए शुक्रिया। और अगला गीत हरीश नारायण के नाम मिडलैंड से है, एंजॉय करें गीतों को, हम कहेंगे कहो न कहो। जी हाँ, मर्डर फिल्म गाना स्पेशली आपके नाम और यही गीत हम चलाएंगे। ये गीत हम चलाएंगे ऑलराइट लीना के नाम, हेलो लीना। एंड यही गाना देवयानी के नाम, फिर दानी जगहूर गुडलैंड से है, हेलो जी। फिया भी हमारा साथ दे रही है, रिश्मा है, मानसी है, सुमन बालदाचिनो, इंदू जी है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवी भी है, हमें देख रही है और सुन रही है। सो चलिए, टिकटॉक पर हमें देखने के लिए शुक्रिया और रेडियो पर सुनने के लिए भी। और चलिए सुनते हैं गाना कहो ना कहो, फिल्म का नाम है मर्डर और यही गाना हम चलाएंगे केविन के नाम और दीक्षा के लिए भी।

दोस्तों जब गीत मांगते हैं तो बारी बारी से गीत चलाते हैं। अब एक बार सभी लोग गीत मांगना चाहते हैं ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक गीत चलता है। राइट, सो ट्राई टू बी पेशेंट। अगला गीत, गुनगुना रहे है भौरे खेल रही है गरी गरी। ये गीत बबीता बापू के नाम, आप शामुनी से है ये गीत आप मांग रहे हैं, आपके पतिराज बेटी कृष्णी और सब बापू परिवार के लिए। और यही प्यारा सा गाना जो है हम चलाएंगे नदीम के नाम, फिर मिमी हमारे साथ, एंडी रामसामी, लवना, ये गीत आपकी मामा आशा, आशा फकीर और पिचाफे और बहन प्रीति पैसान, सब पैसान परिवार को गुप से, जेरेमी व बिचेरी, ये गीत आपके नाम, प्रिया गुरवी, सेफोरा दिस गाना फॉर यू, अनिल राजन कुजन, ये गीत आपके नाम हम करेंगे, स्वीटी गाना आपके नाम भी, राजनी राजनी महाबेर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और चलिए एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, गुनगुना रहे हैं भंवर घिर रही है।

साथिया तूने क्या किया जी, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी लव। रेवती और सलमान खान इस फिल्म में नजर आए थे, आपको याद है ये मूवी? दैट वाज ए वंडरफुल मूवी, है कि नहीं? और यहाँ पर हम हैं आप लोगों का साथ दे रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर, अभी रात के 11 बजे तक आपका साथ देंगे। अगला गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। श्रीदेवी का जन्मदिन है आज, आप इटली में हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू श्रीदेवी, बधाई और प्यार है आपकी बहन बबीता और आपकी सभी सहेलियाँ, आपके दोस्त और परिवार। और यही गाना खासम खास हम चलेंगे विद्यानंद सेचन के नाम। वीरानन जी है हमारे साथ, हेलो वीरानन, यह गीत आपके नाम भी जाता है। ओमी कहती है हेलो मामू कैसे हो, मैं ठीक हूँ ओमी, आप कैसे? ओमी सो नेक्स्ट गाना फॉर यू। स्वीटी जान यह गीत आपके नाम जाएगा। अनिशा राम टोहर, कतिबा मंगर, फिया, विनय, प्रेमा, लीना और यश फ्रॉम इंग्लैंड, संजय बुधवा, ये गीत आपके नाम भी जाएगा। वाणी भी हमारा साथ दे रही है। हेमा दीपचंद, यह गीत आपके नाम। जॉयसलिन नामी, यह गीत आपके नाम भी हम चला रहे हैं। और जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ, यह गीत आपके नाम जाता है। एंड मेधा रामचंद और किस्तो जी, फिर निशा भी हमारे साथ है। हाय निशा, ये गाना आपके नाम भी, जब कोई बात बिगड़ जाए।

दिलों की आवाज़ रात के 8 बज के 7 मिनट हो रही है और घंटा है यहाँ पर दिलों की आवाज़ प्रोग्राम खून भरी मांग का गाना चलेगा यस रानी जॉयसूरी यह गीत आपके नाम जाएगा यस यू हैव ऑल्सो सॉन्ग फ्रॉम द मूवी खून भरी मांग सो यह गीत हम आपके नाम कर रहे हैं ऑलराइट रानी जॉयसूरी जी आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग बबीता नेमन यह गीत आपके नाम एंड ये गीत सतीश सोहोई के नाम भी मंजुलिका हेलो ये गीत आपके नाम भी हम करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ बबीता नेमन इंदु इंदिरा और ललिता भी हमारा साथ दे रही है दीपेश तमंग भी हैं गीता महाराज साधना विरुद्ध दीप और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम को पसंद करें एंजॉय करें सबको बता दें कि हमारा आपका साथ रहेगा रात के 11 बजे तक दिलों की आवाज़ विल बी एंडिंग अराउंड 9 PM और 9 PM से रात के 11 बजे तक होगा भोजपुरी तड़का ऑलराइट और ये गीत बीबी रुखसाना मूद यह गीत आपके नाम रुकैया सुधु यह गीत आपके नाम ही जीने के बहाने लाखों हैं और बेशक जीने के बहाने बहुत है बस आपको जीना चाहिए होरीलाल दिनू हमारे दोस्त हैं मोहतावा से कैसे भाई जी सब ठीक ठाक सो होरीलाल दिनू गीत आपके नाम आपकी पत्नी आपके बेटे बहू आपके बच्चों और सब दिनू परिवार के नाम रुकैया सुदन गजी से है एंड रुकैया थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड फॉलोइंग मी ऑन टिकटॉक पेज स्वीट स्वीट रुकैया सुदन के नाम यह प्यारा सा गाना गजी से आप है और सिया है जमीला है और फिया भी है हमारा साथ दे रही है चलिए साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना जीने के बहाने लाखों है जीना तुझको आया ही नहीं

रीता सीतालू की नाम रंभा माया मिसेस द्वारका देविका और उनके दो बेटों की ओर से रीता सीतालू के नाम ये गाना गेट वेल सून।

इसलिए हम कहते हैं कि कभी-कभी आपको अपना याद भी होना चाहिए, आप अपना भी ख्याल रखा कीजिए, जरा ब्यूटी पार्लर जाइए, अपने आप को सुंदर बनाइए ताकि लोग भी कहें वाह आप क्या लगती है, क्या दिखती है, कितनी खूबसूरत है आप। हर किसी हर कोई पसंद करता है ना जब कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, ए यूबियन सॉरी जो, हाँ क्या बात है। और अगला गाना, ऐ सागर की लहरो हम भी आते हैं तेरे, पूनम मजूदा इटली से है, हेलो पूनम। और यही गीत सलीमा के नाम, लक्ष्य कुसुम अनिता पैतोब, उनके जीजाजी रोशन चामुया, यह गीत आपके नाम भी हम करते हैं। और वीना फकीर भी हमारा साथ दे रही है, विशाल लक्ष्मण और विद्या हमारा साथ दे रही है, शबन मुखिया, मारीना बेगे भी हमारा साथ दे रही है, हाय मारीना। और नलिनी गीत मांग रही है मिस्टर राज के लिए, मणिप्रिया यह गीत आपके नाम भी। और रेशन चामुया बिज का आपसे, आप कहते हैं कि आप मुझे जानते हैं, ओके बट आई डोंट रिमेम्बर, यस वेस्ली आमोस कैसे है वेस्ली, सो नेक्स्ट गाना फॉर यू। और रानी जयसूरी यह गीत आपके नाम भी, ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं तेरो, सागर सागर साहिल साहिल, आगे क्या होता है चलिए एक साथ सुनते हैं।

जब इतने अच्छे अच्छे गीत चल रहे हो तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी आपके साथ झूम रहे गा रहे। सुनीता सितलू, नेक्स्ट गाना फॉर यू, एक मुलाकात, जो भी नौतियाल का गाना, जो भी नौतियाल का गाना। रविश मंजू के नाम आप मोहताबा से है, हेलो जी, गाना फॉर यू, फॉर योर मम्मी, फॉर योर पापा, भाई भाभी और सभी सभी मंजू परिवार के लिए। वेस्टले ऑलमोस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, हाय वेस्टले, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एस, एंड नेक्स्ट गाना फॉर यू, वेस्टले ऑलमोस्ट, बहुत बहुत प्यार।

के साथ परी भी हमारे साथ है उषा भी हेलो परी नुषा एंजॉय दिस लवली सॉन्ग्स ऑन ऑरम फ्री रेडियो मनोरंजन देवीना अभिलक या गीत आपके नाम कौशिक कुदीराम जी हेलो एंड विद्या भी हमारा साथ दे रही है हेलो विद्या एंड फिर तानिया भी हमारा साथ है सृष्टि भी हमारे साथ है शाकिल भी हमारे साथ है हेलो एंड नेक्स्ट गाना यस कुमार कुमार के नाम जी हाँ जो बहुत प्यार से हमें सुन रही है माम भी हमारा साथ दे रहे हैं हेलो किशन साहब कैसे किशन जी विकास नारायण हेलो चिबुग लोंग जी हाँ चिबुग है लोंग है राजा है प्रवीण भैरव है श्याम मंगल है और स्टीव भी हमारा साथ है स्टीव माना दिस गाना फॉर योर वाइफ फॉर योर किड्स एटवारी तीरू आप दुबई से है हेलो दुबई वालो लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड बेस्ट विशेज हैव ए वंडरफुल इवनिंग एंड ये गाना आपके नाम बहुत प्यारा सा गीत एक मुलाकात रविश मंडू की मांग पर ये गीत हम चला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए

कभी-कभी एक मुलाकात में हम एक ऐसे इंसान को पा जाते हैं जिससे जिंदगी खूबसूरत हो जाती है यू नो यस एंड रविश बहुत खुश हैं कि उसका गाना चला ए रविश सो स्वीट ऑफ यू एंड रविश अक्सर हमारा साथ देते रहते हैं और उन्हें गीत संगीत बहुत पसंद है एंड कीप इट अप रविश यू नो म्यूजिक इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल यू नो व्हेन यू आर स्ट्रेस जब आप स्ट्रेस में हैं चिंता है तो बस एक म्यूजिक सुन लीजिए या गा लीजिए मैं जब स्ट्रेस में होता तो मैं गीत गाता हूँ यस आई टेल यू द ट्रूथ व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस आई जस्ट सिंग अ सॉन्ग एंड आई एम अ गुड सिंगर आई कैन से एंड आई लव म्यूजिक यू नो रग रग में मेरा म्यूजिक है आई जस्ट एन्जॉय म्यूजिक म्यूजिक इज़ माई पैशन म्यूजिक फॉर मी म्यूजिक इज़ लव लव इज़ म्यूजिक अगला गाना इस प्यार को क्या नाम दूँ बहुत ही प्यारा सा गाना ये गीत मेरे होश की रजनी की ओर से उनके पूरे परिवार के लिए और यही गाना कविता दुलीप के नाम ममता मंदू जी ये गीत आपके नाम भी राधिका बायरो प्रिया जी श्रेष्ठा की ओर से गीत चलेगा उनकी बेटी द्विशा और सब रामधन परिवार जो वाकवा के रहने वाले हैं जीनत ये जीनत इज सेलिंग मी Do you remember me, teacher? Teacher, teacher. Do you remember me? I do remember you, Zinat. So, Zinat, aajkal university mein padhai kar rahi hai. Hi, Vedita. This gana will be for you. Aur ek message aa raha hai. Zara dekhte hai. Samira. Hi, Samira. Hi, Anusha. Hi, Kavita Dalip. Chaliye ek saath sunte hi gana. Is pyar ko kya naam doon?

ओ मेरे ख्वाबों के शहजादे ये ऐसे से गीत के साथ ही फ्रॉम द मूवी मेरी जंग दिलों की आवाज़ यहीं पर समाप्त होता है बट द शो गोज ऑन ठीक 9 बजे होगा अगला प्रोग्राम भोजपुरी तरह का आई बी लाइव ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस और हम होंगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिए रुपये साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सो मिलते हैं 9 बजे ऑन टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस स्टे ट्यून सुनते रहिए प्यार से एमबीसी रेडियो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया फ़ोन किया एसएमएस किया शुक्रिया

सब संगत यालोक के स्वीकार कर चाहो जी प्रताप सिंह के प्यार भरा नमस्ते और सलाम यह था मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलिए अभी से लेके रात के 11 बजे ली थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुन के नंबर वा घुमैया का जवाब देवी जवाबित संग या फिर रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सकब गीत मांगे तो याद रखिए प्रोग्राम भोजपुरी की और भोजपुरी के गीत चलिए अभी से रात के 11 बजे ली तो सबको स्वागत बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में

0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमक धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: रात की 9:00 के 5 मिनट हुआ था। रमनी के साथ देखा थे, बहुत बहुत धन्यवाद। रमनी के टिकटॉक पेज पर फॉलो करा था रेडियो मॉरिशस के सबको के स्वागत बा। और एकदम चकाचक प्रोग्राम चली और बेशक तो रमन करता को नवी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमाया का जगह देवे जगह बीच सैंक या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर हमने के सक बजाय SMS करे। अगला गीत ओरी मामा बिस्वानी दीपा गीत आगे देवो ने गीत निशि ललित खतीर पिरतम लोटू पूनम गोपाल रेशमी बंधु अंचना शैलेंद्र सुबी प्रमोद रॉबर्ट विमी कविता और सब संगतियालो खातिर गीत चली। साथ में संगीता बिक हमने के साथ देवतन वीर बुधु रेशमी बंधु रॉबर्ट बतन कैसे भैया कैसे भैयो अच्छा हो ना तो रॉबर्ट भाई बड़ा जो नाचता हमने के संगे नाचा रॉबर्ट भैया है गीत वहाँ पर।

चलो जाने दे सामने की देश में जंगली बिल्ली लोग बा वो जंगली बिल्ली गांव वासे बगल बा जब गांव वासे जेबा तो देखिया कबो कबो जंगली बिल्ली बड़ा बड़ा बिल्ली रह रहे हैं करिया करिया हुआ सा वो लोग गांव वासे में जब पनिया में मच्छी लोग बोर में आवेला तो हो जो बिल्ली रह रहा वो मच्छा के पकड़ के दबोच के वो खा ले वेला कबो दिख रहा हुआ बड़ा बड़ा बिल्ली है हाँ एक जंगली बिल्ली बोला सा और जब गांव वासे बगल जेबा तो एक प्लास के नंबर घोड़ा बाबा हाँ तो वहाँ पर एगो पत्ता देखे तब हम जाए रहा सर और जहाँ गाँव वासे बा तो जंगल ही जंगल बा और होने गोयाव देसिन खूब मिलेगा तरह तरह के गोयाव देसिन पक्कल पक्कल अब सब गोयाव देसिन आन के ऊपर कॉम्पोट बना दे या गोयाव देसिन की नमक भी माँ संगे सकब सखार गाँव वासे जो पवित्र जगह है बड़ी जोरी जगह टूरिस्ट लोग भी आवे रहे तो लोग जान से लेते करे गाँव वासे हैं गंगा तालाब परी तालाब बोले रहें सर और दुनिया भर से लोग जब मॉरिशस आवे रहे तो गाँव वासे जरूर जान सर एक तो एगो जगह है जहाँ पूजा पाठ होला और दूसर ई एगो एगो टूरिस्ट की जगह भी है कहीं टूरिस्ट लोग भी आवे रहे देखिए कैसे हमने यहाँ पर पूजा करी रहा सर और महाशिवरात्रि रह रहा था गाँव वासे में पूजा पर हम देख रहे हैं कैसे हाउ जन हो बिल्ली वाकम दिशा ऑब्जर्विंग कर रही तीन चार गो बिल्ली एकाएक जालन सा और छटके रन सा घोंची पर से और वो लोग जाके हो गाँव वासेवा में जो मच्छी लोग बोर बोर में बा तो मच्छर के जान सब पकड़ी और शायद ढेर को नहीं जाना तो गाँव वासे में ढेर माना ओंगी और मच्छी बा और एगो ओंगी के नाम बा ओंगी सेंदू हाउ ओंगी तो बड़का ओंगी और मुड़ी में इसे बुझा सिंदूर डाल बा खूब मोटा सा नवा पर कोई की हानि नहीं पहुँचावे है हम उतना हालात करें खवा से घूमें पूजा पाठ करें पर बोले रन से ढेर कोई दरे रन से ये ओंगी वासे एक और नंबर ओंगी सेंदू बाप रे बाप तो चला भी सुनब जा एगो प्यारा संगीत दूल्हा शादी करा दूल्हा शादी करे जाला बसंत सुपोल गीत गे रहे गीत वंदना खाते चलावती हाय वंदना अरविना है गीतोरों खातिर फिर गणेश वरुण उनके साथ देवतवन हेलो रिद्वेश है गीतोर खातिर अंजू भी उनके साथ देवतवन और गीत तेज सनातन खातिर मनीषा चामी सिंह कैसे बस समाचार गीतोहर नाम दिनेश हरि मेधा रामचंद रीता के नाम रीता सीतालू तोहर बेटा शैलेश शैलेन तोहर दुगो पत्यो तोहर चीजों पर सब सीतालू परिवार के नाम राविश मंडू है गीतोरों खातिर तोहर बाप तोहर माँ तोहर भाई तोहर भौजी और सब तोहर परिवार सब मंडू परिवार के नाम और है गीतवा चरी रिवेश दत्तू हाँ रिद्वेश कैसी बा हाँ रिद्वेश दत्तू जो उनजाला कॉलेज सैंतोमा एस एस एस ग्रेड सेवन रेड के रेखा है ए तो ऐसा मान ऐसा जोड़ी रेखा और ऐसा प्यार से पढ़े रहा ऐसा जोड़ी गजिलता आने रहा लेखा बो मानिए है सबके बोला रिवेश दत्तू एंड बो गौसों सब प्रोफेसर लोग प्रशंसा करे रहा और ये सेवन रेड के रेखा है सैंतोमा एस एस एस जाला जहाँ पर हम काम करे सर कॉलेज में और लेखा जो निमन से पढ़े रहा और हमेशा सब कोई के नमस्ते बोले रहा तो रिद्वेश दत्तू है गीत तोहर खातिर तोहर सब संगतिया खातिर जो ग्रेड सेवन रेड में होन सन जान सर सैंतोमा एस एस एस कॉलेज विद्या भी उनके साथ देते हैं हाय सोनिया सैमुअल सैमुअल भाई है गीत तोहरों खातिर रॉबर्ट की ओर से माया के लिए और नरवीश भाई है गीत तोहरों नाम मिकाएल भुलात है गीतवा तोहरों नाम चाल सर दूल्हा शादी करे जरा अब कहाँ जाता दूल्हा शादी करे चले एक साथ सुने

रात के 9:20 हुआ था और ढेर को बोला था बड़ी ठंडा करता तो ठंडा नहीं करता कौन सी करी भैया ठंडा के मौसम है इसे। और देखिए ऐसे चिड़े लोग कैसे काम करते तिनका तिनका वो लोग अपन घर अपन घोंसला बनावेला पिची ता पिची लुआजो पेसोनी तो ऐसे ही हम जो इंसान थोड़ा थोड़ा से बड़ा बनाएगा सर छोटा छोटा आदमी से तब ना बड़ा आदमी बनबा छोटा छोटा से रमास रमास के छोटा छोटा चीज तब ना बड़ा घर बनेबा तो चिड़ाई लोग से हमने के जरा सीखे के कैसे एक गो भय वो लोग आन आन के घोंची में डाल के अपन खोता बनावेलन सर खोता में अंडा देवेलन सर बच्चा देवेलन सर इंसान के बीच है ना थोड़ा थोड़ा से सबूरी करे के तब एक दिन जाके वो लोग लगे कुछ रही हों कि नहीं। और फूमी चींटी चींटी कैसे छोटा छोटा छोटा सन चीनी छोटा सन नीमक छोटा सन आटा लेके अपन कपार में ढो के ले जाके रखे रहें सर तब जाके आराम करें सर वैसे ही इंसान के भी चेहरा ये सबसे सीखे कि थोड़ा थोड़ा से बड़ा होला। और अभी एक संग अच्छा लाइन पे कॉल से मिलब जा और देखा सर का बोला था हाँ चाहिए हमने खुशी रही ना टेलीफोन करके टेलीफोन काट दे बोला सर छा तान करेंगे अब ऐसे कर बस कैसे बोला था तो बड़ा आदमी जब ऐसे करे तो लड़का लोग का सीखे आंसर गीतवा भी फिनी उगल बा तो अब ले अब से ना अरे बाप ने गीतवा नहीं ले होता नहीं सुनी करा जाता पर यहाँ पर टिकटॉक पर ढेर कोई बा रिवेश दत्तू बड़ा जोर नाचता रजनी रखतुआ शालिनी हिरू है गीत तो हरपति विशाल फिर तो हर दुगो बेटी और सब हिरू परिवार आप लोग वहाँ से एम जी एस हेलो नमस्ते रजनी रखतुआ सायरा दाहू है गीत हर खातिर केलान व्यासामी वो भी हमने के साथ देवा थवन रजनी रखतुआ उमेश कृपा वशिष रामजिया काव्या इशिका और केवा संजू वो लोग भी हमने के साथ देवा था तो चला एक साथ सुने बाजे पायला खुशी रा देवी प्रतिमा रिसोर्गी गावल गीत

0: संगचा लोग हमने के आंगन में ढेर को के आंगन में तुलसी के घौची बा ता तुलसी जुन है ओके अपनी माँ के रूप में पूजा करी रहा सा तुलसी के पत्ता के आयुर्वेद में को इस्तेमाल होला तुलसी के पत्ता से दवाई भी बने रहा हो कि नहीं ता तुलसी जुन है आयुर्वेद और आयुर्वेद में इस्तेमाल होला और तुलसी जुन है ओकर पूजा भी होला और सर्दी खांसी और गले की खराश के दूर कर दिखाते तुलसी के पत्ता के काजे करके कुए दिल से चाट ले बा तो सर्दी खांसी सब तो दूर चल जाए और जब तक खाए के जिस जगह नहीं हो तो तुलसी के पत्ता खाई बा तो खाए के जिस जगह हो जाए तो और गाँस सब ठीक हो जाए ढेर को जब तनाव में रहेला तो लोग तुलसी के पत्ता खा लें से तनाव दूर रहेला और है तुलसी जो है सकबा मुँह में चबाए चार पाँच को पत्ता कैसे तो लासौते अच्छा रही और बेशक जैसे हमने बोली सा कि तुलसी जो है तुलसी के पत्ता कैसे पूजा होला एक कैसे दवाई भी बनेला और जो तुलसी के पत्ता है अगर तो लगे तुलसी की घोंची रही तो घोंचा अच्छा रोज के आगोजे करके आगोजे कर घोंचा बड़ा हो अगर में पत्ता मिली तो पत्ता के सकबा इस्तेमाल करे तो हमेशा याद रखिए तुलसी के ढेर पौष्टिक तत्व बा साथ में होकर पूजा भी होला तो अगला गीत जलसा बा हाँ जलसा तो हो भी करी नाचब सर चला नाचे गावे अंजू के संगे जलसा बा है कि तो हमने चलावा थे सर खासम खास सुनीता के नाम रिकी सुमन वरुण और ऋत्वेश और साथ में है कि तो हमने चलावा थे सर अनिल लोचन के नाम टेडी भी हमने के साथ होता हाय टेडी फिर माधव प्रतिमा है कि तो और कहते प्रीति केलान हेलो है गीत हो नाम सायरा दाहू गबूदन कल्याणी गेंदा है गीत हो नाम नसीन मोहिदी वर्षा और है गीत हमने चलाओ खासम खास नंदू ननकू जुन गाजिस में बा ओके गाजिस सेंट में एसएसएस के लेगा ननकू जुन है बहुत प्यार से हमने के दिखत हवन त ननकू है गीत हो नाम जलसा बा चलो जलसा करे
1: Ladies and gentlemen, namaskar, good boy.

खरगोश ना बड़ा जोर ढोगेरा और उस सोचेरा कि कोई कसी नहीं सके जीते। तो एक दिन खरगोश जोर जोर से हंसे लगल और बोला था कि वो विश्वास बा कि वो सब कोई के सकी हरा दे। तो एक दिन वो खरगोश संगे प्रयास दलक नहीं खरगोश कछुआ संगे कछुआ जन की तोची प्रयास दलक कि एगो रेस करियन सा दिखा सक के को में फोमिया आए। तो कछुआ जो जो नहीं जो क्यों नंबर जोन खरगोश है तो ई मोड़ के देखलक और सोचता कि कछुआ वो तो गते गते आई। तो का बता कछुआ वो तो देरी से आई तो ओची तो गते गते आवेला हम जाके सूझ जाएला थोड़ा सुन। तो ई का करलक जोन है जोन लेब है ई जाके सूझ गल और कछुआ बिना रुके धीरे धीरे धीरे धीरे ऐते ऐते वो दिपासे कर देलक खरगोश के और वो रेस में जाके फोमिया निकल गर। तो ये सोचा था यहाँ पर ये सोचा था कि है तो ओची कौन ची करी तो ओची रेखा गते गते आवा था और सुतल बाप पर ओके। बाद में एहसास होला कि जब ढेर घमन करब तो नाक के पर गिरबा और नाक पर गिरबा तो घमन टूट जाला और ये रेस में कछुआ के जीत होला और है जो नेब होला उस शरम में पड़ जाला कह के ओके बहुत घमन रहा अपन पर कि उधेर तेज सकेला धोगे अपन घमन के कारण है जो नेब है जो खरगोश है उस शरम में पड़ गए। तो कहानी की सीख कौन चीज है कि अगर तोहर पास कोनो भी क्वालिटी बा तो ढेर घमन नहीं करिए कहे कि ढेर घमन करब तो कभी घमन टूट जाला। तो जो फाबदुल्ला फोतैन है ये जरूर पढ़िए जाकर हिंदी अनुवाद भी बा इंटरनेट पर भोजपुरी अनुवाद भी बा और धेच अगर मैं थोड़ा मिली सीखे के। अगला गीत राधेन राम साहब की आवल गीत है रुगारू है गीत चलावत इस हरि के नाम लविन्या है गीत और खातिर सुधा सिजन है गीत और खातिर साबिरून वंदना अनुष्का राना मदन लवना विमला विशि जान जान परमेश और पेरिन फिर ऋषि इंद्रानी रामपर शिवांश जितेश नंदिनी विदेश और वेस्ली ऑमोस भी उनके संगे संगे नाचा था बहुत खूब वेस्ली ऑमोस प्रमोद कुमार भी और साई राम भी। तो चले एक साथ सुने लुगारू की कहानी।

राम सीता की कहानी तो सब कोई जाने रहा कि राम सीता संग शादी करलक और जब शादी करलक तो राम सीता लक्ष्मण के पर 14 वर्ष के वनवास जाए के और वनवास में तो बड़का युद्ध होइल कर काहे कि रावण जन सीता के हरण की दापी करके चल गए तो जटायु कर में मारल गए जटायु कर

सीता के बचाए थे रावण जटायु के कृपों काटे लक और बेचारे जटायु मर गए। फिर सुग्रीव बाली सब राम भगवान चामवन सब राम भगवान की मदद करेला हनुमान राम भगवान की मदद किया जाकर सीता के लंका से आने के महायुद्ध होला और राम रावण के वध करेला। और फिर जब राम सीता के लेके आवेला महल में तो सीता के दुगो लड़का होला ओकर लड़का लोग के नाम रहेला लव कुश। तो लव कुश राम सीता के दुगो लड़का रहेलन सर। और ये रामायण के अंत ऐसे होला कि धरती माँ फट जला और माँ सीता धरती में समा जला और लव कुश अपन पिता राम भगवान के लगे रहेलन सर। तो अब सुनम सा एगो गीत माचू गए चौ थारी है गीत खासकर वेस्ट ले मॉस का तेरू बोलन सर भोजपुरी बढ़िया खुशी रहेला। और एंतम से हर काम करता हर बोलता कुल एफ एम में टेलीविजन में भी तो वेस्ट मॉस है गीत खासकर तौर खातिर चौथारी माचे के सुबानी।

0: Continuous music. RM3.
1: 7 days a week. 24 hours a day.
2: Live.
1: This is Radio Marxis.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

दुनिया में तनाव ही तनाव बा स्ट्रेस ही स्ट्रेस बा जहां भी दिख बा स्ट्रेस अभी देख रहे सब वेनेजुएला में कैसे धरती कांपल और कितना कोई की मृत्यु बहुत ही सा कातो सौ जीवन से भी ज्यादा लोग की मृत्यु हो गल बा उधर यूरोप में देखा था ऐसा है जो हीट वेव बा गर्म लहर बा था और गर्म से ढेर कोई की मृत्यु भी हुआ था तो चारों ओर दुनिया में हलचल मचल बा इस और ऐसा दुनिया में बहुत सारा ऐसा फिल्म देखे गए ताकि सब हंसी स्ट्रेस दूर करे और अभी को फिल्म निकल बा बॉलीवुड की दुनिया में वेलकम टू द जंगल कारो गीत चला जी फिल्म वहाँ के आइए को भोजपुरी गीत घिस घिस के चाहे नहाए के जन तोरा मौका मिली तो यूट्यूब पर जिया जा या सिनेमा घर में मौका मिलते जाके फिल्म वहाँ देखिए या यूट्यूब पर टापी करिए वेलकम टू द जंगल और टापी करिए घिस घिस सॉन्ग तब बतावे तो कैसे चेहरा गोर हाथ धोई के घिस घिस के घिस घिस के राहो राहो नहाए कि नहीं घिस घिस के तो चलो अभी हम लोग घिस घिस के गीता सुनब सर गीता गेले वन विक्रम मंत्रोज और सुप्रिया पाठक घिस घिस के और ये भोजपुरी गीत अनिल सा फिल्म फिल्म वेलकम टू द जंगल से और गीत खासम खासम चाहते हैं शास्त्री बुरे मालिक खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ शोभा हवन बकवा से अनिता लाल जी फिर अनिता अफ्री कॉम्फ्लैक्स से और कमला जी मोहताबाद से कर चीज़ों फो आरोही खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ सी सहाय कैसे बस सी सहाय परिवार जानकी सी सहाय स्वीट एंड लवली लवली जानकी सहाय खातिर जिन हमेशा उनके देख के प्रणाम करे रहा था प्रणाम जानकी सी सहाय गीत और खातिर घिस घिस के घिस घिस घिस के छलक साथ सुनब जा

रात के 10:19 मिनट हुआ था तुम किसने तो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रेडियो मॉरिशस जो है तो आएम पर चलेगा ओके आएम फ्रीक्वेंस बोलेगा सर 819 किलोहर्ट्ज पर और रेडियो मनोरंजन एफएम फ्रीक्वेंस पर है 94.6 मेगाहर्ट्ज पर एमबीसी के दो चैनल चलेगा आएम पर एगो है राजो मॉरिस यहाँ पर ऑक्सीडेंटल प्रोग्राम चलेगा और दूसर का है रेडियो मॉरिशस और सब हमने के दूसर राज्यों के चैनल जैसे कुल एफएम रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती सब एफएम मोड पे है तो बेशक कोनो भी मोड पर हो हमने के राज्यों बस 2400 घंटे सातों दिन हमने तो लोग खातिर अच्छा अच्छा प्रोग्राम चलाती रही रहा सर और अभी रात के 10:20 हुआ था तो लोग सुना था वो सब हमने बहुत प्यार से बहुत बहुत धन्यवाद हमने के साथ देख खातिर का जगह दे विद जगह विद सैंक पर सक बच्चा टेलीफोन करे और चला अगला गीत सुनब जा जलसा करे कि कृषि गीत वा गैले हवन बहुत बहुत प्यार के साथ और गीत हमने चला दूसरे मनु के नाम मनु के अरसों का सब परिवार के लिए और अश्विन बच्चन हवन गवेज पोसे सब बच्चन परिवार के नाम उदय धनी राम कर पत्नी कर बेटा पतु बेटी दामाद कर समझे जो नाफलवा रहेलन किशन गुड़िया पर

0: तोरो का तीर और हैगी तो अच्छा होती सर। प्रीतम राज्य मिला के नाम कर सब परिवार के लिए केशव बिला के गीत तोहरो नाम थोड़ा सब परिवार के नाम और फिर है गीत हमने चलाओ अब सर चाचा साइलेन की ओर से कर नेफ्यू माधव के नाम और माधव अपन चाचा से बहुत प्यार करेला और जब चाचा जाला तो अपन चाचा के खूब दुलार करेला बहुत लार दुलार करेला तो है गीत तोहरों खातिर अभी को संगत्या बलाइन पे चलो कर से मिलब जा लिखब जा की हवन जा जो हमने के सुने का तुरंत शोभा काटबोन से। हेलो शोभा, शोभा जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे समाचार?
1: ठीक है
0: सब ठीक बा? टिकटॉक पर हमने के देखला तोरा बहुत टिक टिक टिकटॉक पर रहेला थोड़ा सुन देखला कैसे बुझाल प्रोग्राम अच्छा चला था?
1: सब ठीक चला था।
0: हाँ और आज के दिन कैसे बिता शोभा? कौन गीत सुनबा? कौन गीत
1: संगतिया लोग बस सब खाती ना एनडीसी के टीम के लिए जितना लोग रात के काम करेला सबके है गीतवा डाल दे हा छोड़ के मोरिसवा
0: छोड़ के मोरिसवा और ओके हाँ जी जरूर
1: कल महीने से ना आपने बुला करेला करेला के अचार खाया है
0: करेला के बिंदाई करेला के बिंदाई बनेला हो
1: बिंदाई नहीं अचारो कर
0: अचार अचारो बनेला एक दिन डाल के
1: अन्या
0: एक पो डाल के अन्या मखातिर हम फाता से खाप आमे रही नहीं ना आमे रहे नहीं ना
1: खाके देखिए तब अपने बनाई
0: बन आले आले जब एक दिन बना के आन देबा तब हम बोला फा देखा शोभा हमने के इतना हमने की खुशी रहे हमने खातिर करेला के अचार आन देलक अरे बहुत धन्यवाद शोभा और को संगत वाला लाइन पर से बात कर जा। हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी नमस्ते प्रेमिला जी कैसी समाचार? हेलो प्रेमिला बात कर हेलो लासंते उतना नहीं छबा हाँ तो लास्ट में इससे नमाता जी जब लाजवा जैसे जैसे बढ़ ले जाता
2: बहुत पास गिले कालो संगे
0: आयो का करब
2: सुते होलन जा बड़ी
0: ए लड़का लोग हाँ ची बाबा लोग संगी ना थोड़ा बहुत हाँ लोग तो नहीं जाने ला और बोला था अगला गीत क्या खातिर
2: अगला गीत तो हम गीत डाल दिया उस दिन गीत नहीं मेरे सुनते सुनते
0: कौन सोते मांगने डाला आलो
2: हाँ फट गई ली
0: नहीं गीतवा कैसे शुरू होला फट गई नहीं बोलेगा साजन के देवल सारी फट गई ली ना
2: बहुत धन्यवाद
0: हम गाइला नाचीला गवाइला और नचाइला हम सब जान हम खाली गाइला नहीं हम गवाइला नाचीला और नचाइला
2: अभी बोला था डाले के है
0: साजन की देवल सारी बागी तो पूजन हम आए के गे लगबा गीत के गे लगबा गौरी बहार ब्रदर्स ओके ओके तो चला दे अब सर हाँ
2: हाँ परिवार के लिए भी वो परिवार बीमार हम उनकर के लिए ज्यादा बोलते हैं
0: तो गुजाफे के मौके का तो उनके सब बड़ा आदमी लोग बीमार होके चल चल जाता तो के मौके का ले हुआ तो के मौके का उनके सब बड़ा आदमी लोग चल जाता तो कोई नहीं रही एक दिन तब सब ऐसे अकेली पड़ जाप सा ना
2: हाँ
0: सब बड़ा आदमी आगे के कितना हो रहा ढेर कोई गीत मांगत हर जेकर कतहोवे जी से जहाँ कतहोवे जी से तो सब तो जाता कोई नहीं रहा परिवार में हाँ तो का कर दुनिया में चल पड़ी देख रहा कहूँ कहूँ पर धरती कैसे थौंबले होता है देख रहा वेनेजुएला में कहूँ सिक्लोन कहूँ थौंबले लेता हूँ जितना गर्म रहता है यूरोप में था गर्म से आदमी लोग मर रहा था हाँ तो जजे के परिवार में जब बड़ा आदमी नहीं रही तो के लेकर लोग सिखाई लेकिन जब बड़ा आदमी लोग रहेगा

0: बड़ आदमी लोग के बोई रहा सर लैका लोग के सिखाते रहे कि ना
1: जी हाँ बहुत सिखावेला सुनीला भी
0: हाँ ढेर चीज हमने
1: बोली ले बोली ले जाता
0: किसी तलवा बोली तुलसी के पत्ता के कर महत्व ढेर लैका लोग नहीं जाने रहा कोनो कोनो लैका के हम देख रहे हमार आंख के सामने प्रेमिला हमार आंख के सामने एगो एगो लैका के देख ली तुलसी के घोंचा के टूर टूर के ओके बिगा था मलिक फे तो कुपे था बोले की बुफे ले अब सा मरी ले अब सा हम लेकर पूजा होला बोले किसान आइन जा हम से बता किसान आइन जा मलिक से तो कर दादा दादी कोई नहीं बात कि ताकत आदि मन से तब से बता फिर पूजा हो सा मरी हाँ रे लेकर कर पूजा हो लेकर दवाई बन ला तब जाके हाँ तो लेकर ले जाना था कोई घरे नहीं बका साहब लेके काटा था कौन चीवा हाँ तो का कर तुलसी के पत्ता लेके खाई
1: नहीं भाग गया
0: अच्छा हाँ तुलसी के पत्ता के का दवाई सब बने ना आयुर्वेद है बाबा रामदेव के देखभा योगा सब तेरेज में बतावे रहा था तुलसी के ढेर मना दवाई बने ला है क्लिनिक में जे वो क्लिनिक बा लेस्काली में आयुर्वेद के तो वहाँ पर जेब सब आयुर्वेद के करेला के कर ओकरो से कर करेला के जूस से कर दवाई है कागोत के जी से है ये सब बनेला है ढेर ढेर ढेर चीज बनेला
1: हाँ महंगा बैठे
0: किन्बा खरीद बता हाँ तो पर लासांते छह देखे के ना प्रेमिला इनफैक्ट हो लासांते अच्छा रही कबो कबो पैसा कौन काम के तो लासांते चलता पैसा तब कौन काम की
1: स्वास्थ्य
0: अच्छा होता सुना पे सो आगा हाँ एकदम बोला स्वास्थ्य जिक्र अच्छा बा अरे प्रेमिला तुम से बात करके बहुत अच्छा लगा तो अर्गी चला दो अब थोड़ी घड़ी में ओके और एक संगत है राधा न्यू विल्फोंस हेलो राधा कैसे बा राधा जी नमस्ते सब ठीक चलता धीरे धीरे होले होले हाल चाल चलता पर बड़ी ठंड बड़ी हाँ
1: तुलसी तुलसी माँ के तारीफ करना देर कुछ हो गई
0: आली बोला तुलसी माँ के कौन गीत है
1: ना बस तुलसी माँ के तारीफ कर ला
0: हाँ
1: हम आप जय पूजा करी रहा बड़ी तम अगर कानम तब जाएगा जब
0: तुलसी माँ के कागम भी रखा जाला कौन कौन दिन है वो
1: नाम ना तुलसी माँ के गीत नहीं बोला थे हम थोड़ा हम बोला था यकी है तुलसी माँ के तारीफ कर ला
0: हाँ हाँ हाँ
1: तुलसी माँ के तारीफ कर ला हम देर कुछ हो गई नहीं और कि हम अगर तुलसी विवाह करी रहा हम
0: ओके ओके एकादशी के तुलसी काम रहल जला
1: हाँ रहल जला एकादशी तब भी हम फिर आशा कर देने तब काम उतना शिवाला वो नहीं जा रहे तब घरे हर बड़ी तो के बुला देने हम पूजा करी ला कर तुलसी विवाह करी ला
0: तोहर लगे तोहर द्वारी में तुलसी के गांची बा
1: आप बाकी हमारे लगे तुलसी लौकी रास्ता सुखा जला
0: आयो काहे ते से सुखा जला काजनी
1: हाँ
0: धतुरा के हम जानी ना धतुरा
1: कोई खुबा
0: हाँ धतुरा शिव जी के पसंद बा ना
1: हाँ ढेर बाबू हमार खातिर एगो गीत डाल दिया हमार सब बहन खातिर जितना हमार भाई बहन सब हमार भाई राकेश और हमार दूगो नेवे काम करता राकेश नितिन बबी अच्छी हो गीत बात दिया दादा जी के पुतल पसल ललका चिड़ैया उड़ल जाला
0: ललका
1: चिड़ैया उड़ल जाला
0: बाप है ललका चिड़ैया
1: हम परमाती चाची परमाती चाची खाती
0: हाँ
1: और हमर मामी अति गायत्री आपका बेटा अजय
0: तो चाची गायत्री कहाँ
1: सब सहेली खाती
0: तो चाची गायत्री कहाँ रहेला
1: नुबेल फोन हरदम गीत मांगेला
0: हाँ होता हर
1: मामी
0: है हमेशा तो हर खातिर गीत मांगेला
1: हाँ हम हमो का खातिर मांगेला
0: आली हाँ
1: हम पहला मांगे लागी नहीं मिला तो हरो खातिर
0: एटा
1: सब से बेटे खातिर और रचना दीदी खातिर सुरेखा दीदी किरण दीदी सब दीदी के
0: सब दीदी
1: रो खातिर और भाभी के और सब हमर लेबे नियत के
0: आली आली तू करेला के अचार डालेला
1: करेला नहीं हम अच्छी पकड़े हैं दाल घाम के मसाला में
0: नहीं करेला के
1: आलू बुझे हैं
0: करेला के
1: बिन आलू
0: करेला के बिंदाई जैसा बने लिया हुआ करेला के
1: करेला हमने खाए लाला को तोसो खाती मामा रहल ना भैया
0: हाँ
1: मामा रहल था वो सब कालते जासा डाल के रखे
0: एता
1: करेला जी सब काटे जाते कौन लता पर सब हम काम करके अब लीजिंग काम कर दी
0: प्याज के
1: काम करके आवक था
0: हाँ प्याज के बिंदाई बने ला जाने ना
1: प्याज के जाने ना गाते पकेला
0: गाते जाने ना पर प्याज के बिंदाई भी बने ला को मैं मुतौर डाल के एक पो में डाल दे बा तो जब भात खाते हो
1: कैसे डाला बोला था हम डालो
0: थोड़ा बाद में कैसे तो दे पर हम दिजा खेले हैं हाँ प्याज जब जब से दाल बा भात पकेले वो गरम गरम तो आलू डाल दिला

0: আর হও এ ঠিকই বিনদায় রে পিয়াজকে যদি সে খা লিবা
1: আলো খাল খা কে যাই আই তাসনি কোকো কোন দেতে চুপে ডাল আতি ডাল চুপু পাকা
0: কোন অন্দ্রয়া হওয়া
1: নুয়েল ফ্রান্স
0: আলে তা প্রোগ্রাম আলে তা অপ্ত লাগে ভোজন করে
1: আলে
0: বহুত ধন্যবাদ রাধাজি
1: আলে
0: বহুত ধন্যবাদ রাধাজি শুভরাত্রি आले तो राधा जी बहुत प्यार से पकैले और नबड़त बना खा के पेट भर गवा माता जी को छत दिनाओ अभी साजन के देवल सारी फट गैली मोरे साजन के देवल सारी फट गैली एगो मिसाज देखत है याल बा ओके आई मिसाज वा बोलता प्रताप जी प्रोग्राम तो एकदम चकाचक बा और तड़का सच्चे कि तू तड़का लगावत हो भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में है गाना चला दिया सब परिवार के लिए ओके रेडियो मॉरिशस की टीम खातिर तोहर ननद खातिर भी और हाँ अनीता में सजवा भी जाकर लगभग सब मॉरिशस वासी खातिर अनीता गीत मांग लगभग तो चल एक साथ सुने साजन के देवल सारे फट गैली मोरे साजन के देवल सारी धनराज बीसी सर के जन्मदिन बात बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद और बेशक धनराज विशेषर जी ढेर मना प्यार आशीर्वाद और गीत थोरो नाम संजय बिहारी भी बहुत प्यार से रेडियो सुनते रहे लन और बोले लन कई कबक वो रेडियो मॉन्शस बड़े बड़ा भैये करेला तो दलियाओं के एफ थी में डुबले वे पर एम एस आजू पहुँचे हुए इंटरनेट पर दलिया था राजो जो रेडियो मॉन्शस एकदम चकाचक टन टना टन बजे रहा चला सुनब जाए गीतवा

बोला चला कि भक्ति में बड़ी शक्ति बा और सब कोई अपन श्रद्धा अनुसार भक्ति भगवान की भक्ति करे रहें सर। और हमने दो प्रकार के भक्ति हो सगुण और गो निर्गुण। सगुण मतलब भगवान के गो रूप दे रहा सर और भगवान के हमने पूजा करी रहा सर, तो कभो कभो भगवान के हमने ओम बोली रहा सर। निर्गुण यानी कि विदाउट फॉर्म तो अगर पूजा करी रहा सर, तो सगुण के पूजा करब या निर्गुण के अगर तोहर मन में भक्ति बात तो तोहर पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेला। और हम तो मानेला कि भगवान हमने से कुछ नहीं मांगेला है। भगवत गीता में लिखल बा, कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलेला कि एगो भक्त अगर एक लोटा जल या गो पान के पत्ता या गो फूल भगवान के सच्चे हृदय से अर्पण करी तब बस वही काफ़ी बा। तो चला भी सुनब जाए गो दुर्गा भजन। दुर्गा माँ सुख देवेला, दुर्गा माँ जो न शक्ति के प्रतीक है। तभी जैसे निर्गुण और सगुण भक्ति के बारे में बात कर ली सर, तो दुर्गा माँ के चाहे तू निर्गुण रूप में पूजा कर बा या सगुण रूप में, माँ अपन भक्त पर अपन आशीर्वाद हमेशा बरसावेला। और ये गीत हमने चलाते हैं सर सब माँ दुर्गा के भक्त लोगन के नाम। और जितना कोई अभी रात के नाइट शिफ्ट में काम करता जैसे ला पुलिस लोग बा, पोंपिये लोग बा, और जो कॉल सर्विसेज कॉल सेंटर बा वहाँ काम कर रहे हैं सर, फायर सर्विसेज हॉस्पिटल में क्लिनिक में जहाँ कहीं भी काम हुआ था। अभी सोफिया लोग काम करते वन सर, पासा से लेके जाते वन सर या पासा से लेके आवते वन सर। शास्त्री बनमाली है गीत भजन तोहर खातिर तो सब परिवार खातिर। और जितना कोई दुख में बा दर्द में बा तो माँ दुर्गा से प्रार्थना करब सर कि वो तो लोग के दुख दर्द दूर करी और तो लोग के अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करी। जय माता दी।

0: मोरिशस खूब गाव हो हमके मोरिशुआ खूब चलीबा पूरा जनानिया
1: हमके मोरिशुआ खूब चलीबा सच्चे की और एक अंतिम गीत काम करवा रे काम करवा विभा और कमल चिंतामणि के गावल गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता सांत के 6 बजे से अभी के साथ रजा बहुत बहुत धन्यवाद हमने की बात ठीक 11 बजे से मजदूर सुनने रिपल प्रोग्राम और रात के 12 बजे से का फजर के 5 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने की तो लोगों की मुलाकात हुई रेडियो मॉरिशस पर अब सामदी के फजीर के 6 बजे से 9 बजे तब तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जी नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी दिल बस इतना चाहता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए और हम लौट चले उन हसीन लम्हों में जहाँ हर गीत एक एहसास था, हर सुर एक याद था। और आज के इस खूबसूरत सफ़र में हम लेकर आए हैं वही अमर बॉलीवुड के नगमे जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं, दिल के किसी कोने में महसूस भी होते हैं। तो बस आप तैयार हो जाइए गिनीशा का साथ देने के लिए इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनमें हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बस जाते हैं। पहला प्यार, पहली मुलाकात, माँ की मुस्कान, दोस्तों की मस्ती, सब कुछ इन गीतों के साथ जुड़ा होता है। तो आज अपने दिल को बस जरा थाम लीजिए और दिल का दरवाजा खोल दीजिए और इन यादों को फिर से जी लीजिए हमारे साथ। मैं हूँ निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और ये पुराने बॉलीवुड संगीत का एक और हसीन सफर लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वैसे देखा जाए तो कुछ आवाज़ें ऐसे होती हैं ना जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। वो गीत जो हमारे माँ बाप ने गुनगुनाए होंगे किसी ज़माने में, जो हमने बचपन में रेडियो पर सुने और जो आज भी दिल को उतने ही सुकून देते हैं। आज की ही रात उन्हीं अनमोल नगमों के नाम हैं। अगर आप कहीं सफ़र में हैं, घर पर हैं या काम पर हो, बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर लीजिए।

हर गाना अपनी एक कहानी लेकर आता है और हर कहानी किसी ना किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। शायद आज जो गीत हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उससे जुड़ी कोई याद आपके दिल में है, बिल्कुल बसी हुई है आपके दिल में। हो सकता है वो किसी अपने की याद हो, किसी अधूरी मोहब्बत की या किसी खूबसूरत बचपन की। तो चलिए आज सिर्फ गाने नहीं सुनते हैं, अपनी यादों को फिर से जी लेते हैं इस खूबसूरत से शो में। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

रेडियो की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है दोस्तों, एक गीत बजता है और हजारों दिल एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं वो गीत जिन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड को अमर बनाया बल्कि हम सभी की जिंदगी को भी सुरों से भर दिया है। तो जहाँ भी है बस कुछ देर के लिए दुनिया की टेंशन को साइड में रखें और इन हसीन नगमों के साथ अपने दिल को सुकून दीजिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। इतने खूबसूरत खूबसूरत नगमे हमने आप लोगों को सुनाया है। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के इस खूबसूरत सफर में ऑन रेडियो मॉरिशस।

पूछो मेरी आहों को समझो, तुम पूजा हम पुजारी, तुम किस्मत

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा,